100.7 MHz पर आकाशवाणी का FM प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 व आषाढ़ मास की पहली तिथि तदनुसार आज 22 जून 2026 है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

उम्मीदों की सुनहरी किरणों के साथ आज की इस नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए हम भी अपने दिन की मंगलमयी शुरुआत करते हैं ईश्वर वंदना के साथ और पुष्पांजलि यानी भक्ति संगीत से सजे इस प्रोग्राम पुष्पांजलि का आगाज हो चुका है, जहां आज आपके साथ है निधि।

6:06 सुबह के 6:57 प्रोग्राम पुष्पांजलि चल रहा है। हमारे परमात्मा को सदैव ये पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए होता है, हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और किस चीज की हमें कितनी जरूरत होती है, क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं, और वो उसी अनुरूप हमारे जीवन को ढाल देता है। इसीलिए अगर आप अपने ईश्वर को मानते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो उन पे विश्वास रखना भी सीखिए। वो कभी सारथी बनकर, तो कभी पालनहार बनकर, तो कभी सखा बनकर इस नैया को पार लगा ही देंगे।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

अब अक्सर ऐसा होता है कि जब उसे सब ज्ञात है, हम सोचते हैं तो फिर प्रार्थना की क्या जरूरत है? मतलब ईश्वर को याद करने की हर दिन क्या जरूरत है? सवाल

ये भी आता है। तो इसका जवाब बेहद सरल है, प्रार्थना यानी प्रेयर्स हमारे उस परब्रह्म से रिश्ते का माध्यम बन जाती हैं। ये हमारी दृष्टि का विस्तार करती हैं, ये हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं और खुद के अंतर मन से जोड़ती हैं। हाँ, ये बात और है कि हम भगवान को बस तभी याद करते हैं जब कोई इच्छा होती है हमारी, पर वो तो सदैव हमारे साथ रहते हैं। और रिश्ता चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जब मोह से परे होता है और निभाया जाता है तो अनमोल, पवित्र और अटूट बन जाता है।

हाँ, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, इसीलिए ये याद रखिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म सही राह पर हो, और भगवान को जब भी हमारी जरूरत होती है ना, यानी हमारी श्रद्धा की जरूरत होती है, तो वहां पर ना बड़े बड़े चढ़ावे या आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती। उनसे जुड़ने का बस बहुत सरल माध्यम होता है, और वो होता है सच्चे भाव का मार्ग। जहां सच्ची आस्था होती है, विनम्रता होती है और निश्चल प्रेम होता है। इसीलिए जब आप अपने शब्दों या कर्मों से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े आडंबरों से, विधि विधानों से भगवान की आस्था करते हैं, तो ये बस दिखावे तुल्य ही रह जाता है। क्योंकि सच्ची भक्ति तो सेवा या प्रेम का भाव सिखाती है, चरित्र में कृतज्ञता और समर्पण की गुण सजाती है, ना कि दूसरों से द्वेष करना या अहंकार की भाव जगाते हैं।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

अगर इसी तरह आप ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे ना, तो वो यकीनन आपको राह दिखाएंगे। और जो वो राह दिखाएंगे ना, उस पर ईमानदारी से चलना भी होगा, क्योंकि ईमानदारी हमारे चरित्र का सबसे सुंदर और सबसे अमूल्य गुण होता है। और वर्तमान परिपेक्ष की अगर बात करें ना, तो यही गुण सबसे ज्यादा विलक्षण भी हो गया है, क्योंकि ईमानदारी की राह पर चलना कभी भी आसान नहीं होता। पर जो इसे खुद से अलग नहीं करता, वो सदैव भगवान की कृपा का साथ पाता है, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं सत्य का प्रतीक होते हैं, और सत्य और ईमानदारी की राह उनके निकट जाने का माध्यम बन जाती है। तो हमेशा अपने जीवन में कोशिश करिए कि आप हमेशा अपने कर्मों, अपने रिश्तों और अपने वचनों के प्रति ईमानदार रहें। बाकी वो सब संभाल लेगा।

वक्त हो चुका है 6:51 और 50 सेकेंड, इनफैक्ट 51 सेकेंड, और अब पुष्पांजलि का बस आखिरी भजन हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन चलते चलते बस पुष्पांजलि की आज आखिरी बात आपसे शेयर करते हैं कि भाई हमारी लाइफ का ये जो प्रत्येक अनुभव है ना, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। जैसे हमारी उपलब्धियां हमारे लिए आनंद का प्रतीक बन जाती हैं, तो हमारी असफलताएं हमारे फेलियर्स सबक का, प्रतिकूल परिस्थितियां धैर्य सिखाती हैं, तो अनुकूल संयम और विश्वास का। लोग या रिश्ते भले ही आपके साथ हो ना हो, पर यकीन मानिए आपका भगवान हमेशा आपके साथ होता है और वो आपको देख रहा होता है। तो उस पर दृढ़ विश्वास के साथ अपने

हर दिन की शुरुआत करिए और जीवन की इस राह में बस आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का दिन मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ पुष्पांजलि आज यहीं तक। पुष्पांजलि का ये आखिरी भजन आपके रेडियो सेट पर।

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हो चुके हैं आप। सुप्रभात दोस्तों, संडे की छुट्टियों की मीठी यादों को समेट कर फिर एक नई शुरुआत का दिन आ गया ना। आज है दोस्तों सोमवार और तारीख 22 जून 2026 और सोमवार की जो ये सुबह है ना, ये अपने साथ नई ऊर्जा, नए लक्ष्य और नई उम्मीदों को लेकर फिर से आ गई है। एक बार फिर से ऑफिस जाने वाले लोग कामकाज की रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बेशक आप फ्रेश मूड से आज के दिन की शुरुआत करिए, बट अगर साथ पॉजिटिविटी जुड़ी हो तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। भाई इस बात से आप भी एग्री करते होंगे ना। तो चलिए हेलेन केलर के एक खूबसूरत से विचार को आपसे शेयर करते हैं। कहते हैं हेलेन केलर, आशावाद वो विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। तो आज के इसी विचार के साथ पूरे उत्साह और मुस्कान के साथ दिन और आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ में आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी, आपका स्वागत कर रही हूँ प्रोग्राम में। आपका आज का दिन मंगलमय हो।

जी हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपको एक बार फिर से बता दे, गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेनबो की म्यूजिकल हार्ट बीट से।

तो दोस्तों आपसे मुलाकात का वक्त बहुत ही खूबसूरत होता है, बट ये गुजर जाएगा। जी हाँ, घड़ी की सुइयां क्योंकि बढ़ती रहती हैं, टिकती कहाँ है जनाब, ये तो अपने साथ टिक टिक टिक टिक आगे बढ़ती हैं। और बात चलिए अगर वक्त की, तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस समय जो है स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है सुबह के सात बजकर छः मिनट, और ये हुए हैं 15-16 सेकंड हो चुके हैं। और बात करें सूर्यास्त की, सूर्योदय तो आज का हो ही चुका है, तो अब सूर्यास्त की बात होगी। तो सूर्यास्त आज का जो होगा शाम को 7:04 पर होगा। और आज FM रेनबो के कानपुर केंद्र से कौन कौन से प्रोग्राम्स आप तक पहुँचेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम फिलहाल तो आप सुन रहे हैं, और गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के बाद देश दुनिया की जानकारियों से आपको जोड़ेंगे समाचारों के जरिए। 8:30 पर सुरों की पुरानी महफिल, और 9 बजे से रसबहार में आज का आकर्षण होगा नई सुबह नए रंग। और विविधा में 9:45 से सुनिएगा चित्रपट से। 11 बजे से हमनवा प्रोग्राम आप तक पहुँचेगा, और आज की हमनवा जोड़ी होगी मालिनी और आरती की। 3 बजे से RJ आरती के साथ सुनिएगा म्यूजिक आर प्रोग्राम। और 3:45 पर हेल्थ मैगजीन में डॉक्टर निधि सिंह से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत सुनिएगा, विषय होगा स्किन और हेयर हेल्थ। श्रोताओं का फेवरेट पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम सुनिएगा शाम 4 बजे से। जी हां, आज के हेलो कानपुर प्रोग्राम में आपके साथ होंगी RJ रंजना। कानपुर आप रेनबो सुन रहे हैं, और सभी प्रोग्राम्स का आनंद लेते रहिए। फिलहाल तो वक्त है एक गाने का, तो सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।

जी हाँ, एक बात तो है, इस गाने को सुन के मुझे एक ख्याल आ रहा है कि जो लोग जो है खुद से प्यार करते हैं ना, वो फिजाओं से बातें करते हैं। इस बात को आप जरा गौर फरमाइएगा। और ये फिजाएं भी जनाब तभी गुनगुनाती हैं जब हम इनका ख्याल रखते हैं। आपको बता दें कि आज 22 जून को हम मना रहे हैं विश्व वर्षा वन दिवस। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है वर्षा वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर लोगों और सरकारों को प्रोत्साहित करना। और आपको एक खास जानकारी और दे दें, 1 जून से 30 जून तक केंद्र सरकार द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। और इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य घटती भूमि

की उर्वरता और रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से खराब हो रही मिट्टी की सेहत को सुधारना है। दोस्तों, कल देश भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देश भर में नागरिकों ने योग बड़े उत्साह के साथ किया, बहुत सारे योगासन किए और बहुत से लोग जागरूक भी हुए। तो इस वर्ष की थीम थी स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में हिस्सा लिया। तो चलिए, प्रोग्राम का नेक्स्ट ट्रैक भी अब आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर का हिस्सा बनने जा रहा है अब ये वाला गाना।

दोस्तों एक बात तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, दिन जब खासियतों से भरा होगा तो भाई हमें लाइफ में बदलाव महसूस होता ही है। वैसे आज है 22 जून और 22 जून के दिन की अगर हम बात करें तो ये दिन भी काफी खासियत बयां कर रहा है। क्या है आज के दिन की खासियत, इसके लिए चलेंगे अतीत के आईने में। और सबसे पहले बात करेंगे सन 1939 की। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।

सन 1955 में मुगल सम्राट, सन 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को अपना वारिस घोषित किया। सन 1906 में स्वीडन ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। सन 2009 की अब बात करेंगे। सन 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई दिया। और अब सन 1932, जी हाँ 1932 में दशकों तक प्रशंसकों के दिल पर राज करने वाले हिंदी सिनेमा के स्टार विलेन अमरीश पुरी का जन्म 22 जून को हुआ था, यानी आज ही के दिन हुआ था। अमरीश पुरी को हमारा नमन। और दोस्तों, जब अमरीश पुरी की अब बात चली है तो चलिए प्रेजेंट में अब हम सब याद करेंगे अमरीश पुरी जी को। उन्हीं पर फिल्माए एक गीत के साथ, विरासत फिल्म का ये गाना है जो उन्हीं पर फिल्माया गया है, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

और दोस्तों अब जो है गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स और अपडेट्स की। आर माधवन ने एक स्वास्थ्य ब्रांड द्वारा उनके नाम और इंटरव्यू क्लिप्स में बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर बड़ा एतराज जताया है। उन्होंने ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये ट्वीट किया है, एतराज जताया और फैंस को इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से दूर रहने को भी कहा है।

और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों बॉबी देओल का एक वीडियो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि शेखर सुमन के साथ बातचीत में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद कर भावुक हो रहे हैं बॉबी देओल, और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर देख करके लोग उसे काफी लाइक भी कर रहे हैं और लोगों के द्वारा वो आकर्षण का केंद्र बना है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मुझे ना एक सॉन्ग याद आ रहा है धुरंधर मूवी का, जो अभी तक लोगों को अपना दीवाना बनाए हुए है, तो क्यों ना सुन लिया जाइए गाना।

दोस्तों इन दिनों जो है फिलहाल तो गहरी छाप लोगों के दिलों पर छोड़ रही है फिल्म मैं वापस आऊंगा। 12 जून 2026 को सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज हुई। आपको बता दें कि बंटवारे के दर्द पर बनी इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही, पर दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद अब इसकी कमाई में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही जब फिल्मों की बात चली है तो धमाल 4 की भी बात कर लेते हैं। धमाल 4 बहु प्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म 10 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। और अब बात करेंगे कॉकटेल 2 की। यहाँ सोशल मीडिया पर इसके गाने आपने खूब सुने होंगे। तो आपको बता दें कि कॉकटेल 2 फिल्म जो है 19 जून 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और ये 2012 में आई सुपर हिट फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है। फिल्म में इस बार शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म कितना धमाल मचाएगी जनाब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फिल्म का एक गाना सुनवाती हूँ जो बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप। वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। गुड मॉर्निंग कानपुर। गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी।

वेल दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आप सुन रहे गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम, और अब बारी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स की। जी हाँ, तो क्या है ये लेटेस्ट अपडेट्स, चलिए बताते हैं। भारत 22 और 23 जून को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता एनएसए अजीत डोभाल करेंगे। मुंबई में कई हफ्तों के सूखे के बाद आखिरकार मॉनिटरिंग बारिश ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने अप्रैल 2026 में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी से सबसे दूर जाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि इस मिशन ने 55 साल पुराने अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से अधिकतम, आपको बता दें अब डिस्टेंस क्या है, 252,756 मीटर यानी लगभग 406,773 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा दिया है। लेकिन इस वक्त मैं ना गाने को जल्द ही आप तक पहुंचा रही हूं, तो लेट्स एंजॉय।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब जो सेगमेंट है वो है समाचार पत्रों की लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए रूबरू करवाते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स से। आपको बता दें कि रामा देवी चौराहे पर एलिवेटेड हाईवे का रैप आज से खुलेगा। प्रमुखता से पेपर ने प्रकाशित किया है कि हीट वेव ने झुलसाया दिन, दिन के साथ तप रही रात। एमिटी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अमित ने खेजड़ी के पौधे में पाई जाने वाली विशेष फफूंद से विकसित की नई तकनीक। उर्वरक आयात घटने के साथ ही बढ़ेगी फसलों की उत्पादकता और पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की मोहर लग गई है, यानी कि कार्डियोलॉजी को मिला NABH प्रमाण पत्र। और प्रोग्राम में फिर से बारी एक खूबसूरत सी गाने की।

और अब प्रोग्राम आ चुका है अपने लास्ट मोमेंट में, तो चलिए चलते चलते आपको रूबरू करा देते हैं लेटेस्ट खेल अपडेट से। आपको बता दें कि विराट कोहली जो थोड़ी सी चोट लगने के कारण घायल हो गए थे, तो चोटिल विराट कोहली को अगले महीने इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हालांकि उनका चयन फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो हैं वो टीम में वापस आ गए हैं। जी हाँ, उनकी टीम में वापसी हुई है। वहीं स्टार ऑलराउंडर 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी असाधारण प्रतिभा और बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 29 गेंदों में 94 रन बनाए, जिसके कारण भारत ए ने रविवार को त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर खिताब को अपने नाम कर लिया है। और रविवार को 2-0 से महिला की भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर हॉकी का मैच जो है अपने नाम किया, यानी कि नेशंस कप को जीत लिया है। तो चलिए इनको बधाई देते हैं इस गाने के साथ। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्ट बीट।

0: जी हाँ, देखिए ना कितनी खूबसूरत सी सुबह हो चुकी है और सुबह का आगाज हो चुका है। तो चलिए इस आज के दिन को हम और बेहतर बनाते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं। और चलते चलते आपको हम ये अब बताते हैं कि आज का तापमान न्यूनतम और अधिकतम क्या रहने वाला है। तो अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो आज रहने वाला है लगभग 42.3 डिग्री, और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये रहेगा लगभग 30.4 डिग्री। और अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, किंतु वर्षा की कोई संभावना नहीं है और लू का प्रकोप भी जारी रहने के आसार हैं। और इसी के साथ फिलहाल तो गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है। तो गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से मैं आरजे मालिनी इजाजत चाहूंगी, बट आप कहीं मत जाइएगा, आप कनेक्ट रहिएगा 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट से। मिलूंगी 8:30 पर सुरों की पुरानी महफिल के साथ। और फिलहाल तो ये सॉन्ग सुनिए, और सॉन्ग के बाद आपको जोड़ेंगे देश दुनिया की जानकारी से समाचारों के माध्यम से।
1: एक नंबर एक, एक्शन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक

0: उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया।

0: राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला, वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसा करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says strong maritime capability is deciding factor for a country's economic and strategic influence and India is preparing for it. President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. U.S. Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
9: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
8: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
9: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
8: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project.

0: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट पे एक बार फिर से आप कनेक्ट हो चुके हैं। जी हाँ, वादे के मुताबिक मैं आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी, आ चुकी हूँ सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जी हाँ, गाने की धुन बहुत ही खूबसूरत है और ये गाना है 1947 अर्थ फिल्म का। इसे गाने को गाया है साधना सरगम ने और म्यूजिक कंपोज किया है ए आर रहमान ने।

जी, अब बहुत ही खूबसूरत गाना था फिल्म कभी कभी से। और अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ना, वो शादी वाले घरों में काफ़ी एंजॉय किया जाता है। जी हाँ, थोड़ा सा मतलब जब ट्रैक चला है कि कुछ ऐसे ही सॉन्ग सुनवाए जाए जो शादी ब्याह के घरों में बजते हैं, तो चलिए एक और खूबसूरत सा गाना पहुँच रहा है आप तक। फिल्म का नाम है दुश्मनी, आवाज़ है सपना अवस्थी की, आनंद मिलिंद की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

फिल्म का नाम क्रोधी और आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन

0: सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट से, और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी।
1: जब कोई बाजी,
0: और ये जो गाना है ये है एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज है, धुन बनाई है ओपी नय्यर ने।

और ये है प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग। इसी के साथ मैं मालिनी करूंगी टाटा बाय बाय, लेकिन रस बहार प्रोग्राम को 9 बजे लेकर आपसे मिलूंगी। आप सुनिए ये गाना।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें

0: नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर, मेल मिलाप।
2: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से फिर से कनेक्ट हो चुके हैं आप। सूरज की पहली किरण के साथ, उम्मीदों की नई उड़ान के साथ और सुरों की मीठी मुस्कान के साथ वेलकम है इस खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का। आज दोस्तों रस बहार, जी हाँ, प्रोग्राम रस बहार का वक्त हो चुका है और आज रस बहार में बातें एक नई सुबह और नए रंग की। नई सुबह नए रंग में गीतों की मिठास है, जीवन की सीख है और आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश भी है और इसी कोशिश को साकार करने के लिए आज मैं हूँ आपके साथ प्रोग्राम की होस्ट और आपकी दोस्त आरजे मालिनी। गुड मॉर्निंग।

दोस्तों घड़ी में वक्त हो चुका है सुबह के 9:05 और लीजिए जनाब हो चुके हैं 22 सेकंड। और बहुत सारे लोगों के सामने इस समय ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते की प्लेट भी होगी, है ना। वैसे नाश्ते की प्लेट में ना आजकल एक चीज ऐसी है, एक फल ऐसा है जो सबकी प्लेट में होता है, यानी कि मैं आम की बात कर रही हूँ। और आम की जब बात चली है तो दोस्तों आप हमें मेल करके बताइए, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हमें मेल करिए और बनिए प्रोग्राम का हिस्सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है तो आपका जवाब क्या होगा, और आपको कौन सा आम पसंद है यानी कि कौन से आम का स्वाद आपको सबसे ज्यादा भाता है, तो शेयर करें अपने थॉट्स। हमारा मेल आईडी है aarkansometia@gmail.com। वैसे एक बात तो है कि ब्रेकफास्ट की प्लेट को देखकर एक स्माइल हम जरूर करते हैं, और आपने की भी होगी, अभी सुबह आई होगी ब्रेकफास्ट की प्लेट आपके पास। वैसे आज आपके नाश्ते में क्या है जी, आपने क्या खाया, पराठा, रोटी, पोहा या उपमा? खैर जो भी आपने खाया होगा या खा रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये सभी चीजें आपकी प्लेट तक कैसे पहुंची? उसके पीछे ना दोस्तों किसी किसान की सुबह 4 बजे शुरू हुई मेहनत है, किसी खेत ने धूप सही होगी और किसी मिट्टी ने पानी संजोया होगा, और इन सब की मशक्कत से अनाज जो है तैयार होकर हमारे घर पहुंचता है और हमारे प्लेट की शान बनकर हमारी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। दोस्तों ये जो खेत होते हैं ना, ये सिर्फ जमीन नहीं होते, ये हमारी रसोई की धड़कन होते हैं, और अगर खेत सुरक्षित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी भरपूर अन्न और हरियाली का आनंद ले सकेंगी। और आपको बता दें जब बात चली है खेत की, तो 1 जून से 30 जून तक देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो चलिए हम सब भी बनते हैं इस अभियान का हिस्सा। और एक गाने के बाद मैं फिर से आपसे मिलती हूँ और बातों के साथ।

जी हाँ बिल्कुल, इन दिनों जो जब आम हम मार्केट में देखते हैं तो नो डाउट भाई हम अपनी इच्छा को रोक नहीं पाते हैं। तरह तरह के आम होते हैं, वैरायटी होती है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आपसे मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है तो आपका जवाब क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन है, आपको कौन से आम का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है? तो जल्दी से आप हमें मेल करके बताएं, हम आपकी मेल को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। और फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे खेत बचाओ अभियान की, तो आपको बता दें खेत बचाओ अभियान का असर दिख भी रहा है दोस्तों, लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है ना, अत्यधिक केमिकल और यूरिया के असंतुलित उपयोग से धरती माता को बीमार होने से बचाना है। और इस अभियान के जरिए लोगों को मिट्टी की सेहत के सुधार के बारे में जागरूक करना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के बारे में बताना, प्राकृतिक और जैविक खेती पर ज्यादा जोर देना, कीटनाशकों के बचाव की जानकारी देना और जल संरक्षण करना, ये सबसे बड़ी बात है। जल बचाना बहुत बड़ी बात है। और किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं से जोड़ना है। फिलहाल तो मेरा काम क्या है, जी हाँ मेरा काम है आपको एक खूबसूरत से सॉन्ग से जोड़ना। तो सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर द म्यूजिकल हार्ट बीट। और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग, जी नहीं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम खत्म हो चुका है। देखिए गलती हो जाती है कभी कभी, नाम गलती से निकल जाता है। रस भार प्रोग्राम चल रहा है, आज बातें हो रही नई सुबह नए रंग की।

जी हाँ दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता दिन भी चढ़ता जा रहा है। और दोस्तों कितनी दिलचस्प बात है ये कि जो सूरज दिन में तपिश देता है वही सुबह की पहली किरण बनकर कितना प्यारा लगता है ना। एक सवाल आपसे पूछती हूँ। सवाल ये है कि अगर ये पेड़ और खेत बोल पाते तो इस गर्मी में हमसे क्या कहते? शायद यही कहते कि हम धूप सह लेंगे, बस तुम हमें बचाए रखना। कहीं आम के पेड़ पर झूलते फल हैं, कहीं नीम की छांव में बैठी चिड़ियों की छोटी सी महफिल है। भाई ये तो हम कह ही सकते हैं कि हवा भले ही गर्म हो लेकिन ये प्रकृति अपने ढंग से हमें सुकून देने की भरपूर कोशिश करती रहती है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगी कि आज की इस नई सुबह में जरा ठहरिए, अपने आसपास की प्रकृति को महसूस कीजिए, किसी पेड़ की छांव में दो पल रुकिए, किसी प्यासे पक्षी के लिए पानी रखिए और अपने खूबसूरत से दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करिए। जी हाँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप रस बहार नई सुबह नए रंग के साथ में आरजे मालिनी 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से।

रस बहार में आज बातें हो रही हैं नई सुबह नए रंग की। और दोस्तों देखिए, नई सुबह के अगर नए रंग की बात करें तो जून का महीना चल रहा है और ये जून का जो महीना है ना अपने पूरे रंग में है। धूप बड़ी ही तीखी है, जी हाँ, और धूप भले ही तीखी हो लेकिन इस तीखी धूप के साथ इस मौसम की एक मिठास ऐसी है जो इन दिनों हर दिल को लुभा रही है और वो है आमों की मिठास। पता है आमों के बारे में क्या कहते हैं? जी हाँ, आमों के बारे में कहते हैं कि आम न सिर्फ एक फल है बल्कि गर्मियों का सबसे प्यारा एहसास है। पेड़ की शाखाओं पर लटकते आम मानो प्रकृति की मुस्कान हो। और कमाल की बात तो ये है कि एक छोटा सा आम अपने भीतर स्वाद, सेहत और खुशियों के अनेकों रंग समेटे रहता है। और आमों की बात चली है तो एक खास किस्म के आम की चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, आप अपने जवाब हमें दीजिए। हमारा मेल आईडी हमने आपसे शेयर किया है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। और आपको बताना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है तो आपका जवाब क्या होगा। और दूसरा, आपको कौन से आम का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है, तो जल्दी से शेयर करिए अपने जवाब हमारी मेल आईडी पर।

हाँ तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के जवाब की ओर। भाई आप लोगों के मैसेजेस नहीं आए हैं, मैं बता दूं मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है, तो चलिए अब उसका जवाब देते हैं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा आम, ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। तो इसके लिए उत्तर यह है कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में इन दिनों एक दुर्लभ आम ने लोगों का ध्यान खींचा है। ये जापान का प्रसिद्ध आम है, इसका नाम है मियाजाकी आम, जिसे एग ऑफ सन भी यानी सूरज का अंडा भी कहते हैं। ये आम ना अपनी चमकदार लालिमा, अनोखे स्वाद और दुर्लभता के कारण सबसे महंगे फलों की श्रेणी में शुमार है। और इंटरनेशनल मार्केट में पता है इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत लगभग है 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए पर केजी। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के विभिन्न हिस्सों में इसकी कॉस्ट लगभग 35,000 से लगभग 1.5 लाख रुपए पर केजी बताई जाती है। तो चलिए बेतिया के एक स्थानीय परिवार ने अपने घर की छत पर मियाजाकी आम का पौधा लगाया है और बेतिया के हर घर में ये आम जो है चर्चा का विषय है। लोग इसे देखने के लिए और खरीदने के काफी इच्छुक रहते हैं। फिलहाल तो एक मीठा सा सॉन्ग इस वक्त हम आपको सुनाते हैं।

0: जी हाँ, हम भी आपकी मेल का वेट कर रहे हैं। और अब आपको बताना है कि आपको किस आम का स्वाद सबसे अच्छा लगता है, तो जल्दी से हमें मेल करिए और भेजिए अपने जवाब और बनिए प्रोग्राम का हिस्सा। और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्ट बीट।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

और चलिए एक और बात हम करें कि इन दिनों हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना, घूमने फिरने हम कहीं भी जाते ही रहते हैं, और आम अगर हम देख लेते तो ना चाह कर भी आमों पर हमारी नजर चली ही जाती, और हम अक्सर आम खरीदने के लिए रुक भी जाते हैं। और दोस्तों जून के महीने में ना बस एक दो बातें ही जो होती हैं वो हर घर में होती है, एक तो आम के खाने की और दूसरा जो है बारिश कब होगी, ये बात जरूर होती है। और दोस्तों आज भले ही समय बदल गया हो लेकिन जून की सुबहें अब भी वही संदेश देती हैं। थोड़ा धीमे चलिए, आसपास देखिए और मौसम के साथ कुछ पल बिताइए, क्योंकि जिंदगी का मजा अक्सर उन्हीं लम्हों में मिलता है जिन्हें हम सबसे साधारण समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं।

जी हाँ, हमारी सोच जो है बहुत कुछ जो है अच्छा बना देती है, हमें बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है। और भाई देखिए, जून खत्म होने को है और इस जून की छुट्टियां भी अब यादों के पन्नों में सिमट रही हैं। तो बच्चों के स्कूल खुलने को हैं और साथ ही बारिश की दस्तक भी आहट दे रही है। बच्चों, अब की बारिश में चलिए हम सब मिलकर एक पौधा लगाते हैं, क्या ख्याल है? है ना अच्छी बात? उन्हें सींच कर बड़ा भी करते हैं और पेड़ के बढ़ने से ना हमें गर्मी से राहत मिलेगी। तो थोड़ा सा भाई एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, आपको अगर किसी को उपहार भी देना हो तो एक बढ़िया सा फ्लावर पॉट लीजिए या बढ़िया सा कोई प्लांट उसमें लगाइए, किसी भी पॉट में, और किसी को भी गिफ्ट करिए। बस इन्हीं छोटे छोटे कामों से ना एक दिन हरियाली और ज्यादा हमसे बातें करेगी। फिलहाल तो रसबहार प्रोग्राम में मैं मालिनी अब बातों का सिलसिला यहीं पर रोकूंगी। एक लास्ट सॉन्ग के साथ मिलती हूँ विविधा प्रोग्राम में चित्रपट से के साथ। स्टे ट्यून विद अस 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्ट बीट।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप, और घड़ी में वक्त हो चुका है विविधा प्रोग्राम का। तो चलिए विविधा के साथ मैं आ चुकी हूँ, यानी कि मैं हूँ आरजे मालिनी, मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो में और आप सबका स्वागत करती हूँ आज चित्रपट से में।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और जो अभी आपने गाना सुना ये था जूली फिल्म का गीत, प्रीति सागर की आवाज में। राजेश रोशन की धुन पर गीत के बोल लिखे थे हृदयनाथ चट्टोपाध्याय ने।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए इसी गाने के साथ ही ये इज्जत फिल्म का गाना था और इसी गाने के साथ ही अब आज का चित्रपट से प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। सुनते रहिए 102.2 एफएम रेनबो कानपुर द म्यूजिकल हार्ट बीट। थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे अपने लखनऊ एफएम केंद्र।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि कांच नगरी फिरोजाबाद और ताला नगरी अलीगढ़ आज विकास एवं जन सशक्तिकरण के नए अध्याय की साक्षी बनेगी। उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को गृह चाबी तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक, उपकरण आदि भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पाती साझा करते हुए प्रदेशवासियों से वर्षा काल में सतर्क और सजग रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु नवसृजन, संवर्धन और समृद्धि का आगमन है। वर्षा ऋतु के साथ चतुर्मास का पावन काल हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, संयम, संवेदनशीलता और संतुलित जीवन का संदेश देता है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद विरोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों की सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। एजेंसी ने बताया कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। जनगणना 2027 का प्रथम चरण के विषय में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गर्मा सिंह ने बताया कि जिले में 4 लाख से अधिक मकानों का सूचीकरण किया गया है और यहां कुल जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। उन्होंने बताया कि जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें व्यक्तिगत जनगणना की जाएगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जी हाँ, 10:03 का वक्त और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो अपने दिल के साथ और चेन निखिल के साथ। और ये जो म्यूजिकल ट्रैक आप सुन रहे हैं, ये आप सबके बीच आने वाला है, वो भी इसलिए क्योंकि अब प्रोग्राम शुरू हो चुका है हमारा, जिसका की नाम है सुपरहिट सॉन्ग्स। तो आपके उस दौर के, आज के इस दौर के हर तरीके के म्यूजिकल ट्रैक जो कि हुए सुपरहिट, हम आपको सुनाएंगे लगातार पूरे एक घंटे। तो सुनते रहिए इन प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक्स को और बने रहिए अपने दिल के साथ आरजे निखिल के साथ।

0: भाई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा,
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

0: जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI,

जी दोस्तों, लव मूवी से ये सुपर हिट म्यूजिकल ट्रैक आप सुन रहे हैं। फिलहाल 10:56 का वक्त और सुपर हिट सॉन्ग्स प्रोग्राम को अब मुझे कहना होगा टाटा बाय बाय। लेकिन डोंट वरी, हमारा अगला प्रोग्राम न्यूज ब्रेक के बाद आएगा, जिसका की नाम है संदेश आपके गीत हमारे। और इस प्रोग्राम में आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं, जो कि हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। साथ ही हमारी फोन लाइंस भी ओपन है, जिसके कि कॉन्टैक्ट नंबर है 0522 2238852, और दूसरा नंबर है हमारा 0522 2238845।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप, और रेनबो की हार्टबीट से आप तक पहुंच रहा है प्रोग्राम हम नवा।

0: गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, हम नवा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोग्राम में आप आवाज़ मेरी सुबह से सुन रहे हैं, मैं हूँ आरजे मालिनी और आ चुकी हूँ स्टूडियो में हम नवा प्रोग्राम के साथ। और आज हम नवा के सफर पर हमारे साथ हैं म्यूजिकल स्माइल वाली।
1: मैं हूँ आरती, गुड मॉर्निंग, वेलकम दोस्तों। मालिनी, इन दिनों जब भी कोई बात शुरू होती है ना, तो सबसे पहले हमारे मुँह से निकलता है कितनी गर्मी है।

0: प्रोग्राम के साथ। और आज हम नवा के सफर पर हमारे साथ हैं म्यूजिकल स्माइल वाली।
1: मैं हूँ आरती। गुड मॉर्निंग, वेलकम दोस्तों। मालनी, इन दिनों जब भी कोई बात शुरू होती है ना, तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है कितनी गर्मी है।
0: एग्जैक्टली
1: और मैंने भी स्टूडियो में आते ही तुमसे यही कहा था, है ना,
0: कि बाहर बहुत गर्मी है। देखो, ये तो ऑब्वियस ही बात है। देखो, जून का महीना चल रहा है और ये जो ज्येष्ठ का महीना होता है ना, ये गर्म होता ही है, लेकिन ये ज्येष्ठ के गर्मी भरे दिन ना अब धीरे धीरे विदा लेने को हैं। और देखो, इन दिनों कभी कभार तुमने देखा होगा क्षितिज पर आषाढ़ के बादलों की दस्तक दिख रही है ना। कभी आते हैं बादल, थोड़ी सी उम्मीद जगाते हैं और फिर चले जाते हैं। वैसे एक बात है आरती, इन गर्मी भरे दिनों में ना आम की मिठास सब कुछ भुला देती है। और इसके साथ ही ना थोड़ा बहुत हमें कहीं ना कहीं इंतजार है बादलों को देखकर बारिश का।
1: बिल्कुल सही कहा मालनी तुमने। और वैसे बिना ज्येष्ठ से आषाढ़ तक का जो खूबसूरत सफर होता है, वो होता है प्रकृति के बदलते रंगों की कहानी सुनाता है, जिसमें चर्चा रहती है एक ओर गर्मी की तो दूसरी ओर आने वाली बारिश की, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आरती। वैसे ये जो मौसम और प्रकृति है ना, ये हमसे बातें करती हैं आरती। और ये गर्मी है ना, ये हमें पहली चीज मैं बता दूं कि धैर्य रखना सिखाती है। और बारिश, अब बारिश की जो हम बात कर रहे हैं, वो हमें उम्मीद सिखाती है। ठंडी हवाएं, ये हमें सुकून का महत्व बताती हैं। यानी कि हर मौसम जो है वो कोई ना कोई संदेश लेकर अपने साथ आता है और चला जाता है और हमें सिखाता है।
1: माली, अगर मैं कहूँ तो कह सकती हूँ ना कि मौसम की किताब में जीवन के कई पाठ छिपे हैं, और वो पाठ हैं बदलाव को अपनाने के, मुस्कुराने के और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के।
0: हाँ, तो आरती अब हम भी आगे बढ़े हैं। भाई, जब तुमने आगे बढ़ने की बात की है, तो हमारे लिसनर्स को आज हम बता दें कि आज क्या क्या इंटरेस्टिंग सी बातें हम प्रोग्राम में करने वाले हैं।
1: बिल्कुल मालनी, आज हम बात करेंगे खेलों में महिलाएं, घर में बिजली की बचत हम कैसे कर सकते हैं।
0: और मतलब खेल क्षेत्र की अगर बात करें तो महिलाएं काफी आगे पहुंच गई हैं, लेकिन ये बात अभी हम डिटेल में करेंगे आरती। और यहाँ पर लिसनर से मैं एक प्रश्न पहले पूछना चाहूंगी कि दोस्तों, देखिए बिजली की बचत की हम बात करेंगे, तो आप हमें बताइए कि अगर आप घर में बिजली की बचत के लिए अवेयर हैं, तो आप बिजली की बचत करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, अपने उत्तर दीजिए और बनिए प्रोग्राम का हिस्सा। उत्तर देने के लिए हमारा मेल आईडी नोट कर लीजिए, AIRKANSOMADIA@gmail.com।
1: और मालिनी ने ईमेल तो बता दिया है, इस मेल पर आप अपने आंसर दे सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्रोग्राम हम नवा में, यानी मेरे आरजे आरती और आरजे मालिनी के साथ। और साथ साथ बात होगी मालिनी समय प्रबंधन की, जिसकी हम सबको है जरूरत, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम, यानी इसके क्या हैं बेनिफिट्स और क्या इससे हमें हार्म हो सकती है, इसके बारे में बातचीत होगी। तेजस्विनी सेगमेंट की बात होगी और साथ ही एक बड़ी हंसी रेसिपी हम शेयर करेंगे अपने लिसनर्स के साथ।
0: और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज होगी आरती।
1: वो क्या होगी?
0: अरे भाई, प्रोग्राम में गाने होंगे।
1: बिल्कुल, तो बस बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम हम नवा में। और मालनी, एक बढ़िया सा गाना बस अब जल्दी से प्ले कर दो।
0: बिल्कुल।

0: वाकई में मालनी, ये जो सॉन्ग बजाया ना तुमने
1: बहुत दिन के बाद सुनने को मिला
0: हाँ, और इसने ना मेरा दिल जीत लिया
1: बिल्कुल देखो होता क्या है ना, जब कभी कभी बहुत दिन तक हम बहुत गाने सुनते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कुछ चेंज सुनना चाहिए
0: बिल्कुल।
1: और वो बहुत दिन के बाद जब सुनने को मिलता है तो वाकई में हम बहुत कनेक्ट कर जाते हैं उस चीज से, जैसे कि अभी हम लोग गाने से कर गए। और देखो वक्त का तकाजा कह रहे हो या जो भी हम इसको कह लें, कि इत्तफाक से गाना कितना अच्छा लगा सुनने में।
0: और कुछ गाने होते हैं ना जो कहीं ना कहीं हमारे जब लाइफ से कनेक्ट करते हैं और लिसनर भी उनको सुनते हैं तो वो भी उनसे कनेक्ट करते हैं।
1: और देखो ना इस वक्त की डिमांड भी थी कि एक गाना सुने,
0: और वक्त की डिमांड मालनी ये भी है कि अब हम बात करें वक्त की ही यानी अब हम बात करने जा रहे हैं समय प्रबंधन की। और ये जो समय होता है ना, ये हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान होता है, कह सकते हैं मूल्यवान संपत्ति होती है। धन खो जाने पर उसे अगेन हम कमा सकते हैं, लेकिन जो बीता हुआ समय है मालनी वो वापस नहीं आता कभी भी। इसलिए समय का हमें बहुत सही उपयोग करना चाहिए, और इसे कह सकते हैं जब हम सही उपयोग करते हैं तो सही उपयोग करते हुए इसे हम सफलता की पहली सीढ़ी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि अगर हम समय पर काम को बहुत धैर्य के साथ करते हैं तो काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और समय प्रबंधन का अर्थ है कि अपने कार्यों को सही योजना और प्राथमिकता के अनुसार निर्धारित समय पर पूरा करना। और यदि हम अपने जो काम होते हैं ना, दिन की शुरुआत अपने जो दिन के काम होते हैं उनसे शुरुआत करते, तो निश्चित ही योजना से अगर हम कामों को करना शुरू करेंगे तो सारे इम्पोर्टेंट काम हमारे निबट जाएंगे। और लेकिन हमें काम को प्राथमिकता देनी ज़रूरी है, क्योंकि जो बहुत सारे अननेसेसरी काम भी होते हैं जिनको हम ज़बरदस्ती करके अपना टाइम ख़राब करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने कि जब हम दिन की स्टार्टिंग करते हैं उसी समय से हमें अवेयर रहना है कि किस तरह से हम अपने टाइम को सही डायरेक्शन में लगाएं। और ये बात सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए समय प्रबंधन का महत्व और बढ़ जाता है, चाहे वो पढ़ाई, खेल, विश्राम और अन्य जो गतिविधियां होती हैं ना, उनके लिए उनके पास समय जो होता है वो उतना ही होता है। तो किस तरह से वो अपने संतुलित समय को निर्धारित करने से केवल पढ़ाई में ही उनको सफलता नहीं मिलती, बल्कि बच्चों को मानसिक और जो उनका शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल सही बोला तुमने, क्योंकि कहते हैं ना समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ सरल उपाय हम अपना सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन यदि हम जो अपने रूटीन वर्क हैं जिनको हमें ज़रूरी है करना उनको हम प्रायोरिटी दें, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट काम को हम बाद में करें, जैसे कि मोबाइल को अधिक इस्तेमाल करना इसको हम बचा सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है।

0: और दूसरी चीज ऐसे कुछ काम होते हैं जैसे हम बातें करने में समय वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको भी रोक सकते हैं, अपने काम को पहले महत्व दे सकते हैं।
1: पहले हमें वो काम करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमारी जो दिनचर्या है या कह सकते हैं कि जो हमारा सक्सेस है वो हमें मिलने वाली है, तो सबसे पहले हमें उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए।
0: एक मुझे यहाँ पे कहावत याद आ रही है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बोहरी करेगो कब।
1: क्या बात है मालिनी, तुमने बिल्कुल सही बात कही कि हमें कल पर कोई भी बात नहीं छोड़नी चाहिए और समय समय का सही उपयोग करते हुए उसे आज बल्कि अभी जो हमें काम करना है, जो उपयोगी काम है उसे तुरंत ही हमें करने के लिए बैठ जाना चाहिए।
0: अच्छा यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी ना, अगर मैं हम सब जैसे काम को जो एक तारतम्य बनाते हैं कि हमें अब ये काम करना अब ये काम, लेकिन उसके लिए अगर एक सोच हम डेवलप कर लें कि कल का दिन हमारे पास नहीं है, है ना, तो उस चीज को शायद हम समय पर और वक्त पर और अपने एक समय से पहले भी कभी कभी काम को हम कर सकते हैं। ये सोच अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो हम बिल्कुल मतलब आराम से काम को अपने निपटा लेंगे, टाइम पर निपटा लेंगे।
1: बिल्कुल मालिनी, और जो भी महान लोग हुए हैं उन्होंने समय के महत्व को समझा और उसका सदुपयोग किया, और इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
0: कैसी स्टोरी आरती?
1: बिल्कुल मैं बताती हूँ, ये स्टोरी बहुत ही फेमस है, अच्छी स्टोरी है। एक बार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक से किसी ने पूछा, और उन्होंने पूछा कि आप इतने सारे जो काम हैं उन्हें समय पर कैसे कर लेते हैं। वैज्ञानिक मुस्कुराए और मेज पर रखी एक कांच की बड़ी बोतल उठाई। उन्होंने सबसे पहले उसमें बड़े पत्थर डाले, बोतल लगभग भर गई, और फिर उन्होंने उसमें छोटे कंकड़ डाले। जब छोटे कंकड़ डाले उसमें तो पत्थरों के बीच की जो खाली जगह थी मालिनी उसमें वो कंकड़ समा गए, और इसके बाद उन्होंने रेत डाली, जो बाकी बची हुई जगह थी वो उसमें भर गए। वैज्ञानिक ने पूछा, क्या बोतल भर गई? सबने कहा हाँ बोतल तो भर गई। अब इतने में उन्होंने क्या किया कि एक गिलास पानी बोतल में डाल दिया, पानी भी उसमें समा गया। फिर वैज्ञानिक बोले, एक बोतल हमारे जीवन में ये जो समय प्रबंधन है उसे दिखा रहा है, जबकि जो बड़े पत्थर हैं वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण काम हैं उन्हें शो कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई, स्वास्थ्य, और ये जो कंकड़ हैं ये अन्य आवश्यक कार्य हैं, और रेत छोटी छोटी बातें, यानी यदि हम सबसे पहले रेत भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए जीवन में हर दिन पहले इम्पोर्टेंट वर्क महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और यही है समय प्रबंधन का सबसे बड़ा मंत्र।
0: बिल्कुल पक्की और सही बात कही, और स्टोरी तो तुम्हारी बहुत जबरदस्त थी क्योंकि इसमें छोटी सी बात में सारी बातें इंक्लूड हो गई। इसलिए जीवन में ना हर दिन पहले इम्पॉर्टेंट वर्क मतलब जो हमारे ज़रूरी काम है उनको महत्व देना चाहिए, और उनको करने के बाद ही हमें और कोई काम करना चाहिए, और समय प्रबंधन का ये सबसे अच्छा मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र है, और इसे अपना करके हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
0: और अब हमें लगता है गाना भी सुन लेना चाहिए, बिल्कुल ये भी जरूरी है।

0: देखो अभी हमने कितनी अच्छी बात करी थी कि हमें अपने इम्पोर्टेंट काम, देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम था कि प्रोग्राम में गाने होते हैं ना, तो प्रोग्राम का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. तो हम लोग देखो समय के अकॉर्डिंग गाने भी अच्छे अच्छे चूज कर लेते
1: लेकिन
0: हैं.
1: साथ ही तुमने मान ली जो सॉन्ग बजाया ना कि प्यार का दर्द है, एक दर्द ये भी होता है कि जब हमारे हाथों में आता है हमारा बिजली का बिल और उसकी जो संख्या होती है ना, जो रीडिंग होती है, उसे देख कर कहीं ना कहीं जो हमारा मन होता है ना, वो कहता है ओ माई गॉड इतना बिल आ गया.
0: लगता है अभी हाँ. फिलहाल तुम्हारे घर में बिजली का बिल आ चुका है.
1: बिल्कुल वो तो आता ही है और एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं दर्द का ही काम करता है तो क्योंकि जब हम बिजली का यूज करते हैं और ये जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत ही ज्यादा खपत
0: हाँ,
1: होती है,
0: कंज्यूम ज्यादा होती है
1: हाँ,
0: बिजली. और देखो जब बात चली है तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि घर में बिजली की बचत कैसे करें. तो अब मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट घर है, अरे इम्पॉर्टेंट बात है हर घर के लिए है, और हम सब से जुड़ी है कि हमें बजट कैसे मैनेज करना है जिसमें कि बिजली का बिल काफ़ी जो है ज़्यादा आ जाता है, तो कभी कभी बजट बिगड़ जाती है. हाँ, हमारी जो बजट होता है वो बिगाड़ देता है और बल्कि पर्यावरण संरक्षण से भी गहरा संबंध रखता है. घर में बिजली की बचत कैसे हम करें, ये इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है.
1: एग्जैक्टली मालिनी तुमने बिल्कुल सही बात कही कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट से. और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि बिजली की बचत हम कैसे करें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है. और आज बिजली जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है. पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, हम इतनी सारी चीजें यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी हो गई, मोबाइल, मतलब गिनना, हम जब हाथ में गिनने बैठेंगे ना तो गिनती कम पड़ जाएगी,
0: उंगलियां कम पड़ जाती
1: हाँ,
0: हैं.
1: तो घर में मतलब एंट्री से लेके और आपके जितने चाहे किसी भी

0: रूम में आप चले जाओ, आपको यही उपकरण दिखाई देते हैं। और ये ऐसे उपकरण हैं जो जिसकी कहते हैं कि बिना बिजली के दैनिक जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते इनके बिना, है ना। लेकिन जो बढ़ती बिजली का ये खपत होता है, ये केवल हमारे खर्च को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि ऊर्जा जो संसाधन होते हैं इन पर भी अतिरिक्त दबाव डालती हैं ये चीजें। ऐसे में बिजली की बचत करना इस समय की डिमांड है कि हम बचत जो है वो चाहे छोटी छोटी आदतें अपना के करें या किसी भी तरह करें, बिजली की बचत हमें करनी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिजली की बचत जो है छोटी छोटी आदतों से हम कर सकते हैं। जब भी हम किसी कमरे से बाहर निकलें तो वहाँ की लाइट्स और जो पंखे चल रहे हैं उनको ऑफ कर दें, मतलब उनको भूलना नहीं चाहिए। एक अपनी हमें आदत में शुमार कर लेना चाहिए कि अच्छी आदत है तो इसको हमें रोज करना है, तो ऑटोमेटिक हमारी आदत पड़ जाएगी। और दिन के समय नेचुरल प्रकाश का उपयोग करने की आदत डालें।
0: हाँ, हम जो भी काम कर रहे हैं तो वो ऐसी जगह पर बैठकर कर सकते हैं ना, जहाँ खिड़कियाँ, जिस रूम में ज्यादा खिड़कियाँ लगी हों, या प्रकाश जो हमें मिल रहा है तो उस पर हम वहाँ पर उस रूम का ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो लाइट्स वगैरह यूज करते हैं उसका कहीं ना कहीं
1: बचत होगी।
0: बचत होती है। और नॉर्मल बल्ब की जगह मान ली हम लोग एलईडी बल्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो काफी कम खर्च कर देते हैं। और इसका जो खर्च होता है, कहते हैं कि वो जो नॉर्मल बल्ब जब हम यूज करते हैं तो उससे काफी कम होता है। और जब विद्युत उपकरण लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम विद्युत उपकरण खरीद रहे हैं तो उसमें रेटिंग का खास ध्यान रखें कि किस रेटिंग का वो उपकरण है, क्योंकि इससे भी हम बिजली की बचत कर सकते हैं।
1: अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और कहना चाहूँगी, मुझे अभी मतलब याद आई, जैसे चार्जर, घर में चार्जर होते हैं ना, लोग ने फोन चार्ज किया
0: और
1: और
0: मोबाइल
1: उसको
0: हटा लिया।
1: हाँ मोबाइल हटा लिया और वो
0: हाँ।
1: ऑन है, चार्जर सॉकेट में लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अननेसेसरी फोन का जब इस्तेमाल हम करते हैं, दिन भर हमें कुछ नहीं काम है तो बस हम फोन चला रहे हैं, तो उससे बैटरी एक जो है डिस्चार्ज होती है, ठीक है, तो वो फिर हमें चार्ज करना पड़ता है। तो थोड़ी
0: ऐसा मतलब सिर्फ फोन की ही बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी
1: बहुत सारी,
0: चीजें
1: हाँ,
0: हैं जो
1: अप्लायंसेस है, हाँ
0: हम दिन भर में काम करते हैं। और जो तुमने भी स्विच वाली बात कही ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर घर में ऐसा होता
1: होता है
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: कि हमारे जरा सा ध्यान ना देने पर वो चीजें हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे बिजली के बिल को बढ़ाती हैं,
1: बढ़ाती
0: है
1: हैं
0: ना।
1: बिल्कुल।
0: और आजकल हम ऐसे क्यों ना संसाधन उपयोग में लाएं या इस तरह से कुछ यूज करें जिससे हमारी बिजली की बचत और ज्यादा हो।
1: हाँ बिल्कुल, अगर हम घर में एसी का उपयोग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या करना, हमें अभी तुमने जो बताया 5 स्टार रेटिंग की चीज़ें लेनी चाहिए, और उनका टेम्परेचर जो है ना, एसी का टेम्परेचर 24 और 26 के बीच में ही रखना चाहिए। और फ्रिज का दरवाज़ा जो है बार बार नहीं खोलना चाहिए, बचना चाहिए। आप एक बार में सारा सामान निकाल लीजिए और सब सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, फिर एक बार में सारा अंदर रख दीजिए।
0: और मान ली इस समय तो सोलर जो पैनल्स हैं उनका भी यूज काफी बढ़ रहा
1: बढ़ रहा
0: है
1: है।
0: और लगाए भी जा रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए सुविधाएं दे रही है। तो आजकल अगर चाहें तो सोलर एनर्जी जैसे जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो अवेलेबल हैं, अगर संभव हो तो हम लगवा सकते हैं। तो सोलर पैनल, सोलर लाइट्स का हम उपयोग कर सकते हैं और इससे बिजली बचत कह सकते हैं काफी हो जाती है। और बिजली बचत के साथ साथ हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें भी मालनीय
1: बहुत
0: योगदान हो जाता
1: योगदान
0: है।
1: होता है। और कहते हैं ना, बिजली की बचत केवल हमारे पैसे को ही नहीं बचाती है, पैसा बचाने मतलब पैसा बचाने के साथ साथ ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा संसाधनों को भी सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये एक।
0: बिल्कुल मालनी, तुमने जो मनी सेविंग की बात कही ये बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बैठती है। तो दोस्तों, यानी हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हम सभी मिलकर जिम्मेदारी निभाएं और कह सकते हैं ना कि ऊर्जा बचाओ, भविष्य बचाओ, और ये जो
1: हाँ
0: संदेश है वो जन जन तक पहुंचे।
1: जन जन तक पहुंचाओ, खुद करो और लोगों तक पहुंचाओ। फिलहाल स्क्रीन पर एक मेल भी हमें दिख रही है, लिखती हैं, हाय आरती दीदी, मालिनी दीदी, मी एंड माय फैमिली रियली लाइक योर प्रोग्राम। हम नवा बहन को,
0: माली
1: हम
0: किसकी मेल है?
1: ये मेल है दया शंकर शुक्ला की,
0: अच्छा,
1: इन्होंने हमें मेल किया है, एंड अदर प्रोग्राम आल्सो, मतलब फिर इन्होंने लिखा है, हम डेली आपका प्रोग्राम सुनते हैं और आपके टॉपिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। फ्रॉम रिचा शुक्ला, सुमन शुक्ला, ईशानी शुक्ला एंड फैमिली। तो इन्होंने कहाँ से मेल भेजी है ये तो मुझे दिख नहीं रहा है,
0: तो हम यही कहना चाहते हैं कि दोबारा
1: जगह
0: से जब मेल करें तो
1: का
0: उसमें
1: नाम
0: हाँ
1: लिखें,
0: जगह का नाम, एड्रेस
1: जरूर लिखें।
0: जरूर मेंशन कर दें। और उनका हम कर रहे हैं तहे दिल से शुक्रिया कि
1: शुक्रिया,
0: उन्होंने
1: इतनी अच्छी मेल भेजी
0: हाँ
1: है।
0: अच्छी मेल भेजी। और

0: जी हाँ दोस्तों, बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और कनेक्ट रहिए हमारे साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर हम नवा प्रोग्राम में, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ आरजे आरती और
1: मैं हूँ मालिनी आरजे मालिनी
0: और बातचीत का जो सिलसिला है वो यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। सो

0: कनेक्ट रही आप हमारे साथ। हम
1: अच्छा अभी तुमने मुस्कुराते रहिए लिसनर्स को कहा, और जो लिसनर्स की मेल आ रही है ना, ये हमको मुस्कुराने की वजह दे रही है।
0: ये बात तो तुमने सही कहा,
1: क्योंकि जैसे मेल आ रही है, अभी हम लोगों ने जैसे अभी क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आप घर में बिजली की बचत करते हैं तो बिजली की बचत करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, किन छोटी छोटी आदतों को आप अपने अंदर मतलब शुमार किए हुए हैं जिससे बिजली की बचत होती है। तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आई डी है AIRKANSOMETIA@gmail.com, या कोई और भी आपके मन में विचार है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, और बन सकते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा। और मेल की बात चलिए तो आरती, मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे एक मेल दिख रही है, तुमने खोल के रखी है।
0: बिल्कुल मालनी, और ये जो मेल आई हुई है ये आई है भैया मोनू सेठ की। और ये जो भाई साहब है, ये इन्होंने अपनी एक इंटरेस्टिंग सी जो स्टोरी है इनके लाइफ की उसको शेयर किया है।
1: बिल्कुल, तो हमको लिसनर्स को सुना दे। बिल्कुल, हम तो यही कहने वाले थे।
0: और ये मुझे हंसना इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इन्होंने जो लिखी हुई है, और लिख रहे हैं कि बचपन में रोना वो आज भी हंसना ही लगता, समझ ये नहीं आता कि क्या मैं इतना शरारती था। एक बार आम के बाग में बहुत से आम लगे हुए थे और मौसम था बरसात का, मेरे दोस्त और बड़े भैया सभी लोग निकल पड़े पहले ये पता लगाया कि जो रखवाली करने वाला है वो वहां है कि नहीं। एंड देन सब हमारे सोच के हिसाब से चल रहा था, हम और मेरे भैया नीचे आम बीनने के लिए यानी वहां पहुंच गए, क्योंकि गिनती बहुत फास्ट आती थी कि इतने आम टूट चुके हैं, तीन जो इनके मित्र हैं वो चढ़ गए आम तोड़ने, और कुछ ही आम टूटे कि जो रखवाली करने वाला था वो वहां पर दौड़ के आ पहुंचा। हम और भैया तो आम छोड़कर वहां से भाग निकले, लेकिन जो मित्र पेड़ पर चढ़े थे उनमें से दो और उतरकर भाग गए, एक को पकड़ लिया गया और धुनाई हो गई। उसी की वजह से सबका पता चल गया और कौन कौन था। फिर क्या, सबके घर शिकायत पहुंची, अम्मा जी ने हमारी खूब धुनाई की, कान पकड़कर उठक बैठक कराया, और बड़े भैया जी बस उठक बैठक ही लगाते रहे, सबसे कहते हैं तब से हम आम तोड़ने नहीं गए।
1: अच्छा आरती, इस बात पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, वो मेरा बचपन का किस्सा है।
0: क्या बात।
1: मेरे भी आजू बाजू आम के पेड़ हुआ करते थे, अपने घर में भी थे, लेकिन मैं बगल वाले घर में जाती थी जब वो आंटी दोपहर में सोती थी, तो मैं उनके यहाँ पेड़ पे चढ़ गई थी एक बार। इत्तेफाक से अंकल उस दिन दोपहर में आ गए और जल्दी से भागने के चक्कर में मैं पेड़ से नीचे गिर गई।
0: ओह माय गॉड माली, यानी जब हम लिसनर्स की ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारे जो मन के उद्गार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं निकल आते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने अपने मन की बात हमारे साथ शेयर की। और इसके साथ एक मेल और आई है, अगर चूंकि हमारी एनर्जी से रिलेटेड ही बचत से रिलेटेड है तो हम क्यों ना इसे भी शेयर कर लेते हैं।
1: जरूर।
0: सोनू परवाना मेल ये लिख रहे हैं, सोनू परवाना जी हैं, कि अधिकतर ऊर्जा स्रोतों को ना तो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और ना ही नवीनीकृत किया जा सकता है। गैर अक्षय ऊर्जा जो स्रोत है उनका ईंधन उपयोग में हिस्सा इन्होंने परसेंटेज वगैरह भी लिखा हुआ है, और इसलिए ऐसा कहा गया कि अगले 40 सालों में हमारे जो ऊर्जा के सभी स्रोत हैं वो समाप्त हो सकते हैं। हम ऊर्जा की बचत करके अपने देश की बहुमूल्य मुद्रा की बचत कर सकते हैं और लगभग 75% अपनी जरूरतों को कच्चे तेल आयात से पूरा कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, मतलब कितने अच्छा सा मैसेज है, लोगों तक पहुंच गया है।
0: हाँ, इन्होंने ऊर्जा संरक्षण की बात की है, और इस तरह से काफी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम अपने डेली यूज में ले सकते हैं।
1: एक और मेल दिख रही है, ये है नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, लिखती हैं, नमस्ते गुड मॉर्निंग आरती मैम को और मनु दी को, मेरा सादर प्रणाम। आज मैं
0: मुझे ऐसा लग रहा मालनी लिखना चाहती थी, मनु टाइप हो गया।
1: हाँ, हो सकता है, आई थिंक। हाँ। फिर लिखती हैं, आज मैं आपका हमनवा प्रोग्राम आपके शहर कानपुर से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताना चाहूंगी नीलू शर्मा जो है रूपपुर चंदेला से जो आती है, मेरी रेगुलर लिसनर है, और आज ये कानपुर में है, भाई इनका बहुत बहुत वेलकम करते
0: हैं, इनका स्वागत है हमारे कानपुर में,
1: और प्रोग्राम में भी
0: स्वागत है। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं इनका, और इन्होंने लिखा है कि आपके स्टाफ के सभी उच्च अधिकारियों को मेरा नमस्कार, और बहुत सारे फ्लावर भी इन्होंने सजा करके, मतलब बहुत ही
1: सुंदर हार्ट भी है, फ्लावर्स भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं।
0: बिल्कुल, हमारा जो अगला टॉपिक है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
1: और हम।
0: और माननीय ये जो टॉपिक है ये कह सकते हैं एक ऐसे साथी की तरह जो AI है वो हमें दिखाई देता है, कह सकते हैं हमारे हाथ में रहता है।

0: बिल्कुल
1: है ना, जो वैसे तो हमें दिखाई नहीं देता कि हम अलग से इससे बात करें, लेकिन आज हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में मौजूद है, और वो साथी यही है एआई।
0: एआई को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने आरती जहां हमें सुविधा दी है ना, तो वहीं इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। सुविधाओं की अगर हम पहले बात करें तो सुबह मोबाइल का अलार्म हो, रास्ता बताने वाला मैप हो, ऑनलाइन शॉपिंग की सलाह हो, या फिर गानों का सुझाव देने वाला ऐप हो, हर क्षेत्र में एआई अपना कमाल दिखा रहा है।
1: यानी हम कह सकते हैं मालिनी कि एआई एक ऐसी टेक्निक है जो मशीनों को सोचने, सीखने और निर्णय लेने में मदद करती है। और एआई के फायदे की अगर बात करें तो एआई के इस्तेमाल से काम एक तो जल्दी होता है और तेजी से होता है, जिससे समय भी बचता है।
0: बिल्कुल सही बात कही है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि और मौसम की भविष्यवाणी जैसे क्षेत्रों में ये बेहतरीन परिणाम आज दे रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, हमें पूरा इस पे विश्वास ना करके एक बार अपने भी दिमाग को यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ गलत जानकारी भी इसके जरिए हम तक पहुंचती है। आज जो है एआई की मदद से किसान फसलों की जानकारी पा रहे हैं, डॉक्टर बीमारियों की पहचान में मदद ले रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं नई नई चीज़ों को निकाल करके वहां से पढ़ करके उसको सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल माननीय, और यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई के जहाँ फायदे होते हैं वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं, और कहते हैं कि जब हम एआई से ज्यादा जो हमारे काम है उन पर निर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो उस हिसाब से सोचने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ता है। यानी हाँ, अपने जो काम है जिनको हम कर सकते हैं, जिन पर उस पर हम नहीं निर्भर हो सकते, वो हमें खुद से करना चाहिए,
0: करना भी चाहिए, है ना? क्योंकि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए,
1: इस्तेमाल करना चाहिए। और मानव का जो मस्तिष्क है उसका कह सकते हैं वो बेजोड़ है।
0: अच्छा,
1: आप जितना उसका यूज करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो और बढ़ता ही जाएगा।
0: अच्छा, अभी बहुत सारे किस्से सुनने में भी आए थे, जैसे गूगल मैप होता है, ये अक्सर गलत रास्ते भी बता देता है, और अगर हम हमेशा उनको फॉलो, अगर हम कहते हैं ना ठीक है हम हाईवे पे हैं तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर शहर के अंदर है तो मैप का इस्तेमाल करिए, लेकिन आप पूछिए भी बाहर उतर कर।
1: कई बार ऐसा होता है कि गलत जानकारियां भी मिल जाती है,
0: और इससे नुकसान,
1: गलत जानकारियों का सेंस ये है कि वो रास्ता बता रहा है, अब वो रास्ता पतली सकरी गली है कि चौड़ी सड़क है, ये डिपेंड करता है। तो आपको थोड़ा सा अपने मस्तिष्क का यूज करना है, अपने माइंड से भी जानकारी लेनी है। मतलब कहने का सेंस ये है कि पूरी तरह से हमें एआई पर डिपेंड नहीं होना है।
0: अच्छा, बहुत से चीजें मैंने ये भी देखी है कि लोग फोटो अपलोड कर देते हैं तो एआई के जरिए बहुत सारे जो होते हैं गलत तरह से फोटो को बना करके गलत तरह से जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है, तो इससे एक तरह का गलत मैसेज जाता है लोगों तक। तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: है
1: सही कहा,
0: हमें विश्वास नहीं करना है। और दूसरी चीज, हमें सोशल मीडिया पे कुछ भी शेयर करने के पहले 10 बार सोच लेना चाहिए।
1: और जो ऐसी चीजें होती हैं वो कहने का सेंस अभी जब हम बात कर रहे थे तो यही है कि ये जरूरी है कि हम एआई का उपयोग करें, लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। तकनीक जो होती है ना वो हमारी हेल्प के लिए होती है, ये हमारा विकल्प नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल, एग्जैक्टली आरती। और एआई कोई जादू नहीं बल्कि इंसानी बुद्धिमत्ता का एक शानदार विस्तार है। ये हमारे भविष्य को आसान बना सकता है, बशर्ते हम इसे सही दिशा दें।
1: अब जैसे बहुत सारे जो स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं कह सकते हैं, या घर के लिए बच्चों को क्राफ्टिंग दी गई, तो होता क्या है, बच्चे भी डिपेंडेंसी बढ़ा लेते हैं एआई पर कि उसी से निकाला, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने माइंड का, अपने मस्तिष्क का यूज करके जब आप वो काम करते हैं तो उससे आपको जो परिणाम है, कॉन्फिडेंस है, वो भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपका काम और अच्छे से होता है। और मान ली, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मशीनें चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, इंसानी संवेदनाएं, रचनात्मकता और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।
0: यानी कि कहा जा सकता है कि एआई एक ऐसा डिजिटल सहायक है जो हमसे बातचीत कर सकता है, हमारे सवालों के जवाब दे सकता है और कई काम आसान बना सकता है, लेकिन इंसान की काल्पनिक भावनाएं, विवेक आज भी सबसे अनमोल है। एआई हमारा सहयोगी है, हमारा स्थान लेने वाला नहीं है।

0: आरती, वाकई में देखो ना, आज जो है एआई के पीछे दुनिया चल रही है, लेकिन अभी स्क्रीन पर जो हमारी मेल दिख रही है ना, उन लोगों को प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई उनकी मेल तो शामिल करना जरूरी है।
1: मान ली ये जो मेल आ रही है, ये कहीं ना कहीं जो तुम सॉन्ग्स बजा रही हो ना सेलेक्ट कर करके, उनके लिए भी आ रही है, तो एक मेल ऐसी भी शामिल कर लेते हैं हम लोग।
0: बिल्कुल हाँ।
1: और ये मेल आई है मनोज बंसल जी की, ये क्या कह रहे हैं?
0: ये है हांसी हरियाणा से, नमस्कार। ये जो पुराने और मधुर गीत आप खोज कर हमें सुनाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई गीत तो हम भुला भी चुके होते हैं, लेकिन आप सुनाते हैं तो हमें बड़ा ही मधुर सुनने में लगता है
1: भाई। और इन्होंने ये भी लिखा है कि तब हमें वो मधुर गीत याद आ जाते हैं और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और इन्होंने बड़े मन से ये मेल लिखी हुई है
0: भाई। गानों की मेल इन्होंने लिखी, अच्छा लग रहा है आपको भाई। चलिए आगे हम और भी कोशिश करेंगे, आपको एक मेल और आई है।
1: और ये मेल है मालनी आंचल सेठ की खालिसपुर से, और इन्होंने लिखा है मौजूदा दौर में भवन निर्माण में ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है, कृत्रिम बिजली से दूर रहा जाए, प्राकृतिक हवा और ऊर्जा संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाए, भवन निर्माण में पर्यावरण मित्र संबंधी जो उपयोग उपयोग किया जाए, तभी हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन वक्त को भी देखें, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है आरती। और अभी हमें बात करना है खेलों में, जो आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उसके बारे में।
1: ये बात हम कर भी रहे हैं क्योंकि इस समय विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है मल्ली।
0: अरे तो तेजस्विनी में आज हम बात करेंगे ना कैसी। हाँ। तो आरती, आज की बेटियां सिर्फ सपने नहीं देख रही हैं बल्कि मैदान में उतर कर उन्हें सच भी करें, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर एथलेटिक्स, हर जगह आज महिलाओं का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल मालनी, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि अब खेल में आगे बढ़ने के रास्ते भी पहले से कहीं ज्यादा खुल गए हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, और जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं वहां से भी स्टार्टिंग करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा जा सकता है।
0: अच्छा, एक ऐसी ही हमसे महिलाएं जुड़ी हैं फोन लाइन पर, वो एक एकेडमी चलाती हैं, तो हमने लिसनर्स को सुनाते हैं कि वो क्या कहती हैं।
2: हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है, मैं एक दिव्यांग महिलाओं की स्पोर्ट्स संस्था चलाती हूँ। इस संस्था के अंतर्गत हम दिव्यांग

0: दिव्यांग महिलाओं को नेशनल इंटरनेशनल खेलने में मदद करते हैं और इसी के अंतर्गत क्रिकेट में यूपी की महिलाओं को नॉर्थ जोन में खेलने भेजा जिसमें वो आज तक फर्स्ट आ रही हैं। कहने का सार ये है कि जब हमारी दिव्यांग बहनें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जा सकती हैं, तो हमारी आपकी बच्चियां तो इसमें और भी शोहरत हासिल कर सकती हैं। सभी पेरेंट्स को एक ही सलाह दूंगी कि सिर्फ शादी ही आखिरी ऑप्शन नहीं है, उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने मदद करें, प्रोत्साहित करें। यकीन मानिए कि बच्चियों को आप अगर 1% देते हैं या 10% देते हैं, वो आपको 100% करके दिखाएंगी। कुछ माँ बाप को ही लगता है कि महिलाओं के लिए शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स में पोटेंशियल होता है। वो आपको इस लेवल पर पहुँचाएंगे कि आप गर्व करेंगे अपनी बच्चियों पर। प्लीज़ उनको आगे बढ़ने मदद करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। थैंक यू।
1: अच्छा आरती, ये तो उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन आज हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में अपना जलवा दिखा रही हैं और वो काफ़ी आगे मुकाम हासिल कर चुकी हैं। तो सुनाते हैं ऐसी ही एक कानपुर शहर की बेटी क्या कहती है।
2: नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी निगम है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मैं राइफल शूटर रह चुकी हूँ और हाल ही में मैं पिस्तौल शूटिंग अपनी शुरू की हूँ। शूटिंग का ये जो क्रेज़ है वो मुझे अपने पापा से आया है। हमेशा से उन्हें इतना पैशनेट देख के अब शूटिंग को लेके मुझे भी मन में आया कि कुछ करना है मुझे भी इस फील्ड में। वो एक जज्बा मिला मुझे उनसे। हमारी खुद की रेंज भी है, एकेडमी है कानपुर में जहाँ पापा एज ए कोच सिखाते भी हैं। उन्हीं से मुझे इतना हौसला मिला ये फील्ड चुनने का, इसमें आगे बढ़ने का, प्लस उनका सपोर्ट बहुत रहा इस फील्ड में। राइफल शूटिंग में मैं इंडिया टीम ट्रायल्स तक खेल चुकी हूँ। काफ़ी स्टेट लेवल, प्री स्टेट लेवल और प्री नेशनल लेवल पे मैं मेडल्स भी हासिल की हूँ और अब मैं पिस्टल शूटिंग अपनी परस्यू कर रही हूँ जिसमें मैं नेशनल लेवल तक पहुँच चुकी हूँ और इसमें भी प्री स्टेट, स्टेट लेवल्स तक मैंने काफ़ी सारे मेडल हासिल किए हैं। इनके अलावा जो ओपन चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, मैं पूरा अपना ट्राई करती हूँ कि मैं उनमें भी अपना 100% दूँ और जितना हो पाए मैं आगे बढ़ूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक महिला भी आगे बढ़ के अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करती है तो बाकी महिलाओं, मित्रों को भी एक हौसला मिलता है, एक उम्मीद मिलती है आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। तो मैं यही आशा करती हूँ कि जितनी भी और महिला हैं वो अपने करियर को लेके, जिस भी चीज के लिए वो पैशनेट हैं, उसके लिए वो आगे बढ़े और उसमें जीत हासिल करें।
1: अच्छा आरती, ये तो नंदिनी ने अपने विचार मतलब हमसे साझा किए, हमारे लिसनर्स तक पहुँचे और आई थिंक घर के सभी पेरेंट्स मोटिवेट हो रहे होंगे कि आज महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे घर में जितनी भी बेटियां हैं वो अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं तो हमें उनको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। तो सृष्टि कानपुर शहर से हैं, क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं सृष्टि सक्सेना कानपुर से। बचपन से ही मेरा रुझान खेल कूद की ओर रहा है। मेरे माता पिता ने मेरे शौक को समझा और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। उनके सहयोग और अपने निरंतर प्रयासों के कारण खेल मेरा पैशन बन गया। मुझे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्तर पर अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने, टेबल टेनिस में भी राष्ट्र स्तर तक अपना प्रदर्शन दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खेल में मेरे योगदान के लिए मुझे माननीय राज्यपाल जी, कैबिनेट मंत्री, अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। आज मैं बहन और बेटियों से दिल से एक बात कहना चाहूँगी कि खेल केवल मैदान में जीतने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, अनुशासन और सपनों को साकार करने का माध्यम है। याद है आपको हरियाणा की फोगाट बहनें, ये बहनें मिसाल हैं बुलंद हौसलों की। आज महिलाओं की भागीदारी खेलों में बढ़ रही है, यह समाज की सकारात्मक सोच का प्रतीक है। आज खेलों को कोई शौक तो माना ही जाता है, साथ ही साथ खेलों को सम्मान, करियर और देश की सेवा में एक सशक्त माध्यम के रूप में भी देखा जा रहा है। खेल चाहे कोई भी हो, हर खेल हमें संघर्ष करना, हार से सीखना और आगे बढ़ना सिखाता है। मैं आज भी खेलों से जुड़ी हुई हूँ और लगातार महिलाओं, युवाओं को खेल के लिए जागरूक करने का प्रयास करती रहती हूँ। मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूँगी, जिस तरह मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया है, उसी तरह आप भी अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक परिवार नहीं पूरा देश आगे बढ़ता है। धन्यवाद।
4: बिल्कुल मालिनी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और हम सबको मिलकर अपनी बहनों बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए ताकि

0: आने वाले जो वक्त है उसमें भारत की हर बेटी अपने सपनों के साथ साथ देश का तिरंगा भी वर्ल्ड लेवल के मंच पर गर्व से लहरा सके।
1: और इन्होंने फोगाट बहनों की बात की है, अब चाहे मनु भाकर हों और बहुत सारी और भी महिलाएं हैं निशानेबाजी में, ये मनु भाकर हैं, और पीवी सिंधु हैं बैडमिंटन में, मुक्केबाजी में मैरी कॉम, सभी हमारे देश का गर्व है। भारत का नाम ये देश दुनिया में रोशन करती हैं।
0: और मालनी, आज के तेजस्विनी सेगमेंट के अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसी युवा महिला की जिन्होंने अपने शानदार खेल और आत्मविश्वास से देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर दिया है, और वो है स्मृति मंधाना। और कहते हैं ना कि आज की तेजस्विनी हम महिला क्रिकेट टीम के उप कप्तान स्मृति मंधाना को बना रहे हैं, और क्रिकेट के मैदान पर जब स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी के लिए वो उतरती है ना, तो उनकी जो शानदार स्ट्रोक्स होते हैं, जो संयमित खेल है, वो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। और 18 जुलाई 1996 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी स्मृति ने बहुत ही छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था।
1: स्मृति मंधाना काफ़ी चर्चा का विषय भी रही हैं इन दिनों, मतलब ये अपनी जो है खेल के प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया इन्होंने। और आरती, इनके परिवार का भी कहना है, इनके परिवार का भी जो गहरा जुड़ाव रहा है क्रिकेट से, पिता और बड़े भाई का जो है कनेक्शन क्रिकेट खेलते हुए देख उनको, मतलब अपने पिता को और अपने चाचा को, चाचा ही कहेंगे, और साथ में बड़े भाई, उनको क्रिकेट खेलता हुआ जब वो देखती थी तो उनकी रुचि खेल के प्रति बढ़ती थी, और उनकी मेहनत और लगन को देख करके उन्हें भी इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने इस क्षेत्र में जाकर के अपनी पहचान बनाई।
0: बिल्कुल मालिनी, तुमने बिल्कुल सही बात कही कि पिता और बड़े भाई से उन्हें एक खेल के प्रति जो ललक होती है ना वो बढ़ी उनकी। और वो साल था 2013 जब उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे शुरू किया, और इसके बाद उन्होंने कई यादगार पारियां खेली और उन कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए।
1: और आरती, सन 2018 में उन्हें आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से भी नवाजा गया। जनवरी 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में मंधाना विश्व कप ऑफ इंडिया में 4000 रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर बनी।
0: ये तो पहले की बात थी मालनी, अगर हम अभी हाल ही की बात करें तो जो बुधवार को भारत ने T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को हराया, तब लीड्स में स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी खेली, और उस पारी में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। मेंस एंड वीमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली वो बनी पहली बल्लेबाज।
1: और स्मृति मंधाना की विमेन T20 वर्ल्ड कप में मतलब छठी 50 से ज़्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, जिसमें कि वो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 50 लगाने वाली भारतीय महिला बन गई हैं।
0: क्या बात है, तो हम सैल्यूट कर रहे हैं स्मृति मंधाना को, है ना। और स्मृति मंधाना बेहतरीन बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता के कारण दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में आज गिनी जा रही हैं। तो आज की तेजस्विनी बनी है हमारी भारतीय क्रिकेट की चमकती सितारा स्मृति मंधाना।
1: बिल्कुल आरती, वो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आज, और ये भी साबित करती हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं।

0: आरती, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है तो हमारी रेसिपी जरूरी है।
1: तो सामग्री मालिनी बता दो जल्दी से कि क्या रेसिपी बनने वाली है, उसकी सामग्री क्या
0: आज
1: है।
0: बनेगा सॉफ्ट स्पंजी कोकोनट डोसा रेसिपी है, और इसमें 1 कप चावल, आधा कप ताज़ा नारियल, 1/4 कप पोहा यानी कि चूड़ा, और 1/4 कप दही, आधा चम्मच मेथी दाना, नमक स्वाद अनुसार, पानी आवश्यकता अनुसार, तेल या घी सेंकने के लिए।
1: और बनाने की विधि कुछ इस तरह है कि सबसे पहले चावल और मेथी दाना को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है। पोहा को 15 मिनट पहले पानी में भिगो सकते हैं, और इसके बाद तैयार करना है बैटर। भीगे हुए चावल, मेथी दाना, पोहा, नारियल और दही को मिलाकर थोड़ा सा पानी डालते हुए मुलायम बैटर पीस लेना है, और इसमें इसके बाद मिलाना है स्वाद के अनुसार नमक, और रख देना है फर्मेंटेशन के लिए। और इस समय का जो वक्त होता है ना मालिनी, 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट के लिए रखा जा सकता है। और अब बनाना है डोसा। तवा को गर्म करके हल्का सा तेल लगाएं और एक कलछी बैटर डालकर हल्के हाथ से फैलाएं। इसे बहुत पतला ना करें। ऊपर से थोड़ा सा तेल या घी लगाएं और ढककर मध्यम आंच में 2 से 3 मिनट पकाएं। जब ऊपर का हिस्सा पक जाए और नीचे से सुनहरा हो जाए तब इसे उतार लें। इसे पलटने की आवश्यकता नहीं होती, और इसे नारियल की चटनी, सांभर, आलू मसाला के साथ गर्मा गर्म परोसें।
0: एंजॉय करें। और अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त कह रहा है कि बस इजाजत हम लोग लें,
1: हाँ,
0: है ना, लिसनर से। तो भाई आज के हमनवा का शो बस यहीं तक समाप्त होता है।
1: मैं रहूंगी आपके साथ 3 बजे से म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम में, तो कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ। और फिलहाल मुझे यानी आरजे आरती और
0: आरजे मालिनी
1: को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ और आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि

लिलो और न्याय बंधु जैसी सेवाओं ने न्याय तक पहुंच को आसान बनाया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट और अदालती कार्रवाई के सीधे प्रसारण से न्यायपालिका आम लोगों की और करीब आई है। उन्होंने बताया कि एआई आधारित उपकरणों की मदद से न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ के साथ कल सहारनपुर में हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी ललन सिंह मारा गया। उस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम था। एसटीएफ के अनुसार वो कई जघन्य अपराधों में शामिल था, जिसने 7 हत्याएं, बैंक डकैती, लूट और सरकारी हत्याओं की चोरी शामिल थी। स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की

पेड़ में कुख्यात अपराधी ललन सिंह मारा गया। उस पर 25,00,000 रुपए का इनाम था। एसटीएफ के अनुसार वो कई जघन्य अपराधों में शामिल था, जिसने 7 हत्याएं, बैंक डकैती, लूट और सरकारी हत्याओं की चोरी शामिल थी। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इसमें आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $79 पर आ गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की वापसी हुई है। इस दौरे में शुभमन गिल कप्तान और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।
2: हर

0: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
1: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड तीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं, ये काजल जिन आंखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाना भूल। हाँ, तुम हो शत्रु।

बात तो ये 110% सही है कि जब आप अपने मन से अपने दिल से खुश होती हो तो जमाना जो है आगे नहीं, आप आगे होती, बाकी सब आपके पीछे होते हैं। और इसीलिए आप शत्रुपा कहलाती, क्योंकि आप सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हजार सारे काम करती हैं जो कई बार आपको मेंटल स्ट्रेस में भी रखते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी अच्छी सारी बात के बीच ये मेंटल स्ट्रेस कहां से आया, तो बता देंगे क्योंकि आजकल शत्रुपा जो है ना विमेन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो क्या खास होने वाला है जानना है ना, तो कहीं मत जाइए, दिल को शायराना रखिए। और दिल जब शायराना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल स्ट्रेस कम होते। बहरहाल दोपहर के 12:05 का वक्त आपके साथ, मैं आपकी दोस्त आपकी आरजे रुचा, आपकी अपने 107 FM रेनबो पर। यस, गुड आफ्टरनून।

बट पता है कई बार इस शायराना से दिल में व्यवधान पड़ जाते हैं, तब जब हम बात करते हैं बढ़ते तनाव की, खासकर तब जब बात हो कामकाजी महिलाओं या फिर घरेलू महिलाओं की। तो आज का जो शत्रुपा है ना, हम हमारी कामकाजी यानी कि वर्किंग वुमेन वर्सेस हाउसवाइफ्स, इनके बीच बढ़ते तनाव, इनके बीच बढ़ता जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है ना, इससे जुड़ते हुए आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो जहां कहीं भी हैं आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जब बात कामकाजी और घरेलू महिलाओं की है, तो कहते हैं कि दोनों की जिंदगी की चुनौतियां अलग अलग हैं, लेकिन मानसिक तनाव का बोझ कहीं ना कहीं दोनों पर एक सा होता है। हाँ, आप बेहतर जानती होंगी, मेरे बताने से ज्यादा आप इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि हाँ, दोनों का जो तनाव का बोझ है वो लगभग एक सा है। तो ये जो तनाव है वर्किंग वुमेन वर्सेस घरेलू जो महिलाएं हमारी हाउसवाइफ्स हैं, आज का टॉपिक उनके बीच बढ़ते तनाव मानसिक, और खासकर तब जब बात करते हैं भावनात्मक और मानसिक तनाव की, इन तनावों के बीच में योग किस तरीके से साग आपके लिए कारगर हो सकता है, कैसे आपको इन तनाव से बाहर निकाल सकता है, तमाम सारी बातें आज के इस शत्रुपा में रहेंगी। लेकिन वो आप तभी जान पाएंगे जब आप यहां जुड़ेंगे मेरे साथ। तो मेरी आपसे गुजारिश हमेशा की तरह कि आप आए, जुड़े मेरे साथ, और सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि वो भी जो आपके घर को संभालती हैं, आपका जो घर है, जो आप कहते हैं ना पुरुष वर्ग जिसकी बात होती है, तो मेरे साथ उनका भी यहां रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप सुनेंगे तब आप अपनी साझेदारी उनके साथ शेयर कर पाएंगे, और फिर वो जो तनाव है उनके मन में उससे कहीं दूर कर पाएंगे। क्योंकि मन कहते हैं चंचल है, बहता है, भागता है सब तरफ, लेकिन उसे एकाग्र कर पाना ये एक बड़ी बात होती है, और वो तभी होगा जब आपका साथ उसे मिलेगा। 12:10 शत्रुपा आपकी अपने 107 FM रेनबो पर।

बस इसी बात को तो पता लगाना कि वो जो मन भागता है ना, कई बार जो तनाव आपके आसपास होते हैं, जो डिप्रेशन का कारण बनते हैं, अवसाद का कारण बनते हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। आज के क्षत्रपा में हम आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो महिलाओं की भूमिकाएं वैसी की वैसी हैं, वो बिल्कुल नहीं बदली हैं, लेकिन समाज और परिवार में उनसे उम्मीदें आज भी वैसी हैं। वही पारंपरिक सोच है कई बार, और यही विरोधाभास और असंतुलन अक्सर

इलाव में मानसिक तनाव अवसाद और बर्न आउट का कारण बन जाता है। तो शत्रुपा में हम इस बात के बारे में बात करने वाले ही हैं, लेकिन कुछ रिसर्च भी हैं, थोड़ा सा उन पर ही बात करते हैं और फिर जानेंगे उन कारणों को और उन कारण के निवारण हम कैसे कर सकते हैं और उन तमाम कारणों और निवारणों के बीच में योग किस तरीके से सहायक हो सकता है, तब जब हम एक घरेलू या फिर वर्किंग वीमेन की बात करते हैं। अभी हाल में एक रिसर्च हुई जो ये कहती है कि अगर हम महिलाओं को देखते हैं तो उनकी शारीरिक जो बनावट है, हार्मोनल चक्र और बीमारियां पुरुषों से बिल्कुल अलग हैं और इसी वजह से उनके ऊपर किसी चीज का पड़ता है तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से पड़ता है, एक अलग तरीके से पड़ता है। अभी हाल में एक रिसर्च हुई जो ये कहती है कि तकरीबन 60% जो वर्किंग वीमेन हैं उन्होंने माना है कि घर और दफ्तर के दोहरे दबाव के कारण मेंटल जो फटीग है उसका शिकार होती है, यानी कि मानसिक थकावट जो होती है। तो वहीं अगर हम घरेलू महिलाओं की बात करें तो उनमें डिप्रेशन के अंतर्गत एक सोच को देखने के लिए एक रिसर्च किया गया जिसमें तकरीबन 15-18% जो आपकी वर्किंग माफ कीजिएगा हाउस वाइव्स हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार पाई जाती हैं। शोध ये कहते हैं कि जिन महिलाओं में को घरेलू कामों में परिवार का सहयोग नहीं मिलता बेसिकली उनमें डिप्रेशन का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्या कारण है, क्या निवारण हो सकते हैं, सब कुछ जानना है तो बस यहीं रहिए मेरे साथ क्योंकि ये जो आज का विषय है डेफिनेटली आपके लिए। आप जो घर की धुरी हैं, जो पूरा घर संभालती हैं और तब कई बार जब आपको ऐसे किसी सिनेरियो का सामना करना पड़ता है जहां से आप मानसिक अवसाद का शिकार बने तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि जहां आप हैं वहीं हम हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आपकी विडंबना अगर हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। 12:17 का वक्त है, एक दूसरे के हाथ में हाथ हो तो जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरती से कटती है। बाकी चीजों के लिए बस यही रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं शत्रुपा।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

एग्जैक्टली एक बार ये करके देखिए, अगर एक दूसरे के हाथ पे दूसरे का हाथ रहेगा, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो घर के पुरुष वर्ग है, कई बार आप नहीं समझ पाते, आपके द्वारा कही गई बातें जो है ना दिलों में ऐसे सीधा घर करती है कि जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो महिलाओं के घर की जो महिलाएं हैं उनके दिलों में एक जो डिप्रेशन का जो रीजन है ना उसको पैदा कर देती हैं। तो घरेलू महिलाओं की बात भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ वर्किंग वुमेन की बात भी आपसे पहले मैं करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दफ्तर में अपनी योग्यता साबित करनी होती है, उन्हें घर तो संभाल ही रही है और जब घर की बात आती है तो एक आदर्श बहू, पत्नी या फिर माँ की भूमिका भी निभानी है। तो ऐसे में शोध ये भी कहते हैं कि कामकाजी महिलाएं दफ्तर की 8 से 9 घंटे की शिफ्ट के बाद जब घर आकर घरेलू कामों की दूसरी शिफ्ट शुरू करती हैं तो इसे डबल बर्डन यानी कि दोहरा बोझ कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेस करता है और फिर यहीं से जनरेट होता है अपराध बोध। वो अपराध बोध जो घर से जुड़े हुए कामों को पूरा अच्छे ढंग से ना कर पाने का एक अपराध देता है। बात जब बच्चों की हो या परिवार की हो, माता पिता की हो, सास ससुर की हो, ऐसा मन में कहीं ख्याल आने लगता है कि अरे हम सबकी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, बच्चे कहीं बैठे हैं मोबाइल में लगे हुए हैं, हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि हम खुद स्ट्रेस्ड हैं, या फिर कुछ प्रॉपर तरीके से घर में बनना है वो नहीं बना पा रहे क्योंकि हम इसको भी स्ट्रेस में हैं, हम उसको पूरा कैसे करें। तो ये तमाम सारे तनाव जो हैं ये डबल बर्डन की तरीके से महिलाओं के सिर पर कहीं एक बोझ को देते हैं जो अपराध बोध को जनरेट करता है और फिर एक मदर गिल्ट एक टर्म है वो यहां से पैदा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क प्लेस बिजनेस की तो पुरुषों की तुलना में समान पद पर होने के बावजूद भी कई बार, नहीं ये नहीं कहते कि हमेशा ऐसा होता है बट अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को कम आंका जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए तो समाज की प्रथा भी रही है, ये कहा जाता है कि महिलाएं हैं थोड़ा सा सलीके से रहे, चौका चूल्हा संभाले, उन्हें तो घर की चार दीवारी में होना चाहिए। तो कहीं ये एक सोच एक ये प्रथा पुरातन काल से चली ही आ रही है, तो इसमें ना आप कुछ कर पाते हैं कई बार ना हम कुछ कर पाते हैं, तो ये एक सोच दिमाग में चलती ही चलती।

चलती है, जो अपराध बोध देती है, जो मेंटल फटीग देती है, जो डिप्रेशन का कारण बनती है, मेंटल लोड बढ़ता है, दफ्तर की डेडलाइंस के साथ साथ घर का काम सब खत्म करना है, बच्चों की पीटीएम कब है, उनको स्कूल भेजना है, सवेरे का नाश्ता, फिर दोपहर के खाने में क्या होगा, जब रात आएंगे, तमाम सारी चीजें हैं, कैसे प्लानिंग करनी है, सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं एक महिला के दिमाग में बैकग्राउंड में चलती है, खासकर जब वो एक वर्किंग वुमेन भी है, और फिर वही स्थिति तनाव की, डिप्रेशन की, मेंटल फटीग की, तो कैसे इससे निपटेंगे ये आपको बताना है। लेकिन घरेलू महिलाओं के साथ क्या चुनौतियां होती हैं ये भी जानना जरूरी है, तो जब इस गाने की बात लौटेंगे तो उन चुनौतियों की बात होगी, उसके बाद हम उन निवारणों पर पहुंचेंगे, साथ ही योग कैसे आपके लिए मददगार हो सकता है इन तनावों से निकलने के लिए, ये जानना भी बेहद रहेगा जरूरी आपके लिए। तो बस फिलहाल जब तक ये गाना आप तक आ रहा है, खुद को थोड़ा सा सजाइए, संवारिए, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो डेफिनेटली आपका मन खुश रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर जिएंगी, और जीने के लिए एक और अच्छा साधन ये कि आप रेनबो से हमेशा यूं ही कनेक्ट रहें।

तो ये चाहते हैं कि कोई तो बहाना बने जब आपके दिल का हाल सवरे, आप खुद सजे सवरे, क्योंकि आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार है। आप खुश रहेंगी तो जाहिर सी बात है आपका परिवार खुश रहेगा, आपसे जुड़े लोग खुश रहेंगे।

और उसके लिए पूरी कोशिशों के साथ हम यहाँ आपके साथ तैनात हैं। तो बात कर रहे हैं आज आपसे वर्किंग वुमेन वर्सेस हाउसवाइफ्स, बढ़ता तनाव मानसिक एंड भावनात्मक, और उसमें जो योग है ना वो किस तरीके से सहायक हो सकता है। तो अभी हमने आपसे पहले बात की थी जो कामकाजी महिलाओं की बात आती है तो उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम अगर हम घरेलू महिलाएं जो हमारी होम मेकर्स है जिनको हम कहते हैं, कई बार बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है ना आपको, हाँ मुझे पता है दिल से कई सारी आवाज आई होगी, देखो ये बात तो होती है, अक्सर लोग कह देते हैं घर ही में तो रहती हो करती क्या हो, बट आपका सिर्फ ये कह देना कितना बड़ा दंश होता है शायद आप खुद भी नहीं समझ पाते। अक्सर ये मान लिया जाता है कि घरेलू महिलाएं चूंकि घर पे ही रहती हैं होम मेकर्स है इसलिए उन्हें कोई तनाव नहीं होगा, करना क्या है दिन भर बस खाना बनाना है, घर को साफ सुथरा करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, सास ससुर का ख्याल रखना है, पूरा दिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। एक बार अगर मैं आपसे ये कह दूं महाशय जो मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त, अगर मैं एक बार ये कह दूं कि आपको पूरा दिन रह करके आज घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बच्चों को भी देखना है, आपके मदर फादर को भी देखना है, यकीन मानिए आप रात तक आते आते निढाल हो जाएंगे और फिर शायद आप ये समझ सकते हैं कि एक जो होम मेकर है जो एक हाउस वाइफ है वो सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी का एक वो हिस्सा है जो आपके आशियानों को सजा रही है, संवार रही है, बहुत कुछ आपको दे रही है। लेकिन हम और आप, हमारी ये सोच कि तुम तो घर में हो करती क्या हो। घरेलू महिलाओं में डिप्रेशन का खतरा बहुत गहरा होता है, मानसिक शोध ये बताते हैं जब इस तरीके की कोई बात आप कभी कई बार कह देते हैं। अक्सर कोई जब आपको जो काम घर पे कर रही है जब उसकी कोई मान्यता, या फिर जैसे अगर एक वर्किंग वुमेन है वो घर से बाहर निकल रही है तो उससे एक माना भी जा रहा है कि हाँ घर से काम करने जा रही है, प्लस कुछ पैसा भी घर पे ला रही है, वेतन भी ला रही है। लेकिन एक होम मेकर तो घर में रह रही है तो कुछ काम का तो खास काम है नहीं, और पैसा भी नहीं मिल रहा अगर देखा जाए तो, वेतन भी नहीं मिल रहा, सुबह से रात तक बिना रुके काम करने के बावजूद उनके काम को अदृश्य काम यानी कि अनपेड लेबर माना जाता है। दिन भर में बस तमाम सारी टिप्पणियां, बदले में खाली यही आता है और फिर नतीजा ये अकेलापन और एक रास्ता जो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, अकेलेपन और मेंटल जो फटीक है उसका कारण बनती है। और तो और रोज सुबह से रात तक एक जैसी दिनचर्या और जो चार दीवारी के भीतर रहने से ना सामाजिक रूप से जो कट जाती है ना, सोशल जो उनका एक स्टिग्मा होता है उसको भी झेलना पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं अवसाद का बहुत बड़ा रीजन बनता है। होंगी आपके आसपास ऐसी बहुत सारी महिलाएं, अगर आप ढूंढें तो अक्सर कहीं मन चिड़चिड़ा सा है, मन दुखी सा है, आपसे भी शेयर करती होंगी कि मुझे तो समाज की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, हमें ये नहीं आता या फिर हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे का रीजन उनसे सिर्फ इतना कह दिया गया है कि आप घर संभालिए, घर की जिम्मेदारियां देखिए, बाकी चीजों से आपका कुछ लेना देना नहीं। और जब ये तमाम सारी चीजें आती हैं जहां वो खुद पर निर्भर नहीं है, वित्तीय निर्भरता नहीं है, जहां पर वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, जहां अपने लिए कुछ सोच नहीं सकती, एक हेल्पलेसनेस आती है और फिर यहां से शुरू होता है आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान का संकट। परिवार की देखभाल में अपनी खुद की पसंद, शौक और खुद की पहचान को पूरी तरह भुला देती हैं हम महिलाएं, और ये हम कतई नहीं चाहते, इसलिए बस अपने पर ध्यान देना है, अपने बारे में भी सोचना है और इसमें पूरा पूरा साथ आपको भी देना है जिनका घर वो संभाल रही हैं। योग कैसे इसमें कारगर हो सकता है अभी थोड़ी देर में जब हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ उस पर भी बात करेंगे, साथ ही वो तमाम सारे और निवारण क्या हो सकते हैं, क्या आप खाएं, क्या आप करें, किन किन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ये भी बातें आप तक पहुंचेंगी। बहरहाल 12:33 का वक्त, शत्रुपा इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 107 FM रेनबो पर आपकी दोस्त आपकी रिचा के साथ, स्पेशली ये आपके लिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप जो हैं तनाव में रहें, खुद को तनाव मुक्त रखिए, क्योंकि आप हैं तो दुनिया है, आप हैं तो घर है, आपसे हम हैं, इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं आप भी और आपसे जुड़े परिवार के तमाम सारे लोग भी। मानती हैं आप इस बात को? अगर मानती हैं तो बस यही सुनते रहिए, जुड़े रहिए 107 FM रेनबो के साथ।

तो बस ये हाँ के ना वाली जो बात है ना, इसी को आपको अपने अंदर बैठा लेना है, इसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है कि कई बार कुछ चीजों के लिए हाँ तो कभी कभी कुछ चीजों के लिए ना भी कहना जरूरी है। अभी वो कैसे जरूरी है जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तनाव को कम कर, देखिए तनाव जो है ना वो हम सभी की जिंदगी का एक बहुत जरूरी जरूरी जरूरी हिस्सा बन ही गया। आप चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकते, लेकिन जब बात हमारी आपकी आती है, हमारी आपके मतलब महिलाओं की आती है, तो ये तनाव कुछ ज्यादा ही घर कर जाता है। और फिर चाहे वो वर्किंग हो, फिर चाहे वो हाउसवाइफ्स हो, हमें इससे दो चार होना ही पड़ता है। लेकिन हमारी काबिलियत भी इसमें, कोई माने या ना माने, हम हैं तो महारथी, हम उससे भी खुद को निकाल ले कर बाहर ले आते हैं, तभी तो मल्टीटास्कर भी कहे जाते हैं। लेकिन पता है रिसर्च ये भी कहती है कि स्टाइल आपके दिल और दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि एक वक्त में कई सारे काम आपके दिमाग में चल रहे हैं, सब कुछ करना है और सब कुछ परफेक्टली करना है। ये जो एक बोझ है ना, ये आपके दिमाग की नसों में एक्स्ट्रा लोड डालता है। तो मल्टीटास्कर होना अच्छा है, बट कई बार खराब भी हो जाता है। लेकिन अगर बात जब है क्या करें क्या ना करें, तो कई बार हमें ना कहना भी सीखना चाहिए, जो अक्सर हम नहीं कहते, हम नहीं सीखते। बात जब महिलाओं की आती है तो जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता है ना, उसमें हम कई बार बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, चाहते और ना चाहते हुए भी। तो अब कोशिश ये करनी है कि अगर थके हैं तो स्पष्ट रूप से आराम के लिए थोड़ा सा समय हमें मांग लेना चाहिए उनसे, जो आपके अपने ही हैं। फिर चाहे वो ऑफिस की बात भी, अगर ऑफिस में थोड़ा थकी भी हैं आप, तो कुछ एक थोड़ा सा वक्त लीजिए जहां आप रिलैक्स हो सकती हैं। 5 मिनट के लिए बैठिए, सोचिए कि क्या करना है, उसकी प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद अगला काम करिए। हालांकि ऑफिस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो पाता है कि आप ये समय निकाल सके, लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके पास ये मौका हो सकता है कि आप अपने शरीर को थोड़ा सा रुकने के लिए, थमने के लिए कहीं एक वक्त निकाल लें। ना कहना सीखें कई बार, जो हम नहीं कहते, बाउंड्रीज सेट करना सीखें जो हम नहीं कहते। मी टाइम जो कि बहुत जरूरी है वो हम निकालते नहीं। दिन भर में कम से कम 30 से 45 मिनट हमें सिर्फ और सिर्फ अपने निकालने चाहिए। और जो आपके पसंदीदा शौक हैं, फिर वो चाहे संगीत हो, बागवानी हो, अगर कुकिंग भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, या फिर खुद को सजाने संवारने का शौक भी है, तो वो भी आप इस जो मी टाइम है उसमें आप कर सकती हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी जो चीज है वो है फाइनेंशियल, एक जो लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता जिसे कहते हैं, वो भी बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी बार शॉपिंग कब की थी याद है आपको? याद भी होगा, या फिर कई सारे ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी याद होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके अपने पैसे नहीं होंगे, आपने जो बचत की भी होगी वो भी कहीं घर के ही खर्चों में निकल गई होगी, और फिर आप खड़ी होंगी कि हाय मुझे ये चीज लेनी थी, अब मैं कैसे लूं? बहुत दिनों से मैंने कोई कॉस्मेटिक नहीं खरीदा अपने लिए, मैं उसे कैसे लूं? बहुत दिनों से कोई अच्छी ड्रेस नहीं खरीदी, उसे कैसे लूं? और फिर ये जो लिटरेसी है ना, वित्तीय लिटरेसी जिसे आप कहते हैं, यहां से आप खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करती हैं, और ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस

की कमी को लाता है। तो करना क्या है, करना ये है कि जिम्मेदारियों का समान बंटवारा कीजिए, और अगर जो घर के लोग हैं वो सराहना और संवाद की जो प्रक्रिया है उसको जरूर से रखें, बैठें, सुने, जाने, समझें कि आपकी घर की महिलाओं के दिल दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहती क्या है। और सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है वो ये कि जो परफेक्शनिस्ट बनने का जो मोह है ना, उसको आपको छोड़ना होगा। सारे काम खुद पे लेने हैं, सब कुछ बढ़िया से करना है, क्योंकि आप तो मल्टीटास्कर हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है। तो माई ऑल दियर लवली लेडीज, जरा रुक जाइए, जरा थम जाइए, मोह रखिए, लेकिन हमेशा मोह रखना भी कई बार दिल को थोड़ा सा सुकून कम देता है, तो रुकना होगा। योग कैसे आपके लिए सहायक है, अब जब लौटेंगे ना तब इस बारे में बात करेंगे। 12:40 का वक्त, शत्रुपा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

अगर आपके मन में भी शंका है कि जो गिरे हैं ये कैसे सुलझें, जो मोह मोह के जो धागे हैं ना, इन्हें आप थोड़ा सा कम कैसे कर सके, इनकी उलझनों को आप कैसे सुलझा सके, तो बस आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हैं 100.7 FM रेनबो, जहां पर इस वक्त आप सुन रहे हैं शत्रुपा आपकी दोस्त ऋचा के साथ। अच्छा, बात हमने आपसे करी हाउसवाइफ वर्सेस वर्किंग जो वीमेन है उनमें बढ़ते तनाव और कारणों की, लेकिन अब इनको इनका निवारण कैसे करना है वो भी थोड़ी सी बात बताई, लेकिन इन तमाम सारे निवारणों के बीच में योग आपके लिए कैसे कारगर हो सकता है, वो गिरह खोलने की जो बात कर रही है ना उसका रास्ता सीधा आपको योग से मिल सकता है। अभी देखिए, कल ही हम सबने योग दिवस सेलिब्रेट किया है, आपने भी योग किया होगा, नहीं किया तो क्यों नहीं किया ये भी मेरा सवाल है, क्योंकि लाइफ के लिए बेहद जरूरी है ये। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ढाल लेते हैं ना, तो यकीन मानिए लाइफ के बड़े सारे जो तनाव है वो तो चुटकियों में, ऐसे बोलते हैं ना चुटकियों में, यूं हल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको आपकी लाइफ में योग का जो सम्मिश्रण है, योग का संयोजन है, उसको बना के रखना भी बेहद जरूरी है। कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल शोधों के अनुसार अगर हम देखें तो नियमित योग और प्राणायाम करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का जो स्तर है वो बहुत तेजी से घटता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सोचिए थोड़ा सा योग और कितने सारे आपको लाभ उससे मिल सकते हैं। न केवल आपका मेंटल स्ट्रेस दूर होगा, जिसे आप बर्नआउट कहते हैं, जो काम की थकावट है, आप उसको भी रोक पाएंगे, बल्कि प्रभावी जरिया भी पाया जाता है। तब जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और खुश रहना चाहती हूँ तो योग आपको खुश रख सकता है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण जो है पुरुषों जैसे उनके सीने में दर्द वगैरह शुरू होता है उससे बिल्कुल अलग होते हैं। दिल का दौरा अगर पड़ने पर जो होता है ना, वो एकदम से दर्द होना नहीं, बल्कि ज्यादातर जब थकान होती है या फिर कई बार सांस जब फूलती है, कई बार उन्हें वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, जबड़ों में दर्द की शिकायत होती है, ये तमाम सारे लक्षण दिखते हैं और अक्सर बीमारी को पकड़ने में देर भी होती है। और ये तमाम सारी जो बीमारियां हैं ना, ये न्यूरॉन्स को शांत करती हैं तब जब आप योग का सहारा लेते हैं, तो योग इतना फायदेमंद आपको हो सकता है। अनिद्रा के अगर आप शिकार हैं तो भी आपके लिए योग फायदेमंद हो सकता है। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको आप करें, थोड़ा सा यहाँ आपको जरूर बताऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप उनको सुने समझें और फिर आपकी जो डेली प्रक्रिया है उसमें उसको इसको कहीं इंक्लूड करें। और वो जो मी टाइम की मैंने आपसे बात की थी ना, डेली 20 से 30 मिनट का मी टाइम, और जब आप उस मी टाइम में इसे इंक्लूड करेंगी तो यकीन मानिए आप न केवल खुद को चुस्त दुरुस्त रखेंगी बल्कि आपका घर परिवार सब खुश रहेगा। और फिर वो जो एक मन में एक चीज आती है ना कि एक दिन जाकर लाइफ हेल्दी होगी, अच्छी होगी, आप उसे जरूर अवेल करेंगी। तो क्या हो सकते हैं वो आसन, अगर जानना है ना तो बिल्कुल कान और ध्यान लगाकर बैठिए मेरे साथ, क्योंकि इस नेक्स्ट ट्रैक के बाद हम जुड़ेंगे आपसे और कुछ छोटे से आसन आपको बताऊंगी जिनको आप सुनिएगा, समझिएगा और फिर आपकी डेली लाइफ में उसको कम से कम 20 से 30 मिनट जरूर से आप इंक्लूड करेंगे। क्या समझिए आप?

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं, ये काजल जिन आंखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाना भूल। हाँ, तुम हो शत्रु।

12:52 का वक्त हो चुका। उम्मीद करती हूँ कि अब आप बिल्कुल आपके रेडियो सेट्स के और करीब होंगी, क्योंकि अभी जो आप जानने जा रही हैं वो है योग का करिश्मा, वो योग जो आपको आपके मेंटल स्ट्रेस से चुटकियों में निकाल सकता है। बस जरूरत है कमर कस के उस योग की तरफ आपको बढ़ने की, जो अक्सर आप नहीं बढ़ती हैं। बोले तैरे कौन करे योग, इससे होगा क्या? मेरी बात मानिए, करके देखिए और उसके बाद आप खुद इस सर्च का जो फायदा है ना उसको महसूस कर पाएंगी, खासकर तब जब आप मेंटल डिप्रेशन का शिकार हैं, जब आप एंजाइटी का शिकार हैं। और इसके लिए कहते हैं चाइल्ड्स पोज जो है ना, शशकासन, ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा वाला एक आसन हो सकता है। करना कुछ नहीं है, आसन जो है ना ये आपकी रीढ़ की हड्डी के तनाव को दूर करता है और केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको शांत कर आपको एंजाइटी का है उसको तुरंत कम करता है। तो आप ये एक जो आसन है इसको आपकी वो जो 20 से 30 मिनट वाली रूटीन है ना मी टाइम वाला, उसमें शामिल कर सकती हैं। साथ ही साथ ताड़ासन जिसको आप, और साथ साथ वृक्षासन, ये दो आसन हैं जिनमें सीधे खड़े होकर किए जाने वाले आसन माने जाते हैं ये, और एकाग्रता को बढ़ाते हैं, आपको फोकस्ड करते हैं, उसको दूर करते हैं, आलस को दूर करते हैं। तो ये दोनों आसन भी आप आपकी डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं, ताड़ासन वृक्षासन के साथ साथ शशकासन। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और आसन हो सकता है, छोटा सा है लेकिन अगर आप करेंगी तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा फायदा खुद में महसूस करेंगी, और वो है भ्रामरी प्राणायाम। सुनते होंगे कई बार, आप सुना आपने कई बार होगा लेकिन करते नहीं है। करना सिर्फ ये है कि आंखें और कानों को बंद करना है और वो जो ओम की आवाज है ना जो भौरे की तरह गूंजती हुई आती है उसको आपको प्रोड्यूस करना है। और जब आप ये करेंगी तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शांत कर सकती हैं आप, वो जो आपको सोने की समस्या अनिद्रा की जो बीमारी है उसको आप नियंत्रित कर सकती हैं, साथ ही गुस्से पर भी आप कंट्रोल कर सकती हैं अगर बहुत ज्यादा।

ये जाहिर सी बात है, जब आप अब साथ में होती हैं, कई बार डिप्रेसिव मोड में होती हैं, तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा अपने आप कहीं आता ही आता है। तो ये तमाम सारे आसन जो हैं, अगर आपको आपने इनको शामिल किया आपकी डेली लाइफ में, रूटीन में, तो काफी फायदा मिल सकता है। अच्छा, हम कहते हैं चलिए ये सब कुछ भी मत करिए, अनुलोम विलोम तो आपने सुना है ना, किसने नहीं सुना होगा। और अगर आप वो भी नहीं कर सकती हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर क्या ही होगा, कैसे होगा, अभी मुझे तनाव दे देगा अगर आपने ये नहीं किया। तो बेहतर ये है कि भले आप ये तमाम सारे आसन ना कर सके, अनुलोम विलोम कहते हैं शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, जिसमें कोर्टिसोल का स्तर नियंत्रित रहता है। तो कम से कम आप अनुलोम विलोम तो कर ही सकती हैं आपकी डेली लाइफ में, वो 20 से 30 मिनट के अंदर अगर आप निकालेंगी तो ये काम भी हो जाएगा। और कहते हैं योग का योग भी होगा, आप खुद को स्वस्थ भी रखेंगी, दुरुस्त भी रखेंगी, और जो मानसिक तनाव है उनसे भी खुद को आप बचा पाएंगे। तो योग को आपके जीवन का एक आधार बनाइए, क्योंकि कहते हैं जब आप योग करते हैं तभी जब आप योग करेंगे तभी तो दुनिया समाज में जो चीजें हैं उनको आप एक अच्छे मन अच्छे तन के साथ उसका उपयोग कर पाएंगे ना। साथ ही वो जो एक्स्ट्रा चाय कॉफी आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उससे आपको बचना है। जंक फूड को बिल्कुल एक तिलांजलि देनी है, उसको मना करना कि भैया रुक जाओ, अभी तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कुछ देर बाद आना, अभी हमें अभी मूड नहीं है खाने का, तो कुछ ऐसा भी कहना पड़ेगा। क्योंकि जो जंक फूड है ना, ये चीजें खून में कहते हैं कोर्टिसोल का जो स्तर है उसको अचानक से बढ़ा देती हैं, जिससे आपको पैनिक अटैक और घबराहट बढ़ती है, और फिर वही समस्याएं कि हाँ डिप्रेशन है, थकान है और मेंटल स्ट्रेस है, तमाम सारी बीमारियां आपको होती हैं। शोध और क्लिनिकल डेटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य केवल दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। और ये जो बात है मैं स्पेशली घर के पुरुषों के लिए कह रही हूँ, जो आपके साथ हैं, फिर वो चाहे आपके पति हो, आपके घर में आपके पिता हो, भाई हो, ये तमाम सारे लोग जो भी हैं उनके लिए स्पेशली कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपके साथ की भी जरूरत पड़ती है, आपका सहयोग भी। बैठ कर दो मिनट अगर आप उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, आप उनकी बातों को साझा अगर करते हैं, तो यकीन मानिए स्ट्रेस का एस भी उनके पास नहीं आ सकता, क्योंकि साथ का साथ जो उनके साथ होता है, और ये आप ही उनको दे सकते हैं, ये आप ही उनको कर सकते हैं। फिलहाल 12:56 का वक्त हो चुका है, आज के शत्रुपा को हम यहीं वाइंड अप करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो हमारी महिलाएं हैं अब आप अपना ध्यान पूरी तरीके से रखेंगी, रिश्तों में मधुरता घुलेगी तब जब आप और वो सब एक साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर आपके बारे में सोचें, आप उनके बारे में सोचें, और इसके बाद ये जो जिंदगी है ना ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है। फिलहाल 12:57 का वक्त, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी हेल्थ के लिए अब सजग रहने की कोशिश करेंगे। दीजिए मुझे फिलहाल शत्रुपा से इजाजत, लेकिन अगले घंटे भी हम रहेंगे आपके साथ, लेकर आपके लिए आपका शो होठों पर तेरी बात। सुनते रहिए, न्यूज़ जुड़े रहिए।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 81 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को गृह चाबी तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक उपकरण आदि भी वितरित किए। मुख्यमंत्री यहां के बाद अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ और आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि टेली लॉ और न्यायबंधु जैसी सेवाओं ने न्याय तक पहुंच को आसान बनाया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट और अदालती कार्रवाई के सीधे प्रसारण ने न्यायपालिका आम लोगों के और करीब आई है। उन्होंने बताया कि एआई आधारित उपकरणों की मदद से न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रस्तावित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर पदों तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है।

परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब यारी।
5: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
7: सात रंग का इंद्रधनुष है,
8: सात सुरों की सरगम है,
9: सात जन्म है सात समंदर,
7: साथ हमारा हरदम है,
9: जिंदगी के सतरंगी रंग,
8: FM रेनबो के संग।
10: तो चलिए, दोपहर के 1:04 का वक्त, और ये वक्त है जहां पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे आपकी अपने FM रेनबो के जरिए, FM akashwani@gmail.com के जरिए, क्योंकि होठों पे तेरी बात जो है ना, वो मुझे जाननी है इस वक्त, आपके होठों पे कौन सी बात आएगी, वो बात जो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या है वो बात, पहले गाना सुनिए फिर आपसे बात करती हूँ उस बारे में, ठीक है। तब तक FM akashwani@gmail.com पर आपका है मुझे बेसब्री से इंतजार।

महेंद्र दीपन जी का भी ईमेल आया, लिख रहे हैं पहले तो बड़ा हैरान हूँ आज आपको दोपहर में सुन रहा हूँ, ठीक है कहा अच्छी बात है ना, कभी कभी कुछ चेंजेस होने चाहिए। अक्सर आप कहते थे ना कि कभी दोपहर में आ जाइए, कभी आपको दिन में भी सुन ले तो लीजिए, आज आपकी वो मंशा पूरी हुई, बट चिंता मत करिए हम बहुत जल्दी आपसे रात में ही मिलेंगे। इसके लिए ये ना सोचिएगा कि बस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने लिखा है कि होठों पर तेरी बात कार्यक्रम रोज सुनता हूँ और विषय सुन रहा हूँ और अचंभित हूँ क्योंकि आपको दोपहर में सुन रहा हूँ। बाकी रही बात बचपन में गर्मियों की छुट्टियों की, तो जो इंतजार होता था उसे आज भी याद कर मुस्कुराहट आ जाती है। सच है ये बात, जब भी कभी आप उस दौर को याद करते हैं तो एक हल्की सी मुस्कान कहीं आपको यादों का जो गलियारा है ना वहां लेकर के जाती है, जहां से आप बहुत सारी खुशियों के इतने खूबसूरत पल समेट लाते हैं कि आप खुद नहीं समझ पाते कि कौन सा पल अपनी तिजोरी में रखूं और किसको अभी थोड़ा सा बैठकर देखूं, किसे याद करूं, किसे दिल से याद करूं, या फिर ये तमाम सारी चीजें है ना। आपने लिखा है नानी के घर जाना, वहां दोस्तों के साथ खेल कूद करना और उस बेफिक्र बचपन का आनंद लेना, वो दिन सच में अनमोल थे। तब तो मोबाइल और सोशल मीडिया की भागदौड़ में आज के दौर की डेट में आप बात कर रहे हैं कि यादों ने जगह ले ली है, पर नानी के घर वाली वो सादगी और सुकून नो डाउट आज भी दिल के बेहद करीब है। बस यही तो एक चार महीना जिंदगी का जो आपको जोड़ता उन चीजों से, और आज के बच्चों की अगर बात करें तो हाँ डेफिनेटली वो कहीं मिस कर रहे हैं। अब आप इसे जरूरत कह लीजिए या कई बार बेवजह की भी चीजें, क्योंकि कई बार जब आप बोलते भी है ना कि बैठ जाओ तभी भी नहीं, वो मोबाइल का इतना चस्का चढ़ चुका होता है ना कि क्या ही करे कोई। सतीश अनेजा जी, वापस आपका ईमेल आया है और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप होठों पे तेरी बात सुन रहे हैं और मैं जानना ये चाह रही हूं बचपन का दौर, नानी का घर, वहां की शरारतें, डांट पड़ना, फिर मामा मामी नानी का आपको बचा लेना, वो सारे दौर आप यहाँ मुझे शेयर कर सकते हैं। उनसे जुड़ी कोई भी अच्छी वाली बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। जय जी का ईमेल आया है और लिख रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली चौक से, और आप लिख रहे हैं कि अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपको, चलिए शुक्रिया, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और क्या चाहिए। रामराज जी भी हैं और आप लिख रहे हैं जब बात नानी के घर की है तो बचपन में नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ आम खाने को मिलते और चुरा कर अपने साथियों को खिलाते थे, कुछ लोग अब नहीं रहे उनकी बहुत याद आती है। हाँ, लाइफ का एक ये भी एस्पेक्ट है, कई बार चीजें छूटती हैं, कुछ नया जुड़ता है, लेकिन फिर भी जो पीछे छूटता है कई बार वो इतना सुखद भी होता है जिसे याद जब आप करते हैं तो हमेशा यादों के गलियारों में एक अच्छी सी महक रह जाती है। 1:31 का वक्त है और इस वक्त आप क्या सुन रहे हैं, आपका अपना 107 FM रेनबो, आपकी दोस्त आपकी रुचा के साथ, और इस वक्त जो टॉपिक है ना वो ये होठों पे तेरी बात पे, बचपन का दौर, नानी का घर, वहां होने वाली शरारतें, मामा मामी का आपको बचाना, नानी का बचाना, मम्मी से पड़ने वाली डांट, जो कुछ भी है आज आप बस यहाँ दिल खोल के करिए हमारे साथ शेयर। फिलहाल गाना आप तक है, 90s के दौर की बात ही अलग है। चलिए 90s का एक और ट्रैक आपको दिया, इसको एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए। हालांकि 90s के दौर का नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको सुनिए।

वो जो बचपन से चुराए हुए जो कुछ पल है ना, उन्हें वापस यहाँ जीने के लिए बस एक छोटी सी कोशिश हम आपके साथ कर रहे हैं। तब जब आप नानी के घरों पर जाया करते थे, वहाँ वो जो मौज मस्ती थी ना, मतलब शैतानियां करना, फिर मम्मी की डांट पड़ना या फिर मामा मामी का बचा लेना, नानी का बीच में आना, कहना अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे को मारो नहीं, मतलब वो आपकी पैरवी कर लेना, तमाम सारी यादें जो उस दौर से जुड़ती हैं, बस वही हम आपसे यहाँ जानना चाहते हैं। 1:41 का वक्त हो चुका है, ईमेल्स लगातार है मेरे पास। तो सुल्तान रजा साहब का भी ईमेल आया और लिख रहे हैं, हमेशा कहते हैं रॉकिंग रिचा दीदी, अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से आपका ईमेल है और आपके साथ सुल्तान रजा के साथ जीशान अफजल और मोनिश रजा सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए है सुल्तान जी। और आपने लिखा है कि जब बचपन की बात आती है तो आपको बचपन से अच्छा भैंस चराने आप नदी पर ले जाया करते थे, पूरा दिन वहां पर उसको नहलाते भी थे और साथ साथ खुद भी वहां पर नहाने लग जाते थे, फिर घर वाले चिल्लाते भी थे कि नदी में पानी ज्यादा होता है मत नहाया करो बात। तो देखो ये सही है गलत तो नहीं कह रहे थे ना, मान लीजिए कहीं थोड़ा सा पैर फिसला और फिर कोई अनहोनी घट जाती तो, इसलिए कभी कभी डांट जो पड़ती है ना गलत भी नहीं होती। और आगे आपने लिखा कि मम्मी पूछती थी कि स्कूल में जो कि स्कूल की मैडम मारती भी थी, कुछ आपने ऐसा लिखा है, लेकिन आप लिख रहे हैं बचपन की जो बातें हैं वो वापस नहीं लाई जा सकती, बचपन का जो मजा है वो आज भी दिल में है, हमेशा वैसे ही ताजा रहता है, सब कुछ पीछे छूट गया है, ढूंढ के बचपन से कुछ यादें बस चुरा कर जीने का दिल करता है। तभी तो कहती हूँ दिल के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, भले ही वो वक्त नहीं आता लेकिन जो दिल है ना वो हमेशा जब बच्चे की तरह रहता है तो सारी यादें आपके साथ रहती हैं। फिर सतीश अनेजा जी का ईमेल वापस आ गया, लिख रहे हैं मेरी तरफ से मैसेज पूरा जा रहा है, रोज इस प्रोग्राम में हिस्सा लेता हूँ, आज मेरी ईमेल क्यों नहीं खुल रही, अब खुल गई। आपने लिखा दूसरी आईडी से, जी हाँ अभी तक जो आपने ईमेल भेजे थे वो नहीं हम तक पहुंच पा रहे थे, बट आपने ये जो भेजा है ये हम तक आ गया, चंडीगढ़ सिटी से आपका ईमेल है सतीश जी। और आप लिख रहे हैं बचपन की बेशुमार यादें हैं जो अभी तक याद हैं और भुलाई से नहीं भूलती, एग्जैक्टली कोई नहीं भूल पाता। आप लिख रहे हैं कि नानी से शरारतें करने में बहुत मजा आता था, हाँ हमें भी आता था, और डंडा लेकर पीछे पड़ जाती थी, एक बार नानी की खीर में नमक डालकर भाग गए थे, अरे कितना गलत काम कर दिया आपने, एक तो नमक मतलब खीर में, वो भी नानी की खीर में, क्या ही कमाल हुआ होगा। जब नानी ने खीर खाई तो वो मेरी माँ से लड़ने लग गई, उनको डांट पड़ी होगी इतने गलत बनाई होगी खीर। देखो ये भी दिमाग चला लिया करते थे बच्चे बचपन में। अभी तो आगे आप लिख रहे हैं कि फिर मैंने आत्मसमर्पण किया तो माँ को बचाया, अच्छा किया, लेकिन नानी ने प्यार बहुत किया और वो जिस भी दुनिया में है उनकी आत्मा को शांति के लिए हर पल दुआएं रहती हैं। मानिए

आपके अपने कभी भी जब भी आपसे दूर होते हैं तो ये एक दुखद तो एहसास है, लेकिन ये भी पता होता है कि उनका साथ कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छा। नमक डाल दिया खीर में, अरे भाई मानना पड़ेगा बड़ी हिम्मत थी, बट बचपन के दौर में चीजें हो जाती है ना, और ऐसा ही कुछ इन्होंने भी किया। अगला ईमेल किसका मेरे पास आया, चलिए वो देख लेते हैं। और ये ईमेल पहुंचाने वाली कौन है मेरे पास, बबीता राव का ईमेल आ चुका है। बबीता लिख रही है, कैसी है आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ बबीता, गुसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से आपका ईमेल है। और लिख रही है, आवाज बड़ी प्यारी लगती है, सच बताया करिए। जो आप लोग लिख देते हैं ना, चाहे शाम में लिखे चाहे किसी भी वक्त लिखे, हम खुश हो जाते हैं। अब बाकी आप जानिए शरारते हुए हैं कि सच्चाई में, ये आप जानते होंगे। आपने लिखा OMG अनबिलीवेबल, आज मेरी प्यारी रिचा मैम जी नून में आई। हाँ तो देखो, हमने सोचा कभी कभी आप सबके दिल की मुरादें पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुराद में नहीं मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, वहां भी मिलेंगे वापस आपसे। और आपने लिखा है क्या क्या क्या क्या लिख रहे हैं, अच्छा टॉपिक नहीं सुन पाई हैं आप, तो बचपन की यादें हम रिकॉल कर रहे हैं, तब जब नानी के घरों में जाते थे, शरारतें, वहां खेल खिलवाड़, मामा मामी से जब डांट पड़ती थी मम्मी पापा से शरारतों के लिए, तो कैसे बचा लिया करता था कोई, ये तमाम सारी बातें जान रहे हैं, बता दीजिए अगर आपके पास कुछ हो तो। जितेंद्र नामदेव भी है हमारे पास, और आपने पोस्ट खनौधी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आपका ईमेल हमेशा की तरह भेजा है, और आपके साथ बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, कनक नामदेव, आरोही नामदेव और सौम्या नामदेव भी हैं। और आप लिख रहे हैं कि रिचार्ज है वो रिचार्ज आपको दोपहर में सुनकर, अच्छा अच्छा अच्छा ओके तो ये भी हमेशा आपको याद रहेगा है ना, नानी के घर जाना यानी मौज मस्ती के दिन शुरू हो जाते, तो यादें यादें ही रह गई, गाने बहुत अच्छे बजाए जा रहे हैं। धन्यवाद, आपने ईमेल किया इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद, बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें और क्या चाहिए। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी भी हैं मेरे साथ, और सादर प्रणाम के साथ आपने लिखा, पिंकी सोनी बचपन के दौर कुछ अलग ही होते थे, पहले माता पिता होते थे बच्चों की देख रेख करने के लिए, आज तो जिम्मेदारी का बोझ धोते धोते जीवन गुजर रहा है, खासकर पुरुषों का। सो गुड, अच्छा आपका टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। रेडियो दोस्त हैं कुलदीप जी और उधौली आकाश जी मुरारपुर से हैं, रिंकी पिंकी हैं और ग्लफ्सा हैं, सारे लिसनर्स हैं, लेकिन इस बात से हम पूरा इत्तेफाक नहीं रखते कि खाली पुरुषों का ये जो दौर है गुजर रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, इसके पहले हमने आपके साथ एक शो किया जहां पर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, यकीन मानिए सिर्फ आप नहीं बल्कि दोनों ही लोग जब एक साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं सब बहुत निभाइए, आप पर बोझ ज्यादा है। 1:46 का वक्त हो चुका है, आप इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ यानी कि आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, और ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। आप बचपन के दौर को कैसे याद करते रहे हैं आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं आपके ही 100.7 FM रेनबो पर। और गाना एक वापस आप तक भेज रहे हैं, इस गाने को सुनिए, फिर से एक कुछ चीजें रिकॉल करने का एक मौका आता है ना। चले सुनते रहिए, जुड़े रहिए, गाना कौन सा था, बस ये रहा आप तक गाना, सीधा पहुंचेगा।

तो बचपन है, नखरों का दौर तो होता है, और नाज नखरे उठाने के लिए नानी, मामी, मामा, ये सारे लोग होते हैं, तभी तो देखिए बचपन हमेशा यादगार रह जाता है। जावेद अख्तर साहब का ईमेल आ चुका है, लिख रहे हैं, होटो पे तेरी बात ने आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और जब बचपना था तो हम अपने नानी के घर छुट्टियों में जाया करते थे, और कहते हैं बहुत हसीन वक्त था वो। हाँ बिल्कुल हसीन वक्त है वो, होता ही क्या था, हमेशा यादों में जिंदा रहता है वो वक्त। और आगे आपने लिखा है कि एक मिनट मुझे वापस देखना पड़ेगा, आप लिख रहे हैं कि जैसे आम के बागों में घूमना, गिल्ली डंडा खेलना और कबड्डी खेलना, इन सब खेलों में इतना मस्त हो जाते थे कि खाने को का याद ही नहीं रहती थी, और जब नानी हमको खोजने निकलती थी तो हमारी खूब पिटाई होती थी, और बचपन आज भी हमें याद है। यकीन मानिए जावेद साहब, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे उसका बचपन ना याद हो, मतलब अगर कुछ अच्छे दौर से गुजरा है तो मतलब याद ही रह जाती हैं, फिर यादें वो कैसे भी हों। और आपने हमें रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपका ईमेल भेजा है, शमशुल कमर राही, शमा परवीन अंसारी, बेगम रुखसार आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। विनीत कुमार जी का भी ईमेल है, और आप लिखते हैं कि पहले तो दोपहर में सुनकर अचंभित हैं, चलिए शुक्रिया। और आपने लिखा आपकी हंसी सुपर हिट है, अच्छा, बचपन में कंचा खेलते थे दोस्तों के साथ, हाँ वो भी हमने भी खेला है, पता है आपको वो बंटोला याद है आपको, ये सब बहुत खेल हुआ करते थे, तो बहुत मजा आता था, आनंद आता था। बचपन की बातें जितनी याद की जाएं उतनी कम है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। वकील अहमद जी का भी ईमेल है, और आप लिख रहे हैं कि आवाज अच्छी लग रही है, शुक्रिया, गाने अच्छे बज रहे हैं। मामा के यहाँ जाते थे तो छोटे थे, शरारत हम बहुत करते थे, और कोई मुझे कुछ नहीं कहता था, अच्छी बात है, तो आप बड़े किस्मत वाले थे, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, मतलब गिलास भी तोड़ दिया और डांट भी नहीं खाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से आपका ईमेल, जमाल अहमद भी आपके साथ हैं, रामेश्वर जी हैं हमारे साथ, और आपने लिखा है कि ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर है ना, कानपुर देहात से आप हैं, और रामेश्वर कोठारी आपका नाम है कठेरिया, और आप लिख रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बचपन के दिन हमेशा याद आते हैं, याद भी रहने चाहिए, आप उन्हें कभी नहीं भूल सकते, कैसे भूल सकते हैं आप। महेंद्र प्रसाद जी का ईमेल है, और आपने गाने की रिक्वेस्ट भेज दी, तो रुक जाइए अभी देखते हैं कौन सा गाना है, अभी तो वक्त है वहां तक पहुंचने में। गुलफसा जी का भी ईमेल आ चुका है, और आप लिख रही हैं कि आप इस वक्त आई, अच्छा लगा, आप हमें सुन रही हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ये भी हम कहना चाहेंगे आपसे। और टॉपिक पर आप लिख रही हैं कि बचपन में बहुत शरारतें करती थी, और जैसे मुझे दुकान पर, अच्छा, जैसे मुझे दुकान पर भेजते थे तो कहती थी कि और शाम को, और घर वापस आती थी, नहीं नहीं क्या लिखा आपने, अच्छा दुकान पर भेजती थी तो खेलती थी, और शाम को घर वापस आती थी, फिर उसके बाद बहुत मार पड़नी भी चाहिए थी, ये हरकत जो आपने की थी, तो आज को दोपहर में भेजा गया सामान लेने के लिए और आप शाम को पहुंचेंगी, तो जाहिर सी बात है पड़नी थी, तो मेरी तरफ से हम कहते एक और लगा दो, हम थे नहीं उस वक्त ना, क्या करते ऐसी गलतियों के लिए कोई माफी नहीं है ना। अरुण कुमार जी का भी नमस्कार के साथ, आपको टॉपिक अच्छा लगा, बचपन में जब मामा जी के घर जाते थे तो वहां रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी, आगे आपने क्या लिखा पूरा पहुंचाने

पार करने के लिए नाव में सवार होकर जाना और रेत में चलना मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक है। वाकई ये बड़ी खूबसूरत सी याद है जो आपने भेजी है। तालिब अंसारी जी भी आ गए हैं। बचपन में अक्सर आम के बाग में ग्रुप के साथ जाते थे और आम को तोड़ते थे और जब जिसकी जिनके बाग होते थे वो दौड़ाते थे, फिर उसके बाद दौड़ाए गए, चोरी करेंगे तो फिर पीटे जाएंगे, पकड़े ही जाएंगे तो मार खाएंगे। खैर बचपन की बहुत सारी बातें हैं लेकिन अब वो दौर कहाँ आएगा, अब तो सब कुछ है पर वो बात नहीं। इत्तेफाक रखती हूँ मैं आपसे इस बात से कि वो दौर वापस नहीं आएगा। पहले 5 रुपए मिल जाते थे, बहुत कुछ होते थे, अब तो सब कुछ है पर वो फील भी नहीं और वो चीज भी नहीं। नो डाउट, थोड़ा इमोशनल भी कर दिया आपने, पता है ऐसी बातें मत करा करिए, मतलब अच्छी अच्छी चीजों के बीच में ऐसी इमोशनल बातें आप कर देते हैं। देखो आंसू आ रहे हैं आंख से, बट दिख नहीं रहे बट आप मन की आंखों से देख लीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट ईमेल की बात करें तो रजाक मोहम्मद साहब का ईमेल है और आपने लिखा है प्यार भरा नमस्कार। कहां से आपने लिखा है ये आपने नहीं भेजा हमको, बट अभी जब दोबारा मिलेंगे तो भेज दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के ईमेल शामिल हुए। 1:54 का वक्त हो चुका है। होटो पे तेरी बात तभी हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, अगला घंटा भी आपका, ये जानते हैं ना, तब जब हम जुड़ेंगे आपसे आपके अपने शो जहाँ पर आप गानों की रिक्वेस्ट हम तक भेजते हैं, तो वहाँ कहाँ भेजेंगे, अगेन FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। तो चलिए गाना आपको दे रहे हैं, इस गाने के साथ आज के होटो पे तेरी बात को हम करते हैं वाइंड अप। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए, आपका अपना 100.7 FM रेनबो, जिस पर इस वक्त आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त आपकी आरजे रिचा। और गाना फिर भेजा 90s के दौर का, सुनिए एंजॉय कीजिए इस गाने को।

तो चलिए उन तमाम सारी यादों को सहेज के रखिए जो आपके बचपन के दौर से आती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए आज के इस शो होटो पे तेरी बात से इजाजत, लेकिन अगले घंटे भी हम रहने वाले हैं आपके साथ और आप जुड़ेंगे मेरे साथ हॉटमेल के जरिए, तब जब एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप आपके गानों की रिक्वेस्ट हम तक भेजेंगे। सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

0: नमस्कार। दोपहर के 2 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। प्रोजेक्ट सीता की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाने के साथ की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। लगातार संरक्षण और प्रजनन प्रयासों से कूनो में चीतों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जो भारत के वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए लागत की 81 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को घर की चाबी तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों की शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विरासत के संरक्षण और विकास की यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पाती साझा करते हुए प्रदेशवासियों से वर्षा काल में सतर्क और सजग रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने सभी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक
1: तैयारी। Reserved for women with an additional 10% reserved for Agniveeds. Key allocations include rupees 36,000 crore for the Annapurna Yojana, over rupees 8,500 crore for agriculture, rupees 8,000 crore for food and supplies, rupees 7,000 crore for higher education, and nearly rupees 18,000 crore for home and hill affairs. The government also announced salary hikes for para teachers, civic volunteers, and village police. Anganwadi and Asha workers will receive an additional rupees 5,000 monthly honorary.

0: held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री

0: श्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में

0: मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: लिखा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा हैं। कोई भी गीत तो सारे गाने आपके लिए है मेरी तरफ से। महेंद्र दीपन जी का ईमेल वापस आया है और आपने गाने की रिक्वेस्ट तो भेजी है महेंद्र जी, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस गाने को बजाऊं। इस वक्त तवज्जो उन्हें देंगे जो थोड़ा सा नए नाम भी दिख रहे हैं, बट आप रहिए, उम्मीद पर दुनिया गायब है, ठीक है। और आपने हमें लिखा है कि राजस्थान नौगांव जिले के रूड गांव से हमें सुन रहे हैं और हॉटमेल आपको अच्छा लग रहा है, दिल की गहराइयों से विशेष फरमाइश है। रोशनी रावत, बबीता रावत, ये सभी को आपने आपका जो ये शो है गाना इसको डेडिकेट किया। लिखना है जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा है से आपके रेडियो शो पर सुनना किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होगा अगर ये गीत प्ले करेंगे तो। चलिए आप रहिए मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगी कि जो गाना आप सुनना चाहते हैं वो आप तक हम पहुंचा दें। आर्यन राज्य का भी ईमेल है, शुभ दोपहर के साथ आपने लिखा है किसी भी गीत में नाम शामिल करें और आपने मुजफ्फरपुर बिहार से आपका ईमेल भेजा है। आपके साथ रोहित राज एंड पीयूष कुमार भी हैं। शुक्रिया आर्यन जी आपके ईमेल के लिए। मोहम्मद शहीर मेरे साथ हैं और आपने लिखा मैं अपने बड़े भाई के मोबाइल से ईमेल भेज रहा हूँ, भेजने वाला हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद फैज। अच्छा, ऑल राइट, तो मोहम्मद फैज जी ये आपका ईमेल है जो मैं पढ़ रही हूँ। रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से आपने ईमेल भेजा है, बहुत दिनों के बाद हॉटमेल में आप जुड़े हैं, शुक्रिया इसके लिए। गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बजा सकूं उसे। अनिल कुमार जी भी हैं मेरे साथ और आपने हमें सदा ठेर बदायूं डिस्ट्रिक्ट से आपका ईमेल भेजा है और अच्छे सुनने को मिल रहे हैं गाने। और आपने लिखा है रेनबो ने छेड़ा मन का प्याला। अच्छा ठीक है, रहिए, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला है ना, ऐसा कुछ गाना है। कोशिश करेंगे कि आप तक गाना हम पहुंचा दें। तो अभी यहां तक हो गए 2:31 में। चलिए अच्छा, दो एक ईमेल और शामिल करते हैं और उसके बाद गाना आप तक पहुंचाएंगे। रणधीर गुप्ता जी हैं और आपके साथ आपने कहा कोई भी गीत सुनवा दीजिए। बबीता रानी, सत्यम गुप्ता हैं, शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। संगम विहार से आपका ईमेल है और जय जी आपका नंबर भी आ गया, आपने लिखा हमारा नंबर कब आएगा। तो देखो इतने सारे ईमेल से सभी के नंबर आने, सभी को इंतजार है कि मेरा नंबर कब आएगा। और उम्मीद में तो हम यही है कि सबके नंबर आ जाएं, सबके नाम हम ले लें। और आपने में होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से आपका ईमेल भेजा है हमेशा की तरह। और आपके साथ सचिन खोरवाल और अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल भी हैं, सभी के नाम पढ़ दिए। ठीक है, गाने के लिए थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि बजेगा क्या नहीं ये तो बात की बात है, नाम पढ़ना बेहद जरूरी है जो भेज दिया। अच्छा, अभी जो गाना दे रहे हैं, आप में से किसी ने मुझसे फरमाइश की थी, नाम माफी चाहते हैं, हम भूल तो गए हैं पर कोशिश करेंगे उनके लाए। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने कहा है किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें तो ये गाना उनके लिए। सुनिए इस गाने को। 2:32 हॉटमेल इस वक्त आप सुन रहे हैं आपकी अपने 107 FM रेनबो पर।

तो हमारी भी कोशिशें ऐसी हैं कि जो जो चाहत का सिलसिला आपके साथ चल रहा है ना, ये हमेशा ऐसे कायम रहे। हाँ आप थोड़े से नाराज हो जाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरियों को समझेंगे आप ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा प्रयास या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं है। सुधाकर जाधव जी, आपका ईमेल आ गया है मेरे सामने, आपने भेजा और फिर वो आया है, अगर है सामने तो बिल्कुल मैं पढ़ूंगी उसको। और आपने में ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से आपका ईमेल भेजा और आपके साथ प्रशांत राजे, सचिव वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख और खानवी कुमारी खानवी देशमुख और हर्षिता देशमुख हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए और ऐसे ही आप जुड़े रहें। फिर आपसे कह रही हूँ कि भले ही गाना ना शामिल

उपाय, लेकिन आपका नाम अगर है मेरे सामने तो हम इसे जरूर से शामिल करेंगे। अगला ईमेल आया है उदय भान पाल जी का और आपने लिखा है किसी भी गीत में मुझे शामिल करें। बहुत शुक्रिया उदय भान जी। और आपके साथ रजौनी, आपने रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल भेजा है। और जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश, वकील और पूरा परिवार इस वक्त इस शो को एंजॉय कर रहा है। मास्टर खीलू परवेज जी हैं और आपने हमें सेफ वाटर सेफ लाइफ लिखकर भेजा है। साथ ही आप हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं और आपके साथ बेगम इमराना नाज, नवाज़ शेख और दानिश शेख भी हैं, साथ ही अमन अफरीदी, राधा नामदेव भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। अहमद फूल वाले जो है इन्होंने आपका ईमेल भेजा है और लिख रहे हैं सदा खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, कोशिशों में है। आपने लिखा प्रोग्राम में रौनक है और ईमेल को जरूर शामिल करें, पूरी कोशिशें हैं कब मेरे सामने अगर आपका ईमेल मुझे दिख रहा है तो मैं इसको शामिल कर लूं। और आपने कुछ नाम दिए हैं गानों की पसंद के, हम कोशिश करते हैं कि वो गाने आप तक पहुंचा दिए जाएं। साथ में आपके सुन रहे हैं अहमद भाई, दुखनी सदफ फारजू और जूही इकबाल, इमरान अहमद कापस छेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं। इसके साथ ही आपकी बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंदशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली है इस वक्त। धन्यवाद इतना वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के। उदयवान जी आपका ईमेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि मत भेजिए दोबारा ईमेल, क्योंकि आपका भेजा गया कई बार का ईमेल बहुत सारे ईमेल्स को मेरे सामने से हटा रहा है और फिर शिकायतें आप करेंगे तो बताइए कैसे चलेगा ना। साई गायकवाड़ जी है हमारे पास साथ और इन्होंने हमें लिखा है, आपका नंबर आ गया है ना, परेशान मत होइए। और मोहरा मूवी सब गाना सुनना चाहते हैं, ठीक है मैं निकाल कर रखती हूँ ताकि आपको सुनाया जा सके। और आपके साथ ओम रेडियो शोरता संघ कोडी नांदेल महाराष्ट्र से हैं, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। मास्टर खीलू जी आपका ईमेल शामिल हो चुका है। दीपेश वर्मा जी भी आए हैं मेरे साथ और आपने कहाँ से लिखा है, कहाँ से लिखा है पहले बताइए। ग्राम पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से आपका ईमेल है। आपके साथ दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांशी हैं जो इस वक्त शो को एंजॉय कर रहे हैं, बस ऐसे ही जुड़े रहिए। राधे कुमार जी का ईमेल और आपने लिखा है कहाँ से, गोगुल चौक गंगा जल सहरसा बिहार से। शुक्रिया आपके साथ राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी और बुल्की वाली और फलना झा भी मुझे सुन रही है। संदीप मक्कर जी का ईमेल और ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर और भरत मक्कर, कमल साहनी पिंगा वाला चौक जालंधर से आपका ईमेल। आपका ईमेल शायद मैंने पहले शामिल किया था लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने भेजा फिर उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट ईमेल रविंद्र मोहन दास जी, किसी भी गीत में नाम शामिल करने के लिए आपने लिखा शुक्रिया। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी का ये ईमेल जो मैंने अभी पढ़ा। दिलावर खान साहब का ईमेल, किसी भी गीत में नाम शामिल करने को बोला है और आपने हमें ईमेल किया है रघुवीर नगर दिल्ली से। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिया नायाब और लड्डू हैं इस वक्त हमारे साथ। नवी हसन है, नवी हसन ने लिखा है प्यार भरे नमस्कार के साथ और आपने लिखा है मैं मारहरा दरवाजा एटा से आपका ईमेल। नबी हसन, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम अब्बासी और यशफ रसीद सिकंदरा राव से, मुनीब अब्बासी आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद भी आपने भेजा है। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि सांस लेनी भी तो जरूरी है ना आपके ईमेल्स वापस पढ़ने के लिए। इतने सारे ईमेल्स, अच्छा लग रहा है प्यार भरे ईमेल्स आ रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच गाने भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए ये गाना महेंद्र दीपन जी आपकी पसंद का और इस गीत के साथ वो सारे नाम जो जिन्होंने कहा कि किसी भी फरमाइश में आपका नाम जोड़ें तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए मेरी तरफ से और भूल चूक हो जाए तो माफ कर दिया करिए, दिल थोड़ा बड़ा रखिए, क्या समझे।

बिल्कुल, चलते रहना ही जिंदगी का नियम। जैसे वक्त भागता है ना, वैसे हमें आपको भी चलना, और आपके ईमेल्स भी लगातार मेरे साथ चल रहे हैं, और बड़े सारे लोग हैं आप जुड़े मेरे साथ, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपका साथ बना रहता है तो यकीन मानिए थोड़ा सा खुद को भी एक एनर्जी अलग से फील होती है। रामेश्वर जी का ईमेल मेरे पास है, और आपने लिखा कि क्या मेरा ईमेल शामिल नहीं करेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है रामेश्वर जी, आपका ईमेल शामिल हुआ था, शायद आप सुन नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, मैंने वापस आपका ईमेल पढ़ा है। और आपने हमें ग्राम व पोस्ट मुंगी सापुर और कानपुर देहात से आपका ईमेल भेजा। आपके साथ रामेश्वर, उमा कांति कठेरिया जी भी हैं जो इस वक्त ईमेल प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आफताब अंसारी जी का ईमेल आ चुका है, और आफताब जी के साथ शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा से आपने ईमेल लिखा है। आफताब, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी हैं, और आपने लिखा है किसी भी गीत के साथ इसको शामिल करें। बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए, आपने ईमेल भेजा, दिल से धन्यवाद। रोजी डिकोस्ट्रा आ चुकी है मेरे साथ, और इन्होंने जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा, पल डिकोस्ट्रा, विलिस डिकोस्ट्रा, ये तमाम सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। गाना सुनना चाहती हैं फिल्म पड़ोसन से, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, या फिर किसी भी गीत में। आपने ये भी एक हमें थोड़ी सी सहूलियत दे दी है, शुक्रिया इसके लिए। और वारिस अली खान साहब, आपका ईमेल आप तक पहुंचा था, शायद आप सुन नहीं पाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वापस आपने आपका ईमेल भेजा, और दिल से धन्यवाद ईमेल के लिए। लेकिन बस गुजारिश वही कर रही हूँ कि अगर आपने एक बार ईमेल भेजा है तो प्लीज दोबारा भेजने से थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि नाम हैं बहुत सारे, लेकिन वो फिर आपका जब ईमेल आते हैं ना आप सभी के, बहुत सारे नाम पीछे छूट जाते हैं जिनको वाकई मुझे शामिल करना चाहिए, बट वो कहीं रह जाते हैं। अगला ईमेल जो है ये भेजने वाली हैं लुबना अंसारी, और लुबना ने हमें कहाँ से भेजा है, जयपुर से आपका ईमेल है, किसी भी गीत में शामिल करने के लिए बोला, कृष्ण की नगरी मथुरा से हैं आप, और आपके साथ सबा अंसारी, गुलिस्तान रानी, नंदनी, अंजलि हैं। बहुत शुक्रिया लुबना आपके ईमेल के लिए, नमस्कार, आपने लिखा, आदाब लिखा, प्यार भरा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौशिक वधावन, वधावन जी हैं फ्रॉम राजकोट गुजरात से। कौशिक, अस्मिता, मम्मी पापा, महेश, वडवारा परिवार, और मेरा नाम रिचा है, आपने रीटा लिख दिया, बट मैं आपको बता दूं मेरा नाम रिचा है। केम छो, मजा मा छो, अपना बताइए ना आप कैसे हैं, ये भी जानना बहुत

ज़रूरी है। और आपने गाने की रिक्वेस्ट करी है, मैं कोशिश करूंगी कि गाना आप तक पहुंचे, क्योंकि नाम पहुंचा देना आप सबके बहुत ज़रूरी है। और जो ठंडी सी आइसक्रीम आपने भेजी है ना, दिल से धन्यवाद इसके लिए कौशिक वधावन वधावन जी, धन्यवाद। आपका ईमेल का इंतजार वापस भी रहेगा हमें आगे किसी समय। मोइनुद्दीन जी हैं मेरे साथ और आपने लिखा है, गुडारी खराबा सीतापुर से सुन रहे हैं, पहले तो प्यार भरा नमस्कार, धमाकेदार गानों के साथ आपका प्रोग्राम चल रहा है, शुक्रिया। और पता नहीं था कि आप आएंगी हमारे साथ, कई लोग सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी हम कुछ देर और हैं हमारे आपके साथ, तो अगर तब नहीं सुना था तो अब सुन लीजिए, हमें खुशी होगी कि आपने हमें सुना। सदानंद मंडूरकर जी हैं और आपने हमें लिखा है डाबकी रोड अकोला से, सुशीला देवी मंडूरकर एंड सदानंद मंडूरकर हैं आप के साथ साथ सुनने के लिए, और आपने ईमेल भेजा, दिल से आपका शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। बाबू अंसारी जी आपका ईमेल हम शामिल कर चुके हैं, तो अब ना भेजिएगा, ठीक है, आप भेजेंगे तो अगले ईमेल खो जाएंगे और फिर डांट हमें पड़ेगी, हमसे शिकायत करेंगे मेरा ईमेल नहीं शामिल किया आपने, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, फिर कौन सुनेगा बैठ करके सब कुछ। रविंद्र मोहन दास जी का ईमेल, कोई गीत सुना दे, तो सारे गीत आपके लिए थे, लेकिन अब जब आपका ईमेल अभी शामिल हुआ है तो अब से आगे जो भी गाने बजेंगे वो सब आपके लिए, ठीक है। रविंद्र मोहन दास जी के साथ आशा देवी है जो मुझे सख्त सुन रही है, दिल से धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनिल मोहन जी भी आ चुके हैं और आपने पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आपका ईमेल भेजा है एनी सॉन्ग के साथ। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक एंड मधु नायक हैं मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, धन्यवाद आपके ईमेल। दिलावर खान साहब आपका ईमेल शामिल हो चुका है। आनंद कुमार शुक्ला जी का ईमेल आप लिख रहे हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, यकीन मानिए आपके ईमेल्स इतने अच्छे होते हैं कि हम क्या ही करें, वो मिठास अपने आप आई जाती है। और आपने हमें कहां से लिखा है, श्यामदासपुर महमूदाबाद से। आनंद कुमार शुक्ला, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे हैं, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, फूल था मैं मुझको कांटा बना के रख दिया, और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे, बात तो बिल्कुल सही है, अब जब कांटा है तो उसका धर्म है चुभना, तो चुभेगा, बस ये है कि खुद को बचाकर वहां से निकलना है, ये तो हम कर ही सकते हैं ना, कांटे को उसके धर्म से नहीं रोक सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं कि खुद को वहां से बचाकर निकल जाएं। चलिए थोड़ा सा रुक रहे हैं, निसार अली जी का भी ईमेल चलिए पढ़ देती हूँ। आपने हमें लिखा है, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से किसी भी गीत में शामिल करें और हर पल खुशियों से भरा हो आपका, इसके लिए धन्यवाद जो आपने भेजा। और आपके साथ नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हैं जो हमें सुन रहे हैं। अनिल मोहन जी का भी ईमेल पढ़ ही लेते हैं। अनिल जी अभी अभी आपका ईमेल शामिल किया हमने, शायद आप रह गए। कमलकांत गुप्ता जी, हमें आज उदास ना करें जी, लीजिए हमने नाम पढ़ लिया, हम कोशिशों में हैं कि हम आपको उदास ना करें, इसीलिए वापस आ गए। और आपके साथ कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और समडील नवापारा से, मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक एंड अंकुर राघव गुप्ता जी भी, अच्छा श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता जी हैं। चलिए अब थोड़ा सा रुकते हैं, 51 हुआ है, एक गाना बजा रहे हैं, आप में से ही किसी ने मुझे, हाँ याद आ गया, जय जी ने रिक्वेस्ट किया था, तो जय जी की पसंद का ये गाना आप सभी के लिए, जो ये कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरी केयर नहीं कर रही है, मेरी परवाह नहीं कर रही है, मेरे गाने नहीं बजा रही, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस इतना सा है कि आपके ईमेल्स इतने सारे हैं कि वो नीचे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, हम बस कोशिशों में ढूंढ के उन्हें वापस ला रहे हैं। फिलहाल गाना

तो अगर आपको भी ये लगता है कि हम आपकी केयर नहीं करते तो आप सरासर गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, हम आपकी बड़ी केयर करते हैं। इसीलिए देखिए आपके नाम ना छूटे, हम वापस आपके ईमेल्स की तरफ बढ़ चुके हैं। प्रवीण हगोनी नाम है ना आपका, ये आपने ईमेल लिखा है और आपने जो गाने की रिक्वेस्ट करी है, आई एम सॉरी अभी तो नहीं बच पा गया क्योंकि ऑलरेडी गाना मैंने क्यू कर लिया है, लेकिन गाने भले ना बजे आपके नाम शामिल करने की एक जरूरत थी सो मैंने किया। और आपके साथ प्रवीण हगोरे एंड योगिता प्रियाली पार्थ और परिवाराला है ना, ये सारे नाम आपने जो लिखे हैं, कहीं कुछ गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा नाम हम पढ़ने में। जाकिर का भी ईमेल आ चुका है और जाकिर ने हमें लिखा है सदाबहार लाजवाब कार्यक्रम, कहाँ से लिखना है ये पढ़ लेती हूँ। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से हैं और बाजार रोड मुंगीसारपुर से, थैंक यू सो वेरी मच आपकी ईमेल के लिए। आपके साथ शाबिस्ता लुबना यश मंसूरी कमरून निशा जाकिर हैं, ये तमाम सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। नीलू का भी ईमेल अभी अभी आया, नीलू थोड़ा देर कर दी बट कोई बात नहीं, आपने ईमेल भेजा इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और ये लालगिरी जी का भी ईमेल आ चुका है और आपने हमें रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आपका ईमेल भेजा। आपके साथ लालगिरी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी और ये सारे लोग हैं जो अभी इस वक्त इस शो को एंजॉय कर रहे हैं। नितिन वाजपेयी जी भी आ चुके हैं, सॉरी फॉर मेलिंग यू अगेन इन दैट सेम प्रोग्राम, आई मेल्ड यू 226, प्लीज फाइंड एंड इंक्लूड माय ईमेल, आई एम सो सॉरी सर, आपने बिल्कुल भेजा होगा लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मैं बाबा मना कर रही हूँ कि अगेन अगेन मत भेजिए, लेकिन भाई अगर आप नहीं सुन पाते हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन आपने ईमेल वापस भेजा और उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त आपने सुन लिया होगा। फिर किसी दिन जब आपका ईमेल शामिल होगा तो फिर ढूंढ के लाएंगे, फिर पढ़ेंगे उसको। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी का ईमेल है और किसी भी गीत में आपने शामिल करने को बोला। आपके साथ तारा देवी, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी हैं आपके ईमेल के साथ। शुक्रिया धन्यवाद ईमेल भेजने के लिए। और ये ईमेल नेक्स्ट किसका है, शाहनूर नूर अंसारी जी आपका ईमेल शामिल हो चुका है। कौशिक वधावन जी आपने वापस ईमेल किया, अच्छा थैंक्स बोलने के लिए किया, दिल से धन्यवाद, कम से कम आपने इस बात को समझा तो। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी हैं, आपने शायद आपका ईमेल मिस कर दिया, आप सुन नहीं पाए बट कोई बात नहीं, वापस आपका ईमेल आपके नाम के साथ हमने पढ़ दिया और मैं देख रही हूँ किसी का नाम छूटा तो नहीं है। क्योंकि 2:56 का वक्त हो चुका है, शो को वाइंड अप करने की बिल्कुल बारी आ रही है, आखिरी टैग के साथ हम आपको छोड़ कर जाएंगे यहाँ पर। फिलहाल इस वक्त मेरी आंखों के सामने जितने ईमेल से भैया मैंने वो पढ़ दिए हैं, अब अगर किसी का ईमेल आया तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि अगले घंटे हम जुड़ेंगे आपके साथ तब जब होगा सतरंगी दुनिया का सफर। तो इस आखिरी गीत के साथ आज के हॉट मेल से दीजिए अपनी दोस्त ऋचा को इजाजत। और ये गाना रहा वो जिसके लिए मैंने बोला था बजा दूंगी, कौन सा, टिप टिप करता बरसा पानी, सबको इंतजार है ना बरसात का, तो बिल्कुल होगा। और वो सारे लोग जिनके गीत भले ही नहीं बच पाए नाम शामिल करने की कोशिशों के साथ, जिन्होंने मुझसे कहा कि किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल कर लें, तो ये जो गाना बच रहा है ना ये बस सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए है। बेसब्री से इंतजार है ना, बरसात कहीं तो हो रही है कहीं नहीं हो रही है, लेकिन बस जल्दी आएगी बरसात और फिर वो जो राहत गर्मी से हम सबको चाहिए वो भी मिलेगी। फिलहाल 2:57 का वक्त, हॉटमेल से हम ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि 3 का जो घंटा है उसमें हम आपसे जुड़ेंगे सतरंगी दुनिया के साथ और साथ ही होगा प्रायोजित कार्यक्रम भी ठीक 3:30, तो सुनना नहीं भूलना है आपको, आपके लिए विशेष तौर पर फिलहाल ये गीत।

वैसे तो मैं यहाँ वाइंड अप कर चुकी थी, लेकिन फिर भी विनीत कुमार जी का ईमेल है जिन्होंने लिखा कि उनका ईमेल शामिल नहीं हुआ, तो शायद आप सुन नहीं पाए थे विनीत जी। वह आपका ईमेल शामिल, वादा मैंने अपना पूरा किया, क्या समझे आप।

102.2 पर ये है रेनबो कानपुर और आज के म्यूजिक आर प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आरजे आरती ज्योति, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, ये जलवा किस चीज़ का है, तो जुड़िए हमारे साथ म्यूजिकल प्रोग्राम में और बनिए म्यूजिकल प्रोग्राम का एक

0: तो दोस्तों जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है aarkansomedia@gmail.com।
1: मजा ही मजा।

हाँ दोस्तों, ये सॉन्ग सुनकर आप जान ही गए होंगे कि आज बातें हो रही हैं फैशन की। जी हाँ, फैशन यानी बदलते समय के साथ बदलती पसंद, पहनावे का अंदाज और अपनी पहचान को खास बनाने का तरीका। वैसे तो हर दौर का अपना एक फैशन रहा है, कभी बिल बॉटम का जमाना था तो कभी पोल्का डॉट्स, और अब इंड वेस्टर्न स्टाइल युवाओं की कह सकते हैं कि पसंद बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी है ऐसा फैशन जो आरामदायक हो और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। तो अगर आप भी अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो बस हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com, यानी aircansomedia@gmail.com, और जुड़िए हमारे साथ प्रोग्राम म्यूजिक आर में।

दोस्तों, वैसे फैशन की दुनिया और बॉलीवुड का रिश्ता भी है बहुत गहरा। कई ऐसी अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने मॉडलिंग और फैशन की दुनिया से अपने सफर की शुरुआत की और फिर बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। जैसे अगर बात करें दीपिका पादुकोण की, तो उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के बाद बहुत सारी फिल्में की। ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखा और चेन्नई एक्सप्रेस, पद्मावत और पीकू जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
4: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
3: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
5: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
4: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat।
3: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
6: फिलहाल दोस्तों 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, जिसमें आप सुन रहे हैं आज बातें फैशन की।

जी हाँ दोस्तों, काला चश्मा जचता है और ये जचता तो रहेगा ही, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, जिसमें आज बातें हो रही हैं फैशन की। दोस्तों अब हमारे जो खास प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, इसमें जुड़ी हैं हमारे लिसनर और उनका नाम है अर्चना जी, और उनका कहना है फैशन का मतलब केवल नए कपड़े पहनना नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को खूबसूरती से प्रस्तुत करना है। क्या बात है अर्चना जी, आपका तहे दिल से हम कर रहे हैं शुक्रिया और आप जुड़ी हमारे साथ प्रोग्राम में। और फिलहाल बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, और कहते हैं ना दोस्तों, जब बात चल रही हो फैशन की तो हम मिस वर्ल्ड रह चुकी ताज जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने की है बहुत सारी फिल्में, फिल्म ऐतराज, फैशन, बर्फी और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में कहते हैं ना अपने दमदार अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाई। फैशन फिल्म में ग्लैमर जगत की चमक और संघर्ष को पर्दे पर उतारा। तो बातें तो अभी और भी होती ही रहेंगी फैशन की, फिलहाल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की ओर।

0: जी हाँ दोस्तों, यू ही कनेक्ट रही हमारे साथ, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक का रैंड। 3:30:41 हो रहे हैं और अब फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के बाद फिर से आप जुड़ेंगे हमारे साथ म्यूजिक का प्रोग्राम में।
1: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
0: प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक कार जिसमें आप जुड़े हैं हमारे साथ 102.2 के फ्रिक्वेंसी पर। एंड दोस्तों, सच में फैशन केवल पहनावे का नाम नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी पहचान को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और जब यही फैशन संगीत और सिनेमा का संगम बन जाता है तो मनोरंजन का रंग और भी निखर उठता है। और अब तो दोस्तों सस्टेनेबल फैशन की भी चर्चा बढ़ रही है। फिलहाल भारतीय हस्तकरघा, पारंपरिक परिधान, स्थानीय शिल्प और आज वर्ल्ड लेवल पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले ट्रैक की ओर जो आ रहा है आपके लिए।

तो दोस्तों बिल्कुल भी खफा होने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम म्यूजिकार में आप जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। और कहते हैं ना, खूबसूरत गीत और फैशन की रंगीन दुनिया की बातें चल रही हो, तो अगर गाने और भी खूबसूरत हो तो कहना ही क्या। दोस्तों ये सॉन्ग जो था वो जावेद अली की आवाज में आपने सुना, और ये जोधा अकबर फिल्म का सॉन्ग था जिसके अधिकांश जो दृश्य थे वो जयपुर के आमेर किले में शूट किए गए थे। दोस्तों कुछ हिस्से इसके जयपुर सिटी पैलेस में तो कुछ जयगढ़ में शूट किए गए थे। और दोस्तों जोधा अकबर वही फिल्म है जिसमें 1994 में मिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल ऐश्वर्य राय पर इसे फिल्माया गया था। और दोस्तों 19 जून को जयपुर शहर को, यानी इसी 19 जून को जयपुर शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में 18वां स्थान मिला है। यानी जयपुर ने टॉप 20 में बनाई है जगह, तो भाई अब इसमें जश्न तो बनता ही है। फिलहाल ये जो सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, ये खूबसूरत सी ब्यूटीफुल, जी हाँ, जोधा अकबर में जिसने अपने अभिनय का जादू बिखेरा वो है ऐश्वर्या राय।

फिलहाल दोस्तों अभी तक हमने बातें की फैशन की, बॉलीवुड की, एंड आपको बताते चलें कि भारत में भी पहली बार मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 आयोजित हो रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब जीतने वाली लक्षिता थिलागराज। और दोस्तों जिसमें दुनिया भर के देशों की ब्यूटी क्वीन ले रही है हिस्सा, तो बात चाहे बॉलीवुड की हो या फिर भारत की ग्लोबली फैशन को रिप्रेजेंट करने की, कह सकते हैं ना फैशन की दुनिया से हमारा नाता हमेशा से रहा है। तो बस इसी इन्हीं बातों के साथ दीजिए मुझे इजाजत, और आ रहा है आपके लिए बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर निधि सिंह को, और आज आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान करेंगे हम इनके साथ। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं।
1: मैं बॉम्बे से हूँ
0: जी,
1: और मैंने पढ़ाई मेरी MBBS करी है रांची रिम्स से, और मैंने MD करी है BHU से। मैंने DNB भी करा है दिल्ली से। मुंबई में ही एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य के लिए ट्रेनिंग लिया है 2 साल, और उसके बाद कानपुर में हूँ अभी। और मैंने बैंकॉक से भी फेलोशिप किया है लेजर एंड एडवांस स्किन सर्जरीज में।
0: डॉक्टर साहब, एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका और अच्छा एक्सपोजर भी है आपके पास, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास उन्हें कब जाना चाहिए, यानी कि किस प्रकार की समस्याएं होने पर वो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं।
1: देखिए, आजकल के जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, पहले जैसे नहीं रहा कि प्रॉब्लम होगा तभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। कैमराज है सबके हाथ में, मोबाइल फोन में, तो लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने लुक्स को लेकर के, स्किन को लेकर के अवेयरनेस भी काफी बढ़ी है। तो 2 सेटअप्स में लोग आते हैं, एक तो जनरल स्किन कंडीशन दिखाने के लिए कि वो कोई स्किन के रूटीन स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि उनका स्किन अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए और वो ग्रेशियसली एज करे। दूसरी एक अलग पॉपुलेशन है जो प्रॉब्लम होती है कोई तो आते हैं। आप दोनों ही कंडीशन में जा सकते हैं, अगर एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन बनवाना है जिससे कि आपका स्किन हेल्दी रहे लॉन्ग टर्म में तो भी आप जा सकते हैं। अगर सुंदर दिखना है जितना है उससे ज्यादा तब भी जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई एलर्जी हो गई है या कुछ भी है आपके स्किन पे जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो घरेलू उपचार वगैरह करने से अच्छा है कि एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लें।
0: बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। और स्किन या त्वचा हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, लेकिन लोग उस प्रोपोर्शन में इसकी देखभाल शायद नहीं करते।
1: नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा मिथ ये है कि हमारे यहाँ स्किन को सौंदर्य रूप से ज्यादा मानते हैं। जो लोग स्किन केयर करते हैं या अपने स्किन को ध्यान देते हैं उनको थोड़ा लोग अलग नजर से भी देखते हैं कि वो लोग थोड़े सुपरफिशियल हैं या ज्यादा अपने लुक्स में ध्यान देते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्किन हमारा बॉडी का पार्ट है, हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, हमें बाहर की चीजों से धूप गर्मी धूल मिट्टी पोल्यूशन सबसे बचाता है, तो उसका ध्यान रखना कोई खराब बात नहीं है। ध्यान रखेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फीमेल्स आती है जो 40s 50s में पहुंच जाती है, तो एजिंग उस टाइम काफी सेट इन हो चुका रहता है, इरिवर्सिबल डैमेज काफी हो चुका रहता है। तब तक उन्होंने कभी एक मॉइस्चराइजर भी प्रॉपर नहीं लगाया रहता, सनस्क्रीन का मालूम भी नहीं रहता, तो उस टाइम समय बहुत बीत चुका रहता है। तो एडवांस में आकर के हम अवेयर रहें तो और दिखा ले तो ज्यादा इजी रहेगा आगे प्रोसीड करने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप स्किन यानी त्वचा के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ बताएं।
1: स्किन क्या रहता है कि वो मल्टीपल लेयर्स में बना रहता है, देखने से सिर्फ लगता है कि एक कवरिंग है पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारे स्किन सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे बाल रहते हैं हमारे पूरे सरफेस एरिया में जो आंखों से कभी नजर आते कभी नहीं नजर आते, और वो क्या करते हैं वो हमें सेंसेशन फील कराते हैं। जो बेसिक

0: स्ट्रक्चर की बात करी आपने, दो लेयर होती है मेनली, एपिडर्मिस और डर्मिस रहती है। एपिडर्मिस में बहुत सारे मेलानोसाइट्स रहते हैं जो हमारे स्किन को कलर प्रोड्यूस करते हैं। जो डर्मिस रहता है उसमें हमारे स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल ये सब रहता है। और जो स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल है, सिर्फ वो हेयर फॉलिकल दिखने के लिए नहीं है, वो बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब बैलेंस भी करती है, पीएच भी बैलेंस करती है और नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर सिक्रीट करती है जो हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करके रखती है। दूसरी बात यह है कि प्रोटेक्टिव लेयर भी है, तो बहुत सारे जैसे कि मानिए कि सोल्जर्स जैसे खड़े रहते हैं हमारे स्किन पे, माइक्रोबायोम जिसमें आता है। स्किन एक एंडोक्राइनल ऑर्गन के जैसे भी काम करता है, दैट इज हार्मोनल, नॉर्मली हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करके रखना।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की एक्ने, पिंपल्स यानी कि मुहासों की, और बहुत सारे टीनेजर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि हार्मोनल इंबैलेंस का शिकार है, उन्हें अक्सर पिंपल्स या मुहासों की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में देखा है कि आजकल सोशल मीडिया पे या कई अन्य माध्यमों से लोगों को कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि सलाहें देते हैं, जैसे कि अपने मुहासों पर टूथपेस्ट अप्लाई करें, तो ऐसे सुझावों के बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है
1: जी।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिंपल्स है वो इतना कॉमन है कि जो हमारे डर्मेटोलॉजी में जो सबसे कॉमन डिजीज है वो पिंपल्स ही रहता है, दैट इज एक्ने
1: जी।
0: वो इतना कॉमन है कि 70-80% पॉपुलेशन ग्रसित रहती है इससे। बट बिकॉज इट्स सो कॉमन, लोग सोचते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल है, दैट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ स्किन है, ये नॉर्मल नहीं है। नहीं दिखाएंगे तो बाद में स्कारिंग, पिगमेंटेशन काफी हो जाती है। टाइम रहते दिखाएंगे तो कोई स्कार नहीं बनेगा, पिगमेंटेशन भी नहीं होगा। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स की बात करी आपने, वो तो अब देश आजाद है, डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का एक माध्यम मिल गया है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल। लोगों को खुद भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है उसके बारे में, तो उनको जानकारी नहीं रहेगी, लिमिटेड ही रहेगी। और टूथपेस्ट वगैरह तो कभी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल ही ना लगाए, बर्न हो जाएगा, वो इरिटेट कर देता है स्किन को, ये बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिन लोगों के पास उस विषय में ठीक जानकारी नहीं हो, उनकी सलाह को हमें फॉलो नहीं करना है और एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान करना है।
0: हाँ जी बिल्कुल, 100%।
1: डॉक्टर साहब, इसी के साथ बोले जाते हैं कई सारे जो दादी नानी के नुस्खे हैं या होम रेमेडीज हैं, और लोग अक्सर कहते हैं कि नींबू का रस है उसे आप चेहरे पर लगाएं, या संतरे का रस है उसे किसी चीज में मिलाकर आप चेहरे पर लगाएं, तो इन सब होम रेमेडीज के बारे में आपका क्या विचार है?
0: दादी नानी के टाइम में जमाना इतना प्रोग्रेस नहीं किया था, सो उस टाइम के दादी नानी के नुस्खे उनके जमाने के लिए सही थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी उतना नहीं हुआ था, जितने भी पोल्यूशन है, बिल्डिंगें बन रही थी, गाड़ियां चल रही है, वो पहले नहीं थी। और बात रही नींबू और ऑरेंज, बहुत रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, पर लगाने से अच्छा होगा कि आप पानी में डाल के उसको पी लीजिए, सो उससे थोड़ा बेटर अब्सॉर्प्शन हो जाएगा विटामिन सी का, रादर देन वो वेस्टेज हो जाती है नींबू लगाने से। उसका कोई डाटा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई स्टडी नहीं हुआ है, तो उसको मैं सपोर्ट तो नहीं करूंगी क्योंकि मैंने प्रूफ नहीं देखा है। सो वो सब कहीं सुनी बातें हैं, जिसका कोई स्टडी नहीं है, प्रूफ नहीं है, ट्रायल नहीं हुआ है जिसके ऊपर, तो कहीं सुनी बातें कहने से अनावश्यक रूप से एक मिथ फैलता है। आई विल रिकमेंड कि आजकल इतना प्रोग्रेस कर चुका है स्किन केयर, तो आप प्रॉपर एक स्किन केयर करें इंस्टेड ऑफ डूइंग ये होम रेमेडीज। मैं उतना सजेस्ट नहीं करती होम रेमेडीज, क्योंकि वो फायदा से ज्यादा नुकसान कर सकती है।
1: डॉक्टर साहब, बातें अभी और भी होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे लिसनर्स को अपनी पसंद का एक गाना सुनवा दें।
0: मेरा पसंद का एक गाना है, इजाजत मूवी है, रेखा और नशरुद्दीन शाह का, उसमें एक गाना है कतरा कतरा, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं सबको वही सुनाना चाहती हूँ।

0: निधि जी, आगे बढ़ते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि त्वचा का समुचित रूप से ध्यान रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
1: किसी को भी एक हेल्दी स्किन रखने के लिए, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, कोई 90 साल का बुजुर्ग है या हम आप है, तो 3 चीजें नेसेसरी रहती है। एक तो फेस वॉश या क्लेंजर, जिससे हम साफ कर लेंगे सर्फेस को, मेनली फेस एंड नेक उसमें आता है। उससे क्लीन करने के बाद एक मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि हमारा बैरियर खराब ना हो। आप नहीं लगाएंगे मॉइस्चराइजर तो ड्राई हो जाएगा, इचिंग हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है। और उसके ऊपर से आपको सूरज के किरण से बचाने के लिए, यूवी रेज से बचाने के लिए, एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए, अनइवन पिगमेंटेशन डेवलप ना हो, इसके लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। ये 3 बेसिक स्किन केयर रूटीन है। इतना फॉलो करेंगे भी तो काफी मेंटेन रहता है, एकदम बेसिक्स का स्किन केयर फॉलो करना रहता है। ये 3 इज इनफ अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पिंपल्स का होना, पिगमेंटेशन का होना, या कोई एलर्जी इन्फेक्शन होना, तो उनकी ट्रीटमेंट्स अलग होती है। यूजुअली पिगमेंटेशन और एक्ने के ट्रीटमेंट में ये 3 बेसिक चीजों के साथ में अलग अलग मेडिकेशंस भी इंट्रोड्यूस की जाती है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो बताया आपने स्किन केयर रिजीम के बारे में, और न्यूट्रिशनल दृष्टि से अगर देखें तो किन चीजों को फॉलो करके हम एक अच्छी स्किन को पा सकते हैं?
1: देखिए, स्किन भी बॉडी का पार्ट ही है।
0: बिल्कुल,
1: न्यूट्रिशन नहीं देंगे अच्छे तरीके से तो नहीं आएगा। सो आप क्या कर सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि B12, D3 अच्छे लेवल में रहेंगे, नॉर्मल लेवल में रहेंगे, तो आपका स्किन भी अच्छा दिखेगा। आपका जिंक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्किन के लिए, तो एक बैलेंस डाइट फॉलो करना होता है। मैं यूजुअली जो पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ बैलेंस डाइट, उसमें मैं इमेजिन करवाती हूँ कि एक प्लेट इमेजिन करना चाहिए। अगर कोई वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है तो बड़ी साइज से प्लेट को छोटी साइज में कर देना होता है, ताकि आप ब्रेन को फूल कर सके। ब्रेन को बड़े प्लेट में कम खाना देंगे तो वो दिन भर हंग्री है बोल के आपको याद दिलाता रहेगा। अगर आप छोटे प्लेट में खाना खाएंगे तो सेम खाना छोटे प्लेट में ज्यादा दिखता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक बैलेंस प्लेट होना चाहिए, जिसमें कि हाफ जो प्लेट का पोर्शन रहेगा उसमें हरी साग सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स, जो भी सीजन में हमारे यहाँ लोकली जो उपजाऊ है, वो सब चीजें लेना चाहिए। बाकी जो हाफ प्लेट रहता है, उसका अपर हाफ पोर्शन जो रहता है, उसमें प्रोटीन होना चाहिए। इसमें चना, राजमा, छोला, पनीर, टोफू, कुछ भी नहीं मिला तो स्प्राउट्स, वो भी नहीं मिला तो एक बोल कर्ड, अगर वो भी नहीं मिल रहा तो सोयाबीन जो न्यूट्रेला आती है वो ले सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्स देखेंगे तो एग्स ले सकते हैं। एग्स में भी सारे येलोज ना खाएं। अगर हम 2 एग कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 एग व्हाइट लें, 1 येलो लें। अगर चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। रेड मीट यूजुअली रिकमेंडेड नहीं रहता है प्रोटीन के सोर्स में, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है। फिर जो लोअर हाफ रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का पोर्शन रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ कि या तो राइस खाए या तो चपाती खाए, दोनों ना खाए, क्योंकि कैलोरी लेवल बढ़ जाता है उससे। और जो थोड़ा सा फैट का सेक्शन रहता है, उसमें गुड फैट्स, जिसमें ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स हो, जिसमें अखरोट 1 या 2 खा सकते हैं डेली।
0: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा रहा आज का ये डिस्कशन, तो हम चाहेंगे कि आप अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहें और हमारे श्रोताओं को बता सकें बहुत सारी फायदेमंद बातें। फिलहाल आज हमारे स्टूडियो में आने का और हमसे इतनी सारी बातें करने का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, माई प्लेजर।

0: 102.2 FM रेनबो पर फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो संगिनी रंजना। और रंजना आज आपसे पूछना चाहती है कि क्या मेरे जैसा भी है कोई और? सोचिए सोचिए। नहीं सोच पाए ना, क्योंकि कोई और किसी और के जैसा हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, दुनिया में कितने सारे लोग हैं मगर सब हमसे अलग हैं, और यही अलग होना हमें बनाता है सबसे खास। और आज का दिन भी है बड़ा खास, बीइंग यू डे, यानी आपका आप होना। चलिए बहुत सारी खूबियों और खामियों के साथ स्वीकारते हैं खुद को। तो अब खुलकर कहिए जो भी कहना चाहते हैं आप हमसे। हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
2: कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ, कानपुर श्यामनगर।
2: श्यामनगर से बोल रहे हैं आप, क्या हाल है इस वक्त श्यामनगर के?
1: बहुत अच्छे हैं और मस्त हाल हैं, और वैसे ही हाल हैं जैसे पूरे कानपुर के हैं, गर्मियाँ बहुत।
2: ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स। अशोक क्या करते हैं आप?
1: मैं एक्चुअली मैं जर्नलिस्ट हूँ और राइटर हूँ, तो बस जर्नलिज्म करता हूँ, छोटा मोटा कुछ बिजनेस है उसको भी करता हूँ।
2: ओके, तो आपको बिजनेस करना ज्यादा पसंद है या जर्नलिज्म करना ज्यादा पसंद है? दोनों बहुत अपोजिट चीजें हैं।
1: हाँ नहीं बिल्कुल, एक्चुअली बिजनेस करना तो थोड़ा मजबूरी है कि पैसे भी वहाँ से आएंगे, और पैशन के तौर पे मैं पत्रकारिता करता हूँ ताकि मैं लोगों की आवाज उठा सकूँ और समाज में तमाम सारी बातों को मैं उठा सकूँ, लोगों की मदद कर सकूँ।
2: मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकारिता जो है वो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और इसको हम व्यवसाय के रूप में ना देखें तो ही बेहतर है। और जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों की आवाज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपने क्यों चाहा, क्यों चुना आपने ये फील्ड ही, क्यों चुनी?
1: वो फील्ड मैंने जनरली इसीलिए मैंने चुनी कि पहला तो ये था कि आप बिजनेस करके हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सोशल जो अपनी एक पहचान है वो बनाना, और फिर एक मन में एक जज्बा था कि तमाम सारी ऐसी जो बातें हम समाज में देखते थे वो उस पे हम लड़ कैसे सकें, तो लड़ने के लिए जो माध्यम चाहिए था वो पत्रकारिता से ज्यादा अच्छा मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो फिर मैंने पत्रकारिता को

0: चुना, फिर पत्रकारिता पढ़ने भी गए, बहुत लेट में हमने पत्रकारिता की, तो फिर हमने इसको एज ए पैशन अपना मैंने बना लिया और फिर इसमें बहुत मजा आने लगा तो फिर पत्रकारिता करने लगे।
1: ये बताइए कि अगर आप बुराई के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, विरोध प्रकट करना चाहते हैं, तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, पुलिस में जा सकते हैं, वकील बन सकते हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, आपने जर्नलिज्म को ही क्यों चुना?
0: पत्रकारिता में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ हमारे पास लीगल कुछ लिमिट्स होने के अलावा हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं है कि हम कितना बोल सकते हैं और कितना किस एंगल से उस एजेंडे को हम चला सकते हैं और दिखा सकते हैं, हमारी कोई लिमिट्स नहीं है।
1: इसमें आपको पूरी तरह से आजाद

0: आपने जर्नलिज्म को ही क्यों चुना?
1: पत्रकारिता में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ हमारे पास लीगल कुछ लिमिट्स होने के अलावा हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं है कि हम कितना बोल सकते हैं और कितना किस एंगल से उस एजेंडे को हम चला सकते हैं और दिखा सकते हैं, हमारी कोई लिमिट्स नहीं है।
0: इसमें आपको पूरी तरह से आजादी है काम करने की, अपनी बात रखने की और बोलने की।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, ये माध्यम हमारा ठीक है। ये जो हौसला था हमें लोगों के प्रति लड़ने का, उनकी आवाज उठाने का, तो उस हौसले ने मुझे इसमें उड़ान हमें इसी में नजर आई कि हम पत्रकारिता करेंगे।
0: लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब हम इस तरह का काम करते हैं और निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहते हैं तो हमारे जो अपने हैं उनकी नाराजगी भी हमें झेलनी पड़ती है।
1: बात यह है कि तमाम सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूं तो बहुत सारे उनके लिए फायदे में पहुंचा सकता हूं, उनके हिसाब से मैं काम कर सकता हूं। लेकिन जब नहीं होता उनके हिसाब से तो बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी नाराजगी एक तरफ, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं, परफेक्ट हूं, मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूं, तो मैं जैसा हूं वैसे ही तो मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ।
0: बिल्कुल, अपनी आवाज आप बुलंद रखेंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। अशोक, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप जैसे हैं परफेक्ट हैं और ऐसे ही रहेंगे। और आज देखिए ना, हम मना रहे हैं बीइंग यू डे, यानी कि आपका आप होना।
1: जी
0: तो अच्छा बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बिल्कुल, मैंने जैसे बोला कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वीर जारा का जो गाना है, बस उसी को सुना दीजिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके लिए कंफर्टेबल है
0: इस मौके के लिए।
1: जी जी
0: थैंक यू सो मच अशोक फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू रंजना जी।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मदन जी, अर्जुन बोल रहे हैं।
0: अर्जुन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मदन जी मवैया से बोल रहे हैं।
0: मवैया से? ये कहाँ पड़ता है?
1: ये सीलिक पास।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी, हम यहाँ पर मतलब खेत करते हैं, खेती करते हैं।
0: खेती करते हैं? तो आजकल किस फसल की तैयारी चल रही है या क्या बोया हुआ है आपने फिर खेतों में?
1: मैडम जी, खेतों में मक्के की मतलब तैयारी चल रही है। मक्के की,
0: मक्के की? और धान कब लगाएंगे?
1: धान की भी तैयारी चल रही है।
0: अच्छा, तो धान के बीज बो दिए गए हैं अभी या अभी बस बोने की तैयारी हो रही है?
1: वो दिए गए मतलब बेड़े लग गई है, और जब मतलब तैयार हो जाएगी तब लगा दी जाएगी।
0: अच्छा, पौधे मतलब आपने तैयार कर लिए हैं और जब बारिश होगी तब आप खेत तैयार करके उसमें पौधों को रोप देंगे?
1: जी
0: बहुत बढ़िया। और खेती के लिए क्या करते हैं आप? कुछ नई नई चीजें कुछ ऐसा वहां पर इस्तेमाल करते हैं कि आपकी पैदावार और बढ़ जाए?
1: जी मैडम जी, जो मतलब जिस समय मतलब काम किया जाता है उस समय काम अच्छा किया जाता है, इसीलिए मतलब पैदावार बढ़ सकती है बस।
0: जी बिल्कुल, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें अपना 100% देना चाहिए, है ना?
1: जी
0: अच्छा, कैसा लगता है आपको खेती बाड़ी का काम करना?
1: मैडम जी, ठीक, अच्छा लगता है। हाँ,
0: अच्छा लगता है, लेकिन
1: ठीक
0: सुनते हैं
1: लगता
0: कि
1: है। जी
0: बहुत मेहनत का ये काम है।
1: मैडम जी, मेहनत भी लगती है उसमें, और क्या कहते हैं कि समय भी लगता है।
0: समय भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन इसका जो नतीजा निकलता है, इसका जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत सुखद होता है। तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अर्जुन बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम जी, एक शायरी सुनाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल सुनाएं इरशाद।
1: प्यार दरिया है जिसका साहिल नहीं होता, हर दिल मोहब्बत के काबिल नहीं होता, रोते वो भी हैं जो डूबे हैं इश्क में, और रोते वो भी हैं जिन्हें प्यार हासिल नहीं होता। मैडम जी, मुद्दत फिल्म का गाना सुनना है, प्यार हमारा अमर रहेगा। सुनिए
0: ठीक है अर्जुन,
1: गाना।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: हमारे डेडिकेशन करना चाहते हैं
0: जरूर करें।
1: सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू। और इसके बाद साहब कॉल कट गई, लेकिन इनकी फरमाइश हमारे पास आ चुकी है, तो सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कानपुर,
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं यासिर अमीन बात कर रहा हूँ, यासिर अमीन मियांगंज जिला उन्नाव से।
0: क्या मतलब हुआ यासिर का?
1: यासिर का मतलब होता है आसान।
0: आसान, क्या बात है।
1: जी,
0: तो हमारी दुआ है कि जिस तरह से आपका नाम आसान है, उसी तरह से आपकी जिंदगी भी बेहद आसान और खुशनुमा हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं तो एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और साइट पर भी काम करते हैं।
0: साइट पर काम करते हैं, तो
1: जी
0: जहां पर
1: बिल्कुल
0: कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहां की आप सारी टेस्टिंग, वायरिंग और सारा, मतलब बिजली का सारा इंतजाम करते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आजकल ना टेम्परेचर इतना हो गया तो पैनल भी घरों पर जैसे रखे जाते साइड पर, तो वो भी सेट करना पड़ता है। तो
0: तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि आप लोगों के घरों को रोशन करते हैं तो ये गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही बात है, बेशक।
0: अच्छा, ये बताइए यासिर, कि अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं होते तो
1: जी
0: कभी सोचा है कि क्या होते, क्या करते?
1: इलेक्ट्रीशियन ना होते तो फिर ये सिलाई का काम है ना, स्टिचिंग वगैरह,
0: तो
1: और
0: आपको
1: सिलाई
0: पसंद
1: से
0: है
1: क्या
0: सिलाई का
1: करूँगा।
0: काम करना, आपको पसंद
1: हाँ
0: है?
1: अच्छा लगता है।

0: लगता है।
1: घर में कोई करता है ऐसा काम?
0: हाँ मेरी जो सिस्टर है ना वो लोग करती है।
1: तो अब ये बताइए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम ज्यादा अच्छा लगता है या आपको सिलाई का काम ज्यादा अच्छा लगता है?
0: नहीं अभी तो फिलहाल ये कर रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ना बोरिंग सा महसूस होता है
1: अच्छा, ऐसा क्यों?
0: ऐसा ही, क्योंकि दौड़ना भागना भागने वाली जिंदगी है ना इसका, तो बहुत बहुत जाना इधर उधर बहुत जाना पड़ता है,
1: फील्ड
0: तो
1: वर्क हो
0: इसीलिए
1: जाता है, एक साइड से दूसरी साइड
0: जी
1: पहुंचना होता है।
0: जी कई कई घर कवर करने पड़ते हैं ना, तो इसलिए बहुत दिक्कतें होती हैं
1: थकान बहुत हो
0: और
1: जाती होगी।
0: जी थकान बहुत हो जाती है, और फिर जिसके घर में ना भी जाओ तो भी दिक्कत होती है,
1: बिल्कुल।
0: ध्यान नहीं रहे, और कॉलेज वगैरह में भी जाना पड़ता है, बड़े बड़े कॉलेज वगैरह में भी जाना पड़ता है।
1: अच्छा, जब आप काम कर रहे
0: जी
1: होते हैं और उस दौरान आपको लगता है कि माहौल थोड़ा बोरिंग सा हो गया है, तब क्या करते हैं? तो उस बोरियत को दूर भगाने के लिए कौन सा साथी होता है आपके साथ?
0: सुकून मुझे बहुत अच्छा लगता
1: ये
0: है
1: सुकून आपको कहाँ से मिलता है?
0: सुकून मिलता है, मतलब जैसे बैठे हैं तो किसी की याद आई ना उसी में थोड़ा मुकिला है
1: ओहो, तो यादों में गुम हो जाते हैं।
0: जी।
1: अच्छा, आपने हमें कॉल किया है हेलो कानपुर के लिए, तो आप ये भी तो
0: रेडियो
1: बताइए कि रेडियो कब सुनते हैं?
0: देखो रेडियो चला करता है, काम हुआ करता है, तो
1: अच्छा, कोई ऐसा
0: जी।
1: स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हम रेडियो ऑन करें, कि हम बोर हो रहे हैं तो रेडियो ऑन करें, या हम किसी की यादों में खो रहे हैं तो रेडियो ऑन करें?
0: जी क्योंकि रेडियो हम बचपन से सुनते चले आए, बहुत अच्छा लगता है, और जब कॉल लगती तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है,
1: अरे वाह, मतलब बचपन का साथी अब तक आपके साथ है,
0: साथ है
1: क्या बात है।
0: बिल्कुल
1: तो इसी बात पर बता दीजिए, आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो अब हम आपको सुनवा दें?
0: जी। मुझे सॉन्ग सुनना है, मूवी का नाम है सुहाग,
1: ठीक है,
0: मैं बोलू ना बोलू तुम, मैं देखू ना देखू तुम मुझे देखो, ये सॉन्ग है अलका याग्निक एंड उदित नारायण जी की आवाज में
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी। मुझे डेडिकेट भी करना है ये सॉन्ग,
1: बिल्कुल, जरूर करें।
0: सबसे पहले तो आप हो गई,
1: बहुत शुक्रिया।
0: और मेरी नीलू दीदी हैं और रोशनी दीदी हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को,
1: जरूर सुनवाते हैं और हम सभी सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। थैंक यू सो
0: ओके
1: मच।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
0: जी हाँ, कौन बोल रहे हैं?
1: हम सर्वेश कुमार बोल रहे हैं।
0: नमस्ते सर्वेश, कैसे हैं?
1: हम ये कह रहे हैं, हम गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन ये बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अकबरपुर।
0: अकबरपुर से बोल रहे हैं। सर्वेश, क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करते हैं।
0: खेती किसानी करते हैं, तो इस समय क्या लगाया हुआ है खेत में?
1: अभी धान की बेल पड़ी है।
0: धान की बेड़ लगाई है, मतलब धान के पौधे बो दिए गए हैं, बीज बो दिए हैं। कैसा लगता है खेती करना आपको सर्वेश?
1: बहुत अच्छा लग।
0: कितना समय लग जाता है लगभग इसमें?
1: एक फसल में 3 महीने 4 महीने लग जाता है।
0: 4 महीने में धान की फसल तैयार हो जाती है, तो इसका मतलब अक्टूबर में हमें नई धान, नया चावल मिल जाएगा।
1: मिल जाएगा।
0: अच्छा, दिन के कितने घंटे देते हैं आप खेती करने में?
1: इस समय तो जान इतने कि 24 घंटे भी नहीं पड़ते हैं। बाहर रहो, देखभाल करो, तभी तो हो जाती है, नहीं तो नुकसान हो जाता है। जानवर चर जाते हैं तो होता कुछ नहीं है।
0: अच्छा, तो 24 घंटे आप खेतों पर रहते हैं?
1: जी।
0: बड़ा मुश्किल जीवन है ये तो, या मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है?
1: अच्छा लगता है मुझे तो।
0: अच्छा,
1: रहना
0: हाँ
1: होता है।
0: हाँ क्या बात है। अच्छा, बहुत खूबसूरत काम हो जाता है वो, जो आपकी चॉइस का हो, आपकी पसंद का हो, है ना?
1: जी, हमारी चॉइस यही है बस, और हमारा कोई नहीं, बस अपना गल्ला पैदा होता है और सभी लोग उसमें हाथ बटाते हैं, घर के लोग।
0: हाँ हाँ
1: अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो जितना गल्ला पैदा होता है उतना वो घर परिवार को पूरा पड़ जाता है।
1: पड़ जाता है और बेच लेते हैं।
0: क्या बात है, बढ़िया, बड़े किसान हैं इसका मतलब आप।
1: इनकम भी अच्छी हो जाती है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो और लोग हैं, जो हमारे शहरी भाई हैं, जो खेती और किसानी से दूर भागते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: हम तो यही कहते हैं, अपने घर पर रहें, और अगर खेती है तो अपनी खेती में लगे रहें तो और अच्छी बात होगी। उससे पैदा भी अच्छा होगा, खाने को भी अच्छा मिलेगा। और हम तो ये खाद वगैरह डालते नहीं, हम तो देसी खाद, गोबर की पांस डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप ऑर्गेनिक पैदावार कर रहे हैं।
1: जी, और हम कोई रासायनिक पदार्थ नहीं डालते हैं, और जो खरपतवार होता है उसकी निकाई गुड़ाई करा देते हैं और अच्छे से

0: फसल बहुत अच्छी पैदा होती है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सर्वेश।
0: ये होता है कि ये दवा डालने से जो हमारे दोस्त हैं केचुआ ये सब मर जाते हैं, तो उससे फसल पैदा कम होती है।
1: हाँ, और कहीं ना कहीं वो हमारे उन खाद्य पदार्थों में भी आ जाते हैं जो हमारे शरीर में पहुँचते हैं।
0: जी, तो ऐसा मुझे अच्छा लगता है। और खाने में भी अगर ये रासायनिक खाद ना हो, ये लियो खाद पास आपको, इसमें खाने में का स्वाद अलग बढ़ जाता है। अनाज का कोई भी अनाज हो उसमें अच्छा स्वाद आता है।
1: हाँ बिल्कुल। तो आप मतलब खाद किस तरह की इस्तेमाल करते हैं? गोबर की खाद?
0: गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, और उसमें ये थोड़ा ये नहीं खली, लाही की, सरसों की खली उसमें डालते हैं।
1: सरसों की खली, क्या बात है।
0: बहुत अच्छी पैदा है। ठीक है, मैं 15-16 क्विंटल धान हो जाता है।
1: बहुत बढ़िया। तो अगर मान लीजिए कहीं फसल में कोई कीड़ा लग रहा है, कोई बीमारी हो रही है, तो आप क्या करते हैं? तब तो आपको केमिकल्स का सहारा लेना पड़ता होगा।
0: नहीं पड़ता है।
1: अच्छा,
0: उसके लिए गुड़ है, गुड़ का है, सीरा बना लो, बढ़िया उसका छिड़काव कर, चींटियां होती है तो खा जाती है चींटियां।
1: हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो इसी बात पर बताएं सर्वेश, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
0: प्रेम रोग का भौरे ने खिलाया फूल फूल फूले जा रात में।
1: ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी, डेडिकेट आपको करना चाहते हैं और सभी श्रोताओं को करना चाहते हैं, जितने सुन रहे हैं अपने घर परिवार को, सभी को।
1: बिल्कुल, सभी श्रोताओं के साथ हम भी सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर। हाँ जी
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सत्यनारायण त्रिपाठी।
0: सत्यनारायण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कानपुर से, IIT कानपुर।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं।
0: क्या बात है, तो गाड़ी जब चला रहे होते हैं तब तो आपका FM ऑन रहता होगा।
1: हाँ जी, हम रहता चलते रहते, धीमे आवाज में सुना करते हैं।
0: अच्छा, तो आपके साथ जो बैठे होते हैं उन्हें कभी समस्या नहीं हुई? उन्होंने कभी एतराज नहीं किया कि आप हर वक्त
1: नहीं
0: FM रेडियो
1: नहीं
0: चला कर रखते हैं?
1: वो तो तेज बजाते हैं, हम कहते नहीं धीमे बजाते।
0: अच्छा, मतलब जब आप FM चलाते हैं तो उनको और ज्यादा आनंद आता है।
1: हाँ वो तो बहुत तेज आवाज में सुनते, मगर हमको डिस्टर्ब होता है तेज आवाज में।
0: आपको ड्राइविंग करते समय समस्या होती होगी?
1: हाँ थोड़ा धीमे आवाज में रहता है तो मतलब पता चलता है गाड़ी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, आवाज नहीं है, बाहर कोई हॉर्न दे रहा है, क्या
0: बिल्कुल।
1: है, तो ये सब धीमे आवाज में अपना सुनते रहते हैं, सही रहता है।
0: ठीक बात है। अच्छा, धीमी आवाज में क्या होता है कि आप म्यूजिक का आनंद भी ले रहे होते हैं और आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको वो भी पता चल रहा होता है।
1: हाँ जी
0: और एक ड्राइवर के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो फोकस करे अपनी ड्राइविंग पर, रास्ते पर देखे और साथ भी दाएं बाएं से कौन आ जा रहा है उसका भी ख्याल रखे।
1: हाँ जी हाँ चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है।
0: जी, तो आपका जनरल रूट क्या रहता है डेली का?
1: हम तो डेली वैसे जाते हैं कन्नौज, ग्रामीण क्षेत्र में BSC है
0: जी,
1: जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसी में जाते हैं डॉक्टर साहब को लेकर। हाँ
0: और उसके बाद आप कन्नौज में पूरे दिन रहते होंगे?
1: पूरे दिन क्या 2 बजे तक रहते हैं, सुबह 10 से 2 तक खुलता है अस्पताल।
0: अच्छा, जब आप डॉक्टर साहब को वहां ड्रॉप कर देते हैं तो वो टाइम जो आपका बीच में बचता है उस वक्त क्या करते हैं?
1: वहीं रहते हैं हम भी, अब इतनी दूर कहाँ आ जाएंगे। हाँ
0: जी बिल्कुल, तो उस दौरान भी आप रेडियो सुन रहे होते हैं?
1: नहीं उस टाइम तो नहीं सुनते हैं कि वो गाड़ी में लगा है, तो गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, फिर मोबाइल में सुनते हैं।
0: अच्छा सत्यनारायण जी, कभी आपने ये सोचा है कि ड्राइवर बन गए हैं, इसके अलावा कुछ और कर सकते थे, कुछ इससे बढ़िया कर सकते थे, कभी ये ख्याल आया?
1: हाँ सोचा है।
0: जी
1: हाँ ये है, पहले तो मालूम नहीं देता है, पहले
0: जी
1: हम पढ़ते थे IIT सेंट्रल स्कूल में,
0: अच्छा
1: तो पढ़ाई में तब मन नहीं लगा, तो पढ़ाई छोड़ के सोचे ड्राइवरी सीख ले, देखते थे सबको गाड़ी चलाते, तो वही फिर आदत अब समझ में आता है कि हाँ नहीं अगर कुछ और बन जाते तो उससे अच्छा होता।
0: लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही बढ़िया हैं?
1: हाँ वो तो है ही, अब जो है सो है, बहुत तो हम लोगों से भी गए बीते हैं।
0: क्योंकि कई बार जब हम तुलना करते हैं अपने से बेहतर लोगों की तो थोड़ा सा अंदर एक अवसाद आ जाता है, बुरा लगता है।
1: हाँ मगर ये है सब ठीक ठाक चलता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब करीब करीब समझ लो 60 साल उम्र हो गई हमारी, फिर
0: जी,
1: भी हम अपना सब काम किया कर।
0: अच्छा, जब आप ड्राइविंग की ओर आए तो इसका मतलब है कि आपको ड्राइविंग करने में भी मजा आता होगा?
1: हाँ ड्राइविंग में मजा तो आता ही है, जगह जगह घूमना, कभी कभी नोएडा जाते हैं, कभी मतलब आज UP तो घूमे हैं और बाहर भी गए हैं, फिर गुवाहाटी आसाम पहले बहुत, और दिल्ली आगरा ये सब UP तो पूरा घूमे थोड़ा।
0: पूरा यूपी देखा है आपने। सबसे
1: हाँ
0: खूबसूरत शहर आपको यूपी का कौन सा लगा?
1: सबसे खूबसूरत तो ऐसे हमारी समझ से कानपुर से तो लखनऊ हो सही है।
0: लखनऊ अच्छा है,
1: हाँ
0: सिस्टमैटिक है।
1: सफाई के मामले में।
0: अच्छा ये बताइए, अब तक की सबसे लंबी ड्राइव आपने कौन सी की है?
1: और नोएडा भी बढ़िया है,
0: जी
1: सबसे लंबी तो हमने की है जैसे आसाम गुवाहाटी गए हैं, इधर बॉम्बे गए हैं, ये सबसे लंबी है। हाँ
0: आपने जैसे बताया सत्यनारायण जी कि आपकी उम्र लगभग 60 साल की हो गई है,
1: जी
0: तो अब जो है आपका शरीर और आपका जो दिमाग है वो क्या कहता है कि कितने किलोमीटर आप बिना ब्रेक के चला सकते हैं?
1: अभी तो हम चला सकते हैं कम से कम 400-500 किलोमीटर से चला सकते।
0: भाई धांसू ड्राइवर हैं आप।
1: हाँ जी
0: तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: अब गीत हमको सुना दीजिए। ये तो सच है कि भगवान है फिर भी हम अंधे।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और हमारा एक लड़का है अमन त्रिपाठी, हमारी वाइफ है शीलू त्रिपाठी,
0: आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और आपको भी।
0: थैंक यू सो मच।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते
1: मैडम जी, अंकित बोल रहे हैं घाटमपुर से।
0: कैसे हैं अंकित?
1: अच्छे हैं मैडम जी, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आप क्या करते हैं?
1: मैडम जी गाड़ी चलाते हैं, ट्रक है हमारे पास।
0: अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? नॉर्मली क्या रूट रहता है आपका?
1: मैडम जी लखनऊ से भोपाल।
0: अच्छा, और जब थक जाते हैं ड्राइव करते हुए उसके बाद क्या करते हैं?
1: मैडम जी वैसे तो मान लो इतनी जल्दी नहीं थकते हैं, मतलब जब थक जाते हैं तो मतलब क्या कहते हैं कि आराम कर लेते हैं, इसके बाद फिर गाड़ी पर
0: अच्छा,
1: चलाने लगते हैं।
0: खाली समय में क्या करते हैं अंकित?
1: खाली समय पर मैडम जी क्या है तुम्हारा मतलब इतना कानपुर?
0: हेलो कानपुर सुनते हैं। इसके अलावा और क्या प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं आपको हमारे?
1: हेलो कानपुर मॉर्निंग प्रोग्राम और हेलो फरमाइश उजाले उनकी यादों के गाने तराने, गुड इवनिंग।
0: वाओ, अच्छा, इतने सारे प्रोग्राम्स के बीच में आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है?
1: क्या कहते हैं फोनिंग प्रोग्राम हेलो फरमाइश।
0: ओके,
1: जो आपकी फरमाइश आती है।
0: हाँ, जो भी फरमाइशी प्रोग्राम्स हैं वो आपको पसंद आते हैं
1: जी?
0: ऐसा क्यों?
1: अच्छे लगते हैं, फरमाइश लगी होती है ना अपनी अपनी पसंद।
0: तो आज कौन सा गीत है आपकी पसंद का?
1: मैडम जी वो सुनवा दो फिर भी, तुमका एक मुलाकात जरूरी है।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: डेडिकेट करना चाहते हैं मैडम
0: जी? हाँ जरूर करें।
1: सबसे पहले आपको
0: जी थैंक यू।

0: हेलो कानपुर,
1: हेलो
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सोनू,
0: सोनू क्या करते हैं?
1: परचून की दुकान है, मतलब
0: कहाँ पर है ये परचून की दुकान आपकी?
1: घाटमपुर।
0: घाटमपुर। तो आपके घर से कितनी दूर है?
1: घर से 500 मीटर है
0: पास में ही है।
1: जी।
0: खाली समय में क्या करते हैं सोनू?
1: मैडम जी, खाली समय में क्या करते हैं, मतलब बस ऐसे ही कुछ गाने सुना करते हैं, गाने याने।
0: अच्छा, और शौक क्या है आपके?
1: हम्म,
0: और शौक क्या है आपके? हॉबीज क्या है आपकी
1: और रेडियो सुनते हैं,
0: इसके अलावा?
1: और कुछ नहीं मैडम जी,
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बत्ती गुल में चालू फिल्म का है एक गाना है, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, लापता हो गए देखते देखते।
0: ठीक है सोनू, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: और मैडम जी, डेडिकेशन करना चाहते हैं,
0: बिल्कुल कर लीजिए।
1: रोहित है, विजय है, सूरज है और आकाश
0: ठीक है, आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

और देखिए बातों बातों में ये खूबसूरत सफर आ पहुंचा है अपने अंतिम पड़ाव पर। लेकिन इन बातों बातों में आपसे आज हमने बहुत कुछ नया सीखा, जाना कि हर इंसान अपने आप में अनोखा है।

किसी की सादगी उसकी ताकत है तो किसी का श्रृंगार उसकी पहचान, किसी का कॉन्फिडेंस उसकी संपत्ति है तो किसी की खूबसूरती है उसकी मुस्कान। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर। अब तक मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो संगनी रंजना और आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया राहुल पाल ने, तकनीकी सहयोग दिया शोभित और DB सिंह ने।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में हुए बदलावों से शासन और प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों नागरिकों का जीवन अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमामय बनाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए कहा कि जनता का विश्वास सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्री गोयल ने अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष के दौरान सुशासन, जन कल्याण और गरीबों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की यात्रा का उल्लेख किया है। प्रदेश में 1,25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला ललन सिंह पर कई आपराधिक मामले थे। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट तथा सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। घटना के दौरान उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। लखनऊ में काकोरी स्थित भगवान श्री पार्श्वनाथ धाम अमेठिया सलेमपुर में 24 जून से 29 जून तक भव्य धार्मिक समागम होने जा रहा है। सगल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में भगवान आदिनाथ की 21 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक ब्रजेश जैन बंटी ने बताया कि इस 6 दिवसीय महोत्सव के दौरान विश्व शांति महायज्ञ और भव्य महामस्तकाभिषेक का भी आयोजन होगा, जो क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति का संदेश देगा। और जौनपुर में विकासखंड रामपुर स्थित अटल आवासीय परिसर में आयोजित जन चौपाल में प्रदेश के मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन पात्र व्यक्तियों के पास आवास नहीं है, उन्हें आवास योजना से लाभान्वित किया जाए। साथ ही पात्र लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गांव को पेयजल, सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से पूर्ण रूप से आच्छादित करने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ, जिस पर अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे FM Top 10।

0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर है। फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
3: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में
2: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
3: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
2: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
3: जरीदार जलवे जमा अंजुमन।

0: दोस्ती की खुशबू मोहब्बत के मुंह में।
1: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
0: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
1: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
0: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
1: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
0: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
0: 100.7 FM रेनबो।
3: कीप लिसनिंग 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, धड़कन लखनऊ की लेकर आ गया है सर्वेश आपके पास, और प्रोग्राम है एफएम टॉप 10, जिसमें हम सुनवाते हैं आपको टॉप 10 सॉन्ग्स। वो अलग बात है कि टॉप 10 सॉन्ग्स की कभी थीम अलग होती है, उसका कंटेंट कुछ अलग होता है, और आज ऐसा ही मैं 10 गाने ढूंढकर वो गाने लेकर आया हूँ जो सबसे ज्यादा सुने और देखे गए हैं, और एक गाना मैंने लगा भी दिया, बेख्याली फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। इस गाने की बात करूंगा, लेकिन पहले गाना सुनिए आप।

FM Top 10 सुन रहे हैं आप, और इसमें हम बात कर रहे हैं उन गानों के जिन्हें सबसे ज्यादा YouTube पर देखा जा गया है और बहुत ज्यादा सुना गया। उन्हीं में से 10वां गाना मैंने आपके लिए लगा दिया है। धीरे धीरे गाना नंबर 1 तक आएंगे, सुनते रहिए आप।

और इस बेख्याली सॉन्ग को गाया है सचित टंडन ने, लिरिक्स इरशाद कामिल, और भाई म्यूजिक भी सचित और परंपरा का है। 633 मिलियन बार ये गाना देखा गया है यूट्यूब पे।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

सॉन्ग नंबर 10 आप सुन चुके हैं. जी हाँ, बेख्याली फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह. और अब बात आती है सॉन्ग नंबर 9 की, जो उसके बाद सबसे ज़्यादा देखा गया है, यानी कि सॉन्ग नंबर 10 के बाद धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना. हालांकि ये गाना आशिकी मूवी का है, लेकिन यो यो हनी सिंह साहब ने इस गाने को कहते ना कि फिर से जिंदा कर दिया है. म्यूज़िक भी उन्हीं का है, लिरिक्स भी उन्हीं के हैं. विपुंदर कौर जी ने भी कुछ लिरिक्स लिखे हैं इसके. सुनिए गाना यो यो हनी सिंह के स्टाइल में.

ये आपसे हम मिल भी चुके हैं और आपको बता भी रहे हैं कि टॉप 10 सॉन्ग्स आज कौन से हैं जो सबसे ज्यादा गाने देखे गए हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और जिन गानों को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। तो भाई आपने 10वां गाना सुना, सॉन्ग नंबर 9 भी सुन लिया, अब बात आती है सॉन्ग नंबर 8 की। जी हाँ, स्वैग से स्वागत, टाइगर जिंदा है। विशाल डडलानी साहब की आवाज और उन्हीं का म्यूजिक और लिरिक्स हैं इरशाद कामिल साहब के। तो सुनते हैं स्वैग से स्वागत।

करेंगे सबका स्वागत। जी हाँ, स्वागत से करेंगे सबका स्वागत और आप सभी का स्वागत करूँ 100.7 FM रेनबो पर। और ये फिल्म जो थी, बार बार देखो, इस फिल्म को तो नहीं देखा लोगों ने बार बार, लेकिन इस गाने को बहुत बार देखा गया, काला चश्मा, अमार अर्शी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाज, लिरिक्स अमरीक सिंह एंड कुमार के और म्यूजिक प्रेम हरदीप एंड कम ढिल्लन का। इस गाने को सुनते ही पैर अपने आप चलने लगते हैं। आपके चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे तो चलाइए ना, और सुनते रहिए FM Top 10।

0: जी हाँ, वही गाना आ गया ना, आंख मारे। ये गाना वैसे आया था पहले तेरे मेरे सपने फिल्म में, लेकिन उसके बाद रिक्रिएट हुआ और फिल्म सिम्बा में आया। मिक्का पाजी, नेहा कक्कड़ और कुमार सानू जी का भी आवाज आपको सुनाई देती है। और आपको बता दूं, ओरिजिनल इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, म्यूजिक दिया था विजू शाह जी ने, लेकिन बाद में बख्शी ने। तो चलिए सुनते हैं ना गाना नंबर 6।
1: सड़क पे नखरे जाए होकर के इशारे हो लड़की।

FM Top 10 पे आप सुन रहे हैं सर्वेश को, और मैं आज लेकर आया हूँ वो गाने जो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं और सुने गए हैं। और ये आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे नेहा कक्कड़ जी की, साथ ही साथ इनके भाई साहब हैं टोनी कक्कड़। फीवर फिल्म का ये गाना बहुत ही 1.3 बिलियन बार देखा जा चुका है।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड
0: MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: सात हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: हेलो FM,
6: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
7: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर,
8: व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
9: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
5: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
10: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
11: शाम होने को है।
10: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहाँ हर

0: घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
1: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
2: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
3: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
2: ओनली 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ, जिसे हर दिल गुनगुनाए, और उन गानों की ही बात कर रहा हूँ जिसे आप गुनगुनाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं और बहुत ज़्यादा देखते हैं। उन गानों की ही चर्चा कर रहा हूँ आज के एस एफ एम टॉप टेन में। सर्वेश को सुन रहे हैं आप, और वो गाने जो हमें लगता है कि एक बार सुन लें, दो बार सुन लें, तीन बार सुन लें या बार बार सुन लें, मन ही नहीं भरता, उन्हीं गानों की चर्चा कर रहा हूँ। दसवें नंबर पर आपने गाना सुना कौन सा? जी हाँ, दसवें नंबर पर आपने सुना गाना बेख्याली फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह, और नौवें नंबर पर गाना सुना आपने धीरे धीरे यो यो हनी सिंह की आवाज में। उसके बाद गाना नंबर आया आठवां, स्वैग से स्वागत फ्रॉम द मूवी टाइगर जिंदा है, विशाल डडलानी साहब की आवाज और उन्हीं का म्यूजिक। सातवें नंबर पर आपने सुना काला चश्मा फ्रॉम द मूवी बार बार देखो, और छठे नंबर पर सुना आंख मारे फ्रॉम द मूवी सिम्बा। पांचवें नंबर पर मिले हो तुम हमको फ्रॉम द मूवी फीवर, टोनी और नेहा कक्कड़ की आवाज में। और अब जो बारी आ चुकी है, जी हाँ, पुराना गाना आया था फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, सुष्मिता सेन ने क्या डांस किया था उस दौर में। लेकिन उसके बाद इस गाने को रिक्रिएट किया गया और इस गाने के बोल लिखे शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया तनिष्क बागची साहब ने। हालांकि जो ओरिजिनल लिरिक्स थे, जो ओरिजिनल गाना लिखा गया था, वो समीर साहब ने लिखा था, और वो गाना भी बहुत सुना गया और बहुत देखा गया। नो डाउट नोरा फतेही जी ने अगर डांस किया नए वाले दिलबर दिलबर पर, तो पुराना वाला अगर आपको भी फुर्सत हो उस गाने को देखिएगा। सुष्मिता सेन भी जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी डांस में और साथ ही साथ एक्सप्रेशंस में भी। फिलहाल नया वाला दिलबर दिलबर फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते।

0: की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: प्यार होंदा फिर व्या
4: हूं तो किदे नाल प्यार करना
5: तो ये जो गाना आप सुन रहे हैं ना, इसको 1.6 बिलियन बार देखा जा चुका है। मन्नत नूर की आवाज और पंजाबी तड़का आप कह सकते हैं, लौंग लाची। तो भाई इस गाने को सुनिए, बहुत सुना जा रहा है, मैं भी बहुत सुनता हूँ, आप भी सुनिए। 100.7 FM रेनबो पर।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

जी हाँ, निखिल डिसूजा और धोनी भानुशाली की आवाज़ 1.7 बिलियन बार देखा गया, बहुत बार देखा जा रहा है और आगे भी देखा जाएगा। लिरिक्स अराफात महमूद के और म्यूजिक तनिष्क बाग्शी का। सुन रहे हैं आप FM Top 10।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार,
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है आश के जगह,
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
8: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
9: शाम होने को है।
8: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास
10: के

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो।

0: धड़कन लखनऊ की।
1: अब आखिर तक आ चुका है 5:54 का वक्त और सॉन्ग नंबर 1 यानी टॉप सॉन्ग ऑफ दिस वीक, जो गाना सबसे ज्यादा अभी तक देखा गया है, उस गाने को सुनवाने का वक्त आ चुका है। और गाने के बोल हैं जरूरी था, याद आया ना, कुछ याद आया? राहत फतेह अली खान साहब और उनका एल्बम बैक टू लव। चलिए सीधे गाने सुनते हैं और इसको सबसे ज्यादा देखा गया है अभी तक और सुना गया है।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इस दौरान दूसरे तल पर चल रहे एनिमेशन सेंटर को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक 13 शवों को बाहर निकाला गया है। कई लोगों के घायल होने का भी समाचार है। लखनऊ में हुई आग की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है तथा प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बीच मौके पर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, अभी कुल 13 बच्चों को बाहर निकाला गया है। इस घटना में घायल हुए बच्चों को अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। श्री पाठक ने अग्निकांड के कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जी अपना अलीगढ़ दौरा रद्द कर लखनऊ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में हुए बदलावों से शासन और प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों नागरिकों का जीवन अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमामय बनाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए कहा कि जनता का विश्वास सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्री गोयल ने अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष के दौरान सुशासन, जनकल्याण और गरीबों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की यात्रा का उल्लेख किया है। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चलने से जनपद पीलीभीत सहित लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य, व्यापार व पर्यटन भी बढ़ेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: FM.
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
2: What is mobile number? What is your smile number? What is your style number? करो क्या dial number?
3: हेलो, आप असम रेमो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.

जी हाँ, आप हमारे दीवाने हैं और हम भी आ चुके हैं आपकी दीवानगी में शामे और लेकर 6:04 का वक्त। और ये बताइए, आज आपने योगा किया कि कल योगा डे के दिन योगा करके उसको निपटा दिया? भाई डेली योग करिए और डेली स्टेटस लगाइए। चलिए आता हूँ इस गाने के बाद, सुनते रहिए शामे अवध।

ये बताइए, आज आपने योगा किया कि कल योगा डे के दिन योगा करके उसको निपटा दिया? भाई डेली योग करिए और डेली स्टेटस लगाइए। चलिए आता हूँ इस गाने के बाद, सुनते रहिए शाम अवध।

जी, आप सभी सुनने वाले हमारे दीवाने हैं श्री गणेशाय नमो डॉपडन कार्यक्रम और जो प्रोग्राम भी शामिल हो चल रहे हो भी इनको बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, रामराज जी का मेल आ चुका है। जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से बहुत सारे नाम हैं। पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद नाम भी पढ़ेंगे आपका।

शाम का जो माहौल है ना वो नजर आने लगता है। वैसे गर्मी और लू का प्रकोप जो है दिन में बहुत बढ़ जाता है, और ये भी है कि आने वाले 3-4 दिनों में इससे कोई राहत आपको मिलने वाली नहीं है। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ अपना पूरा ख्याल रखें, और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना ही निकलें। वैसे मैं बात कर रहा था, कल वर्ल्ड योगा डे था, आप लोगों ने भी योगा किया होगा। योगा की जब बात आती है तो उसको किसी एक दिन तक सीमित ना कीजिए, डेली योगा कीजिए और देखिएगा फर्क आपको नजर आएगा। ये ना हो कि साल में एक बार किया और फिर कहाँ योगा और कहाँ योगा मैट, है ना। तो पूरी कोशिश करिए कि योगा कीजिए और अपने को फिट रखिए, अपने को फाइन रखिए, और बस धड़कन लखनऊ की सुनते रहिए। सर्वेश आज आपके साथ प्रोग्राम शाम में सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए, 7 बजे प्रोग्राम लेकर आऊंगा हेलो FM।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: जी हाँ, FM रेनबो आप सुन रहे हैं और शाम में अवध की बात कर रहा हूँ। हालांकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है ना, अवध की शाम क्या कहूँ, सुबह भी होती है ना तो ऐसा लगता है दोपहर हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं, जैसे जैसे शाम ढलती है ना, वो अवध

दूसरी भी गाओ ना, 6:15 का वक्त, शामे वादा आप सुन रहे हैं और बहुत सारी जानकारी इस प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं अपने शहर से जुड़ी हुई, अपने अवध के क्षेत्र से जुड़ी। फिलहाल खूबसूरत सा गाना, थोड़ा थोड़ा प्यार फ्रॉम द मूवी लव आजकल।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के

0: उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: छः बजकर 20 मिनट का वक्त और शाम में वक्त सुन रहे हैं आप। इसमें हम आपको बहुत सारी अपडेट्स देते हैं, वो एजुकेशन से भी जुड़ी हुई होती हैं, शहर से जुड़ी होती हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी होती हैं। लेकिन अभी की जो एक अपडेट है वो आपके लिए एजुकेशन से जुड़ी हुई है। अपने यूपी के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में 1 अगस्त से सेशन शुरू हो जाएगा और क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। AICTE ने सेशन 2026-27 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। वैकेंट सीट्स और सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री से एडमिशन 14 अगस्त तक होंगे। तो भाई अगर आप टेक्निकल में कुछ करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं या पहले से कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जल्दी से छुट्टियां खत्म हो, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। जैसे छुट्टियों का भी अलग ही कहते हैं ना कि अलग ही चीज़ होती है, एक लगातार लंबी छुट्टी होती है तो भी हम बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, फिर सोचते हैं इंस्टीट्यूट कब खुलेगा। वो दोस्तों से अपने जो मित्रगण हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनसे कैसे मिलेंगे। तो भाई वो समय आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा। और अगर आपको थोड़ा सा बोरियत लग रही है तो FM रेनबो आपने ट्यून कर लिया ना, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और घड़ी में 6:27 हो चुके हैं और आपको एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ हो सकती है। वो बता दूं कि जो हमारे सूर्य भगवान हैं, इस समय बहुत ज़्यादा धूप होती है और हमें गर्म लगती है। तो कहते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तब माना जाता है कि वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। है ना गुड न्यूज? बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मानसून आएगा और अपने लखनऊ को भिगा जाएगा। फिलहाल भागे रे मन।

शाम है वो सुन रहे हैं आप और इब्राहिम अंसारी, बाबू अंसारी और भैया मोनू सेठ का मिला चुका है। तीनों लोग कह रहे हैं कि गाने बड़े लाजवाब बज रहे हैं भाई, ये धड़कन लखनऊ की है, यहाँ गाने बहुत लाजवाब बजते ही हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते हैं। फिलहाल रब राखा।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: जनाब अली,
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: शामेवद में अगली जो अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो रेलवे से जुड़ी हुई है। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण जो गोंडा रूट की कई ट्रेनें हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि 7 से 11 जुलाई तक ये काम होना है और कुछ ट्रेनें अयोध्या के रूट से चलाई जा रही हैं। तो अगर इन डेट्स में आपका उधर कहीं पहले का रिजर्वेशन है या आपको जाना है किसी काम से, तो एक बार सारी चीज़ें चेक कर लें कि आपकी ट्रेन का रूट डाइवर्ट तो नहीं किया गया है, या फिर आप जिस ट्रेन से जाना चाह रहे हैं वो ट्रेन कैंसिल तो नहीं कर दी गई है। और इसीलिए FM रेनबो को आप सुनते हैं, सिर्फ गाने नहीं, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट, इसी के लिए हम हैं धड़कन लखनऊ की। सर्वेश आज आपके साथ, और हाँ याद दिला दूँ 7 बजे हेलो FM लेकर आऊँगा, फ़ोन मिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप फ़ोन मिलाते हैं तो आपसे जब डायरेक्ट बात होती है आप जितने खुश होते हैं ना उतने ही हम खुश होते हैं या कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो ये जो खुशी का सिलसिला

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

और अब वक्त है आपको शाम वक्त में एक और अपडेट दे दूं। एजुकेशन से जुड़ी हुई नेशनल पीजी कॉलेज ने अपना सेशन कैलेंडर 2026-27 जारी कर दिया है। 7 से 9 जुलाई के बीच ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 जुलाई से स्टार्ट होगी। 18 जुलाई से न्यू स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम और भाई 20 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होगी। तो भाई थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। सुन रहे हैं आप शाम अवध सर्वेश के साथ।

0: FM.
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
2: What is mobile number? What is your smile number? What is your style number? करो क्या dial number?
3: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट.

0: यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: तो चलिए आपको अगली अपडेट ये दे देता हूँ कि IIT कॉलेज लखनऊ में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की जो डेट है ना, वो 20 से 25 जून कर दी गई है। तो अब बढ़ा दी गई है डेट। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप फॉर्म ले भी सकते हैं और फॉर्म को जमा भी कर सकते हैं। अब चूंकि जुलाई आने वाला है, तो ये अपडेट्स आपको हमारे शाम होद में मिलती रहेंगी। और ये अपडेट्स बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हैं या कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप FM रेनबो सुनते रहें और गाने बढ़िया सुनते रहें और साथ ही साथ अपडेट्स आपको मिलती रहें। रेलवे से जुड़ी हुई अपडेट एक और है हमारे पास, लेकिन उससे पहले कॉलर ट्यून आप तक पहुँचा देता हूँ, है ना।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

और छह बजकर 56 मिनट का वक्त हो चुका है। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि अपना खूब ख्याल रखिए, और उससे भी पहले आपको एक अपडेट देता हुआ जाऊंगा रेलवे से ही जुड़ी हुई। वाराणसी शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और काशी महाकाल एक्सप्रेस जो कि इंदौर तक जाती है, इन पैसेंजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है पैसेंजर्स के बीच। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे लखनऊ ने वाराणसी सुपरफास्ट शटल एक्सप्रेस में एसी चेयर कार व स्लीपर बोगी लगाई जाएगी, और जबकि वाराणसी इंदौर एक्सप्रेस में एक एसी फर्स्ट क्लास और एसी सेकंड क्लास की बोगी भी लगाएगी। तो भैया, अगर आपको रिजर्वेशन लेने में दिक्कत आ रही थी ना, अब नहीं आएगी आपको, चाहे इंदौर जाना हो या आपको बनारस जाना हो। सुनते रहिए, है ना, हर हर महादेव।

तो अभी से मुझे अनुमति दीजिए और कुछ ही पलों के बाद समाचारों के उस पार टॉप 10 न्यूज के उस पार आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। नंबर मिलाना मत भूलिएगा। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

14 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे थे। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के डीजीपी और अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इस बीच मुख्यमंत्री अपना अलीगढ़ दौरा रद्द कर लखनऊ में घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। श्री योगी ने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए लागत की 81 विकास परियोजनाओं और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की लागत की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों की शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय का बड़ा योगदान है। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य व्यापार व पर्यटन भी बढ़ेगा। पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 30 जून तक प्रदेश की गौशालाओं में चारे भूसे की उपलब्धता की समीक्षा पूरी कर ली जाए। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए यूपी के टॉप 10 समाचार। राजधानी लखनऊ के अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लगने से

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: और भाई घड़ी में 7 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हेलो एफएम का, जिसमें आप हमसे सीधे बात करते हैं, सीधे हमसे जुड़ते हैं और नंबर्स हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग हमसे जुड़ जाते हैं क्योंकि उनको इंतजार रहता है इस प्रोग्राम का और नंबर उनको पहले से ही याद रहते हैं। फिलहाल हम आपको नंबर बता रहे हैं 0522 2238852 2238845 और एक और नंबर है 2982377। इन नंबर्स को आप ट्राई करते रहें और अपनी किस्मत को आजमाते रहें। और किसी ने समाचारों के दौरान अपनी किस्मत को आजमाया है और उसका फल भी पाया है। बात करते हैं कौन है लाइन पर। हेलो,
4: गुड इवनिंग सर।
3: गुड इवनिंग जी, अपना नाम बताएं।

0: रोहिणी ग्राम।
1: रोहिणी ग्राम, दोबारा नाम लीजिए अपने गांव का। अच्छा, और जिला कौन सा है?
0: हरदोई।
1: जिला हरदोई से आपने हमें कॉल किया। रोहिणी क्या करती हैं आप?
0: पढ़ाई करती हूँ।
1: पढ़ाई करती हैं? अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
0: 11
1: क्लास में है आप? अरे वाह, मतलब अगले साल आपको बोर्ड के लिए कमर कस लेना है। बोर्ड एग्जाम होगा 12वीं का आपका, है ना? तो क्या तैयारियां हैं पढ़ाई की? जी, पढ़ाई हो रही है अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी? पहली बार आपसे बात हो रही है। देखिए, हमने लगा भी दिया, अपने तो अपने होते हैं, जैसे एफएम रेनबो आपका अपना होता है ना। और किसी को सुनवाना चाहेंगी?
0: सबसे पहले
1: थैंक यू।

0: देखिए हमने लगा भी दिया, अपने तो अपने होते हैं, जैसे एफएम रेनबो आपका अपना होता है ना। और किसी को सुनवाना चाहेंगी? थैंक यू जी
1: मैम को। और हमारी
0: जी सभी सुनने वालों को। तो ये गाना आपके पास पहुंच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे पहली बार बात हो रही है, ऐसे ही कॉल करती रहिएगा और धड़कन लखनऊ की सुनती रहिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया आपका।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो एफएम सुन रहे हैं आप, जिसमें आप सीधे हमसे जुड़ते हैं, हमसे फोन लगाते हैं और हम आपसे बात करते हैं और आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। 7:10 का वक्त, सर्वेश जायसवाल है आपके साथ और नंबर्स वही हैं 0522-2238-845 और 2982-377। ये नंबर्स आप ट्राई कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। लवकुश जी हमसे जुड़े हुए हैं, बाकी की बात हम उनसे से करेंगे, उन्हीं की आवाज में उनकी बात को सुनते हैं और देखते हैं कहां से उन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो,

0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते जी, मैंने नाम आपका बता दिया, आगे की बात आप बताएंगे। कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
0: जयपुर तत्काल बाराबंकी से बोल रहे।
1: जैदपुर बाराबंकी से आपने हमें कॉल किया है, बहुत अच्छी बात है। आपका कॉल आता रहता है और बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, क्योंकि कई बार आपसे बात हुई है, हंसते मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं जिंदगी का फलसफा ही यही है ना?
0: जी सर, जिंदगी में है क्या, बस हंसते रहो, बस मुस्कुराते रहो, जिससे मिलो उससे हंसाते रहो।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है अगर आपने हंसे तो आप फंसे, हुआ है कभी?
0: नहीं, ये तो होता
1: है। पता चलिए आप कोई स्लिप कर गया और गिर गया, हंसी आ ही जाती है ना? खैर, आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: रुस्तम का सुना दीजिए, चांद कोई दीवाना।
1: अच्छा, ये चांद कोई दीवाना। आप कितने छुपे रुस्तम है पहले बताइए।
0: नहीं, हम तो छुपा रुस्तम नहीं है, हम नहीं है। कहते हैं सामने कहते हैं।
1: अच्छा, सामने कहते हैं। नहीं, छुपा रुस्तम के कुछ और भी मायने होते हैं।
0: ये तो
1: कुछ लोगों के पास बहुत बढ़िया, जैसे कभी फर्ज के तौर पर कहिए भैया गाना सुनाइए, नहीं सुनाते हैं, लेकिन वो बाथरूम में जाके इतना बढ़िया गाना गाते हैं, फिर लोग जब बाहर निकलते हैं बाथरूम से तो लोग कहते हैं अच्छा हाँ भैया बहुत बड़े छुपा रुस्तम हुए ना, ऐसे तो है। तो है तो ये चांद कोई दीवाना है फ्रॉम द मूवी छुपा रुस्तम, और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे तो कर दीजिए।
0: आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए।
1: जी जी,
0: पूरी अपनी टीम है जो।
1: अच्छा, सारी टीम को, पूरे जैदपुर को, पूरे बाराबंकी को, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लवकुश जी, ऐसे ही कॉल करते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, धड़कन लखनऊ की सुनते रहिए।

0: जी हाँ, आपके दिल पर अगर आपका जोर हो या ना हो, लेकिन आपको करना सिर्फ इतना है कि जल्दी से हमको कॉल करना है। हेलो एफएम सुन रहे हैं आप, और जल्दी से हमें कॉल कीजिए 22 38 852, 22 38 845 और 29 82 377 0522। कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी कोई है लाइन पर जो हमसे बात करना चाहती हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: अमृता बोल रहे हैं।
0: अच्छा, रूरा से आपने हमें कॉल किया है, कानपुर देहात से जी। हाँ, तो आप गाना कौन सा सुनना चाहेंगी? मैंने आपका गाना लगा दिया, जल्दी से डेडिकेशंस बता दिए, क्योंकि प्रादेशिक समाचार आ जाएंगे तो फिर आपका गाना रह जाएगा।
1: दुकान है उसी में पकी थी।
0: जी जी
1: जी
0: जी जी। और किसी को सुनवाना चाहेंगी? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, ये डेडिकेशन आपको और ये गाना हमने आपका लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रीता आपका।

हेलो फ्रेंड्स, सुन रहे हैं आप और थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। लेकिन आपकी कॉल्स का सिलसिला और आपके फरमाइशी गीतों को सुनवाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की प्रोग्राम हेलो FM।

लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में

0: विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 92वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल, कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही केजीएमयू पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
2: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है, और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in

0: पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेट भी उपस्थित थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे CBG प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, GRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है, ऐश के जगावत।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
4: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए, पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह।

0: 7:32 का वक्त और हेलो एफएम प्रोग्राम में आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और करना सिर्फ आपको इतना है कि 0522-2837-842 और 2982-3773 ये नंबर्स मिलाने और सीधे हमसे जुड़ जाना है, अपनी पसंद का गाना सुनना है और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हमसे बताना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। लाइन पर अभी कोई है, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते जी, कहाँ से आपने कॉल किया हमें? आवाज थोड़ी कट के आ रही है, छत्तीसगढ़ मुझे सुनाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया मुझे? जी जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है जब यूपी से बाहर से कॉल आता है और आप लोग इतनी दूर होते हुए हमें सुनते हैं, एफएम रेनबो लखनऊ को सुनते हैं, धड़कन लखनऊ की सुनते हैं और मेहनत करके कॉल करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जी जी जी जी जी, आपकी लाइन में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, हाँ अब कुछ बेहतर है, बेहतर है। मैंने गाना आपका लगा दिया, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: आपको आपके परिवार जी को आपके दोस्तों को
0: जी जी जी जी जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये गाना आप तक पहुंच रहा है।

0: फोन कॉल्स बराबर आ रही हैं। हेलो एफएम, आप सुन रहे हैं आप सर्वेश आज आपके साथ, और साथ ही साथ मेल्स भी मुझे कुछ दिख रही हैं। सोनू परवाना जी ने हमें मेल किया है, नमस्ते कह रहे हैं। आजल सेठ का भी मेल आ चुका है, भैया मोनू सेठ भी मेल कर चुके हैं, रामराज जी का भी मेल आ चुका है और विनीत कुमार जी का मेल आ चुका है। बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं, कोशिश करता हूँ आपके मेल्स को भी लूंगा और उसमें से एक गाना प्ले करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी कोई लाइन पर है उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: जी सर्वेश भैया, प्यार भरा आपको अस्सलाम वालेकुम।
0: थोड़ा सा फैज भाई आप दूर हो जाए रेडियो से, क्योंकि
1: आप देखिए
0: इको कर रही है आवाज। हेलो, अब बोलिए।
1: अब देखिए सर,
0: आप थोड़ा सा बेहतर है। हाँ बोलिए
1: जी सर। सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार
0: जी,
1: और प्यार भरा सलाम
0: जी। जी
1: आपको भी प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम।
0: ओके
1: जी,
0: और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: जी पहले नाम तो बताएं।
0: हाँ बिल्कुल, नाम पहले बता दीजिए आप।
1: जी, मेरा नाम है मोहम्मद कायद, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बात कर रहे सर।
0: आपको इतना सुना गया है ना लोग, नाम आप बाद में बताते हो इसे, और वैसे मैंने आपका नाम ले लिया था।
1: जी, अच्छा था। और मौसम कैसा है?
0: मौसम वैसे ही है जैसा आपके वहाँ गर्म है वैसा यहाँ भी गर्म है।
1: पड़े सर, बाकी पानी पीते रहते हैं, नींबू पानी और नींबू पुदीना हम मतलब प्रॉपरली पीते रहते हैं।
0: जी जी जी।
1: और सबको हमारे जो बगल में पड़ोसी बैठते हैं तो उनको भी ये कहते थे भैया पीते रहना, हम बना बना के देते हैं।
0: क्या तो बात
1: पीते
0: है?
1: रहना, क्योंकि हम मतलब दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हैं, उस खास करके अपना।
0: नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि बिल्कुल इस मतलबी दुनिया में आप लोगों का ख्याल रखते हैं।
1: जी जी सर। हेलो सर,
0: जी जी सुन लो,
1: कभी आइए सर हमारे गाँव में, चाहे जाइए सर।
0: आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पता नोट कर रखा है हमने आपका। ठीक है
1: जी, बिल्कुल। 4-5 साल से मैंने कह रहा था
0: रामपुर कटरा बाराबंकी, देखो मैं याद है रामपुर कटरा बाराबंकी यही है ना।
1: जी जी,
0: देखो याद है मैं,
1: जिला बाराबंकी।
0: मेमोरी हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे इतने आरजेस हैं उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी रहती है। एक साथ आगे ना तो फिर आपको व्यवस्था करने में दिक्कत हो जाएगी।
1: जी, जी, जी।
0: गाना बताए कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: पहले गाना बताएंगे, उसके बाद में कुछ लोगों को देख देख क्या करना वो भी बताएंगे।
0: जी जी, जल्दी कीजिए, और लोग भी लगे हुए लाइन में।
1: मुझे गाना सुनना है
0: जी,
1: फिल्म का नाम है धड़कन। गाने के बोल करते प्यार अख मेरी भर गई, भर गई, भर गई, आजा मिलाट, आजा मिलाट। जो वाला सॉन्ग है
0: देखिए, यही वाला गाना है ना। जल्दी से डेडिकेट कीजिए।
1: जी जी बिल्कुल। ये सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजे सर्वेश भाई को
0: जी,
1: और मोहम्मद हाफिज जी है, और आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, जावेद अख्तर है, गुलाब साहब की है, समा परवीन आपा है, साहिबा है, सादिया यासिर अमित भाई है, बाबू अंसारी भाई है, सुरभी सिंह है, सत्यम कुमार है, तरुण अंसारी भाई।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ मेरा भतीजा वो रह गया था।
0: हाँ वो भी नहीं रहना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
0: ओके जी।

0: और घड़ी में 7:43 हो चुके हैं और थोड़ा सा वक्त और भी है आपके पास कि आप कॉल करें 0522 2238 845 2238 852 2982 3770। ये नंबर्स हैं हमारे जिन पर आप हमसे कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। लाइन पर कोई है लाइव, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी, मेरा नाम रितेश है, मैं श्रावस्ती जिले से बोल रहा हूँ।
0: जी, श्रावस्ती जिले से आपने हमें कॉल किया है, क्या करते हैं रितेश जी?
1: जी पढ़ाई करते हैं, जो 9th में।
0: किस क्लास में हैं?
1: 9th में।
0: 9th में हैं, अच्छा। पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: जी बढ़िया है।
0: तो श्रावस्ती में आप हमें सुनते हैं, कैसे लगते हैं प्रोग्राम्स हमारे चैनल के?
1: जी बहुत अच्छे लगते हैं प्रोग्राम।
0: बहुत अच्छे लगते हैं
1: जी।
0: और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप? बाजीगर मूवी का छुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता, है ना?
1: ये सुना दीजिए।
0: अच्छा, और किसी को सुनवाना चाहेंगे कोई डेडिकेशंस?
1: हमारे संजय हैं।
0: जी जी, और किसी को सुनवाना चाहेंगे?
1: और आपको सर।
0: और मुझे? वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए गाना आप तक पहुंच रहा है, इस गाने को एंजॉय कीजिए और ऐसे ही फोन कॉल करते रहिएगा।

0: और फोन कॉल्स का सिलसिला तो चल ही रहा है और साथ ही साथ हमारे पास मेल्स भी आ रहे हैं। राधे श्याम जी का कासगंज से मेल आया है, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। सोनल सिंह का मेल आ चुका है, मोहम्मद आसिफ साहब का भी मेल आ चुका है हमारे पास हैदराबाद से, गुलफ्सा सिद्दीकी का भी मेल आ चुका है संडीरा से, और जी हाँ और एक और नाम है मैं पिंकू सोनी जी का मेल आ चुका है टिकैत नगर से, और प्रोग्राम बहुत दिन से सुन रहा हूँ और सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी लाइन पर कोई है उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार सर, हम कमल शंकर पांडे ग्राम मोहल्ला कला चौराहा जिला से बात करते
0: हैं। कमल जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा सर।
0: और सीतापुर में भी गर्म पड़ रही होगी जैसे यहाँ पड़ रही है?
1: बहुत गर्म है सर,
0: सब जगह गर्म हो रहा है और बस यही इंतजार हो रहा है कि बारिश और मानसून कब आएगा। जी जी जी, आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनना चाहते हैं माही मंदिर माही पूजा।
0: हाँ, माँ फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं, किसी को सुनवाना चाहते हैं?
1: हम कहना यही चाहते हैं कि
0: जी
1: बढ़ती गर्मी में भाई अपने साथ साथ विद्वान पक्षियों का विशेष ध्यान,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: दाने पानी का व्यवस्था करें।
0: जी जी जी जी जी।
1: और कुछ नाम हमारे हैं?
0: जी बिल्कुल, आप लीजिए नाम लीजिए।
1: एक हमारे गांव के ओम प्रकाश भार्गव जी हैं।
0: जी।
1: रमाकांत बिल्डिंग वाले।
0: जी।
1: पंकज रेडियो में।
0: जी जी।
1: दूसरा होटल वाले। आपको
0: थैंक यू, सभी सुनने वालों को। तो कमल शंकर जी, ऐसे ही आप मोहब्बत अपनी बरकरार रखिए एफएम रेनबो लखनऊ के लिए, कॉल करते हैं और आपके मेल्स आते रहते हैं और आप कॉल करते हैं, शायद मेरी आपसे पहली। जी जी, अब चाहने वाले बहुत है ना हमारे एफएम रेनबो लखनऊ के। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: और 7:52 का वक्त हो चुका है। देखते हैं लाइन पर कौन है, जल्दी से बात करते हैं उनसे। हेलो,
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलरहा
0: जी,
1: रसूली बाजार,
0: हाँ
1: हाँ, रामनगर बोर्ड, बाबा भूषण नाथ खां, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं सर।
0: क्या बात है, आपका पता बताने का तरीका भी ऐसा लगता है कि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, क्या बात है।
1: तो सर जी, आज काफी दिनों के बाद फोन लगा है।
0: जी जी, और आज
1: इतना एड्रेस बताते हैं ताकि आसपास के लोग सुने तो जाने।
0: हाँ कि भाई फोन लगा है, सुन लो सुनने वालों, है ना।
1: रसूलपुर गुलराहा प्रतापगढ़ से।
0: जी जी जी, हमको भी याद हो गया, रसूलपुर गुलराहा प्रतापगढ़ से, है ना।
1: तो आज सुंदरपुर लाल वाले
0: जी जी, आज गाना, आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे जल्दी से बताएं।
1: सर जी सुना दीजिए, जवाना दीवाना का
0: जी,
1: जमाने को अब तक नहीं है पता जी बोल है।
0: ठीक है, नहीं पता वही ठीक है, पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी।
1: बड़े भैया मिंटू तिवारी को सुनवाना चाहते हैं जो भटखना फतेहपुर में सुन रहे हैं।
0: जी जी जी, अरे वाह।
1: और गोपनी कुंडा प्रतापगढ़ के हमारे एक मित्र हैं राजेंद्र कुमार, वो भी सुन रहे हैं कार्यक्रम।
0: जी जी जी जी,
1: सर जी आज हमारा फोन काफी दिनों के बाद लगा है।
0: कोई बात नहीं, इस समय प्रभाकर का ही, इस समय प्रभाकर का ही जलवा है, कह रहा हूँ इस समय प्रभाकर का ही जलवा है, देखिए धूप ही धूप है हर तरफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही कॉल करते रहिएगा
1: जी। सर नमस्ते।
0: नमस्ते जी। और भाई अगर हमसे कोई खता हो गई है, आपका फोन नहीं लग पाया है और आपका गाना नहीं प्ले हो पाया, तो हमें माफ करिएगा, और अभी के लिए आपसे अनुमति चाहूंगा, और फिर किसी दिन किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। ज्योति रहेंगी आपके साथ रात 8 बजे से 12 बजे तक, सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार और सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ के अलीगंज में हुई आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द कर तुरंत लखनऊ पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उनके परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में मारे गए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। श्री योगी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री सम्मानित किया जाएगा।

प्रदेश की जिन चार हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र से अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र से मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अभी यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए एफएम रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है, जगा
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
4: जून की इस तपती गर्मी और सोमवार के इस मसरूफ दिन के बाद आखिरकार शाम ढल ही गई। अब वक्त है एक सुकून भरी सांस लेने का और आपके सुकून को थोड़ा और बढ़ाने, आप तक ठंडी हवा के झोंकों सा एहसास पहुंचाने। मैं आपकी अपनी दोस्त ज्योति आ गई हूं लेकर आबशार। तो आइए दिन भर की थकन को यहीं पर छोड़ दीजिए और भीगिए मेरे साथ अगले पूरे घंटे गजलों, नगमों और एहसासों के इस खूबसूरत आबशार में।

ये दर्द क्या हम ये दर्द साझा नहीं कर सकते? क्या हमारे कहने पर एक बार, बस एक बार, वो थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं सकते? और एक बार हमारे कहने पर अगर वो मुस्कुरा दिए तो बस कहने ही क्या।

पता है इंसान के सबसे करीब कौन सा रिश्ता होता है? वो रिश्ता होता है दर्द का रिश्ता। तभी तो आप किसी को भी अपने जैसे दर्द से तड़पता हुआ देखते हैं, तो आपको उससे जुड़ाव महसूस होने ही लगता है। लेकिन ऐसे में बस यही लगता है कि ये दर्द क्यों क्यों है ये?

मोहब्बत का रिश्ता हमेशा साथ चलने का नाम नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो शख्स आपको आपकी जिंदगी से भी प्यारा है, वो ही आपको तन्हा छोड़कर चला जाता है। ऐसे में उसकी मौजूदगी, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट और उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए ठहर जाती हैं। ऐसे में दिल क्या कहता है? ऐसे में दिल कहता है बस यही कि तुम्हारी बात किसी को दिल में बसाया नहीं हमने, तुम्हारी बात किसी को दिल में बसाया नहीं हमने, तुम चले गए तो क्या यादों को मिटाया नहीं हमने। क्योंकि कई बार यही यादें ही जिंदगी को जीने का सबब दे जाती हैं।

हर मोहब्बत मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोहब्बत अधूरी रह जाती है। जी हाँ, हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन हर मोहब्बत अधूरी भी नहीं होती है। कुछ रिश्ते बस हमारे एहसासों के लिए होते हैं और वो हमारे एहसासों में ही जिंदा रहते हैं, और शायद यही वो रिश्ते होते हैं जो हमारे साथ सबसे ज्यादा वक्त तक चलते हैं, सबसे लंबे सफर तय करते हैं। बदकिस्मती को भी ये गवारा हो ना सका, बदकिस्मती को भी ये गवारा हो ना सका, हम जिस पर मर मिटे वो हमारा हो ना सका। बहुत बार मोहब्बत बस होती है बिना किसी चाहत के, बिना किसी ख्वाहिश के, ये बस होती है तो होती है।

जी बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में ना हो करके भी हमेशा साथ रहते हैं, यादों में, बातों में और भीगी पलकों के कोने में। जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग, कुछ शामें, कुछ बातें दिल के किसी कोने में हमेशा ठहरी रह जाती हैं। वो किसी ने कहा है ना, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। तो चलिए इन्हीं यादों के नाम सुनते हैं ये खूबसूरत गजल। जिंदगी में जब तुम्हारे गम

8:37 हो गए हैं। शार के कारवां को यहीं पर ठहरना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिल को सुकून का एक झोंका जरूर मिला होगा आज के कार्यक्रम से। एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमें जुड़ना है हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या के लिए। फिर मुलाकात होगी, जुड़े रहिएगा FM रेनबो से।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow Ki.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत

0: शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जाँच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जाँच और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धापंक हरिदासपुर पारादीप खुर्दा रोड बलंगीर नौपाड़ा गुनुपुर लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

0: झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Prime Minister until the contest is complete.
1: Meanwhile, senior politician Andy Burnham has officially launched his campaign to succeed Keir Starmer as the leader of the Labour Party. The race to determine the next occupant of Downing Street is set to begin next month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met his Mongolian counterpart Batsetseg Batmung in Ulaanbaatar. In a social media post, Dr. Jayashankar said the talks underscored the warmth, depth and potential of the India-Mongolia strategic partnership. The two leaders reviewed progress in key areas of bilateral cooperation, including development projects, capacity building, culture, education and security. Benchmark domestic equity indices ended nearly 0.4% up today, buoyed by growing optimism over progress in US-Iran talks in Switzerland aimed at ending the months-long conflict in West Asia. We have a report.
2: The Sensex rose to 91 points to close at 77,094, while Nifty jumped 90 points to settle at 24,103. In the Forex market today, the rupee depreciated by 35 paise to close at 94.68 rupees against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.2% up at 1,49,360 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% higher at 2,39,260 rupees per kilogram a short while ago. With Interkhab's report, Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
1: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Center in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system coverage on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: 1900 के बीच पूरे 100 सालों में भी फोटो नहीं खींचे गए थे. तो देखिए भाई, ये जो फोटो खींचना है ना, ये पहले एक लग्जरी हुआ करता था. धीरे धीरे शौक हो गया और आज के वक्त हो गया है ये ऑब्सेशन. और ये जो जूम जूम करके फोटो खींची जाती है ना, लोग ये भी कहते हैं कि ये दरअसल एक तरह की मानसिक बीमारी भी होती जा रही है, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं कि एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, चार फोटो और फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो कुछ यूं खिंचाते हैं कि अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं. और ये जो सेल्फी वाला शौक है ना, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पहली सेल्फी खींची गई थी 1839 में रॉबर्ट कार्नेलियस ने, और इस तस्वीर को भी क्लिक करने के लिए उन्हें 3 से 15 मिनट तक स्टिल बैठना पड़ गया था. तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इन फोटोज से जुड़ी हुई. और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप कितना फोटो खिंचाते हैं. मैंने कई बार देखा है कि बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलने के लिए इकट्ठे होते हैं, किसी तरह सारे लोग टाइम निकालते हैं, और उनमें से ही हमारे कुछ ऐसे साथी होते हैं जो पूरा टाइम सिर्फ फोटो फोटो फोटो फोटो फोटो फोटो फोटो फोटो ही में निकाल देते हैं. तो ऐसे में ये हम मेमोरीज बना रहे हैं या सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, मुझे बताइए ईमेल करके. और यस, इसके पहले जो मैंने सवाल पूछा था कि क्या आपके यहाँ भी इतनी लंबी छुट्टियां होती हैं जैसे पहले हुआ करती थी 2 मंथ्स की, मोनू सेठ जी के ईमेल के बदले में, मतलब उनके जवाब के बदले

और दिल तो हम तोड़ने देंगे ही नहीं जी, नहीं दिल नहीं टूटने पाएगा क्योंकि हम हैं बिल्कुल रेडी आपके ईमेल्स के साथ। मिराल यासिर का ईमेल है, यासिर हमीद अंसारी फ्रॉम यागंज उन्नाव लिख रहे हैं, आज इस शो में काफी वक्त के बाद मेल किया है तो खुशी हो रही है जी। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि आपने ईमेल किया। इन्होंने लिखा किसी ने कहा आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, किसी ने कहा आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, मैंने कह दिया बारिश के बाद मौसम अक्सर सुहाना होता है। भाई वाह। जावेद अख्तर साहब का ईमेल है और इन्होंने लिखा है सुपरहिट गाने, जबरदस्त अंदाज, जानकारी भी भरपूर। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार शमा परवीन अंसारी रकीबा शाहीन और आंचल सेठ जी। आंचल सेठ जी लिख रही हैं कैसी हैं, गाने अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू जी। गुलाब शाह, हाउ आर यू। इन्होंने लिखा कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, संदीला से मेल कर रही हूँ और अपने घर गई थी मैं छुट्टियों में अपने मायके, आज ही वापस आई हूँ, पूरे 7 दिन के बाद आई हूँ, बहुत एंजॉय किया। साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी।

शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी, रोशनी रावत एंड बबीता राव के नाम ले दीजिएगा। सोनू परवाना लिखते खींची जाने वाली तस्वीरों में 94% से अधिक केवल स्मार्टफोन से क्लिक की जाती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तकरीबन हर दिन 14 बिलियन इमेज शेयर की जाती हैं। व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा यानी कि 6.9 बिलियन तस्वीरें शेयर होती हैं। इसके बाद स्नैपचैट, इंस्टाग्राम का नंबर आता है और औसतन एक इंसान दिन में तकरीबन 20 तस्वीरें खींचता है, 20 तस्वीरें खींचता है। वैसे हमने फोटो क्लिक करना लगभग 80% कम कर दिया है। तो क्यों कम कर दिया है? मतलब कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, जब कभी भी आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ फोटो खिंचाते हैं तो आपका अच्छी फोटो का क्या क्राइटेरिया होता है? सच बताइएगा, सच बताइएगा कि अच्छी फोटो का क्राइटेरिया आपका होता क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि फोटो खींचने के बाद सबसे पहले हम बस ये देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। जूम किया, अपनी शक्ल ढूंढी, अगर मेरी फोटो अच्छी आई देन वाओ व्हाट अ फोटोग्राफ, और अगर मेरी फोटो अच्छी नहीं आई तो बाकी की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, नहीं भाई फोटो ठीक नहीं आई है। ऐसा होता है ना। और आज के टाइम जब इतने सारे फोटो खींचने लग गए हैं, ऐसे में भी हमें हमेशा यही लगा करता है अगर किसी ने कहा जरा अपनी एक फोटो भेजना, फिर देखिए कैसा एकदम धर्म संकट शुरू हो जाता है। ऐसे टाइम लगता है कौन सी फोटो भेजी जाए, कौन सी फोटो भेजी जाए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लंबे अरसे से, मतलब मुझे तो लगता है शुरुआत से बस चली जा रही है, क्योंकि भले ही कितनी अच्छी फोटो आपके पास, अगर किसी ने मांग ली तो लगता है एक भी फोटो नहीं है मेरे पास शेयर करने को। अच्छा एक बात बताइए, मैट्रिमोनियल वाली फोटो कितने लोगों ने खिंचाई है? साड़ी पहनकर, हाथ आगे करके, गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करके। वो भी जमाने थे भाई, मैट्रिमोनियल के लिए स्पेशली फोटो खिंचाई जाती थी और स्पेशल स्टूडियोज भी हो

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. नौ बजकर 28 मिनट और ठीक 56 सेकेंड्स आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉप टाइम। और पॉप टाइम में ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने आ गए हैं। ज्योति दीदी नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार, आप कैसी हो? अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो, धूप बहुत तेज होती है, बाहर मत निकला करो। शेर है, पढ़ दीजिए। ये जो हाथों में नशा और आंखें लाल किए रहते हैं, ये खुद को तबाह किया करते हैं। बिल्कुल सही बात है, छोटी छोटी सी चीजों की वजह से अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड लेना, शायद ये ही सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। फिर से इन्होंने लिखा है कि धूप तेज होती है, बाहर मत निकला करिए। मैं सौरभ प्रजापति, उत्तर प्रदेश, जिला अमेठी, ग्राम गौतमपुर। अच्छा सौरभ, एक बात बताइए, आपकी कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि इतनी मोहब्बत से आपने इतनी कंसर्न शो की, लेकिन बाहर नहीं निकलूंगी तो आप तक प्रोग्राम करने कैसे पहुंचूंगी दोस्त? तो प्रोग्राम करने आना है तो थोड़ा सा धूप को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, है ना? उस्मान अंसारी जी का ईमेल है, श्रीनगर लखीमपुर से लिख रही हैं, मेरा मेल शामिल कर लीजिए। लीजिए भाई, कर लिया, बिल्कुल कर लिया, तुरंत कर लिया। और लिख रही हैं आगे कि ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ढेर सारी तारीफों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अपनी तारीफ पढ़ना खुद तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपने भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने लिखा है कि थोड़ा आंधी पानी भेज दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। तो भाई पानी तो अब मैं क्या कहूँ, चलिए हम दोनों लोग मिल करके दुआ करते हैं। कहते हैं ना कलेक्टिव प्रेयर्स में मिलजुल कर जो प्रार्थना की जाती है उनमें बहुत ताकत होती है। सो लेट्स ट्राई। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, हाय हाय नीलू। लिख रही हैं, आप यकीन नहीं करोगे, आज मैं अपनी दोस्त पूर्णिमा के घर गई थी, वहाँ आपका जिक्र कर रही थी। क्यों, मेरा जिक्र क्यों? इन्होंने लिखा है कि दिल से किसी को याद करो और उसकी आवाज सुनने को मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैसे आज मैं आकाशवाणी कानपुर भी गई थी और वहां पर आरजेएस से मिली, उच्च अधिकारियों से मिली, अच्छा लगा। वाओ क्या बात है। इन्होंने आगे लिखा है कि वैसे तो बहुत फोटो खींचने का शौक नहीं है, लेकिन जो फोटो दोस्तों के साथ हैं या पेरेंट्स के साथ हैं उन्हें बहुत संभाल कर रखती हूँ। ऑफ कोर्स फोटो खींचना बुरा थोड़ी ना है, फोटोज ही तो होते हैं जो कि मेमोरीज बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई पुरानी फोटो देखते हैं, वो फोटो जब खींची थी तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन अचानक ही वो फोटो बड़ी क्यूट सी लगने लगती है। क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त के साथ हम बदलते हैं, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो सितम तो करता ही ना वक्त। तो जो पुराना फोटो उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा होता है वो अब बड़ा प्यारा लगता है। कभी कभी यही ये जो फोटोज होते हैं इन्हें देख करके आपको याद आता है कि अरे इस दोस्त से बहुत दिनों से बात नहीं की, चलो कर लेते हैं। कभी कभी आपके होठो पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि यही फोटो आपको याद दिलाते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में जिन्हें आपने बड़ी मोहब्बत से क्रिएट किया होता है। और कभी कभी तो यही फोटो देख करके याद आता है कि अरे भाई मेरे पास ये वाली ड्रेस भी तो थी, ये कहाँ चली गई, और फिर आप खोज में लग जाते हैं उसी ड्रेस की। होता है ना। आपके साथ क्या क्या होता है आप शेयर कर सकते हैं ईमेल करके। मेरा नाम है ज्योति, आप मुझे सुन रहे हैं पॉप टाइम में FM रेनबो पर, और हमारा ईमेल आईडी है FM आकाशवाणी लखनऊ @ gmail.

9:35 और ठीक 4 सेकंड और पूरे स्वैग के साथ आप जुड़े हुए हैं एफएम रेनबो से सुनते हुए प्रोग्राम पॉप टाइम। और पॉप टाइम में आज आपकी दोस्त आपकी हम सफर आपके साथ है ज्योति। गुलफशा ने एक और ईमेल किया है, इन्होंने लिखा है कि बात जब फोटो खींचने की तो मैं दिन भर में 2 फोटो खींचती हूँ, मतलब हर दिन 2 फोटो खींच लेती है। और बनावटी फोटो मैं नहीं खींचती, इनके कहने का मतलब है कि फिल्टर्स नहीं लगाती है। इस वक्त अपने घर की छत पर हूँ। ऑल राइट गुलफशा, ये भी एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिया। अब तो भाई हाल ये हो गया है कि आप किसी की फोटो देखें और उसके बाद उससे मिलने जाए तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है इसे पहचानने में। रीजन भाई, सारी फोन्स में AI कैमराज है, AI एडिटिंग है और ना सिर्फ फिल्टर्स बाकी बहुत कुछ इतना एडवांस आ गया है कि आप चाहें तो अपनी शक्ल ही बदल सकते हैं। तो एक तरफ जहां ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, वहीं दूसरी ओर एक तरह का इल्यूजन भी क्रिएट करती है। तो यकीन करिए आप जैसे हैं जो हैं बहुत खूबसूरत हैं। किसी मोहब्बत करने वाले की निगाहों से खुद को देखिए। बबीता राव का भी ईमेल आया है और ये लिख रही हैं कि 8 बजे से आपको लगातार सुन रही हूं और प्रोग्राम पसंद आ रहा है। रोशनी रावत, नीलू दी, गुलफशा दी, महेंद्र भाई, तालिब भाई, सब लोग एक साथ अलग अलग जगह से बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें।

और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बबीता राव कह रही है गुसाईगंज बेली कला से। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम तो बार बार ये सबको कहते रहते हैं कि भाई हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, खूब पानी पीजिए, अपने आप को धूप से बचाइए, लेकिन पशु पक्षियों का क्या? ऐसे में अगर पॉसिबल है तो अपने घर का एक ऐसा कोना जिसमें थोड़ी सी छांव हो, वो इन जानवरों को दे सकते हैं क्या? आप ट्राई करके देखिए। पीने का पानी अगर रख सके करके देखिए। नीलू शर्मा का ईमेल आया है, लिख रही है, आप मेरी फेवरेट हो। अच्छा, ओके, थैंक यू, आप भी मेरी फेवरेट हो। इन्होंने लिखा है कि जिन आरजे से ये आज मिली है कानपुर में, वो भी मुझे पसंद करती हैं। रियली? ओके जी, थैंक यू सो मच, यू एक्चुअली मेड माय डे, आपने मेरा दिन बना दिया, या शाम बना दी, या रात बना दी, वट एवर। आजाद सिमरी से ओंकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, वीरपाल पट्टी अतरौली से, ममता हरदोई से, रिंकी पिंकी रायबरेली से, ममता हरदोई से, मोहिनी हरदोई से, ओके, इन्होंने ईमेल किया है। इन्होंने लिखा है, ओके जी, इतनी सारी तारीफें, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और भले ही मैं ऑन एयर नहीं पढ़ रही हूँ आपकी लिखी हुई बात, लेकिन यकीन जानिए विनीत कुमार जी, अमित कुमार जी, विनीत कुमार जी, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बातें। बस यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और दिल से आपका शुक्रिया। आप सबके मेल्स पढ़ के तो लिटरली मेरी हो जाती है बल्ले बल्ले।

9:43 हो गए हैं और आहार के साथ साथ बल्ले बल्ले आप डेफिनेटली कर रहे होंगे ज्योति के साथ। समझती हूँ भाई, ये जो मंडे का दिन होता है थोड़ा सा थकाऊ होता है क्योंकि वीकेंड के बाद आपको काम पर जाना और ऊपर से ये मौसम भाई क्या कहा जाए। लेकिन कहते हैं ना, शाम तो अपनी है और इस खूबसूरत शाम को थिरकते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए क्यों ना बिताया जाए बहुत से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और ईमेल्स ले लेते हैं। श्रेया कुमारी का ईमेल है, आलमबाग से सुन रही हैं, रांची झारखंड की रहने वाली हैं। लिख रही हैं कि हमारे यहाँ समर वेकेशन होती है 48 डेज की। वाओ, लकी यू। लिख रही है कि स्कूल जाती हूँ तब फ्री के काम कर पाती हूँ, जब बच्चे जाते हैं तब फ्री सारे काम कर पाती हूँ, ये मतलब है इनका। दो प्यारे प्यारे शैतान बच्चे 4 और 6 साल के, काशु और जुगनू, समर वेकेशन में दोनों बेड का भारी भरकम मैट्रेस बेड से लटकाकर स्लाइड करते रहते हैं। ओ माय गॉड। वैसे एक चीज कहो ना, बहुत लकी है आपके, आज भी आपके बच्चे इतने प्यारे वाले खेल खेल रहे हैं। वरना तो हमेशा क्या होता है ना कि छोटे से बच्चे होते हैं और पेरेंट्स उनके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं। और क्या क्या करते हैं इनके बच्चे ये भी इन्होंने बताया। प्लास्टिक को नल में लगाकर पानी भर के उसमें छोटे छोटे छेद करते हैं, फाउंटेन बनाते हैं, वॉल की सफाई करते हैं, कभी आईने की सफाई करते हैं और कभी ड्रम को धक्का देकर पूरे घर में घुमाते रहते हैं। वाओ, क्या बात है। मतलब आपका घर तो बड़ा मजेदार लगता होगा, है ना। आंचल सेठ, अंकित सेठ रायबरेली से फिर से इन्होंने एक ईमेल भेजा है, थैंक यू। सुरेंद्र वर्मा का ईमेल आया है, कठवारा बख्शी का तालाब लखनऊ से, प्रोग्राम पसंद आ रहा है जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। गीता सेठ लिख रही है कि गर्मी की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुल जाते हैं तो माता पिता को बहुत राहत मिलती है। राइट, मतलब पेरेंट्स चैन की सांस लेते हैं आपके हिसाब से, राइट। इन्होंने आगे लिखा है कि ये समय उनके लिए भाग दौड़ लेकिन बच्चों की दिनचर्या से जुड़ी चिंताओं से आराम का टाइम होता है। मोनू सेठ लिख रहे हैं, 2012 की बात है, दिल्ली गया था घूमने और इंडिया गेट गया था, वहाँ पहली बार फोटो खिंचवाई थी, 30 रुपए की फोटो बनी थी, लगभग 14 फोटो टोटल खिंचवाए थे। अब कहीं जाते हैं तो हाथ में मोबाइल रहता है, फोटो खींचना बिल्कुल फ्री, एक नहीं जिधर जाओ धड़ाधड़ फोटो खींचा करते हैं। वैसे अब थोड़ी सी शर्म महसूस होती, शर्म की कोई बात नहीं मोनू जी, लेकिन बस कहते ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ऐसा बोला जाता है। तो अगर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो रही है तो उस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। अब देखिए ना, पहले लोग खाना खाते थे तो खाने की मेज पर पूछा जाता था कि सब आ गए, लेकिन आज मेज पर खाना लगता है और खट से फोटो लिया जाने लगता है। बेचारे पकौड़े सोचते होंगे कि हम मॉडलिंग करने आए या फिर पेट भरने हैं ना। और अगर फोटो अच्छी नहीं आती तो धनिया फिर से सजता है, चम्मच सीधी होती, मिठाई को फिर से भेज दिया जाता है मंच पर। कैप्शन पहले से ही तैयार होता है, कैप्शन क्या होता है, फूड इज लव। लेकिन ये जो लव है

ये कितना रह पाता है पता नहीं, क्योंकि खाने का असली टेस्ट तब तक खत्म हो चुका होता है जब तक आप उसे खाना शुरू करते हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार तो तब लगता है जब आठ लोग टेबल पर बैठे, दो लोग फोटो खींचने पे लगे और आठ लोग भूख से इरिटेट हो रहे हैं, भाई खाना खाने दो। बट यस, ऐसा होता है। प्रवीण ने कहा है कि लगता है बारिश का मौसम आने वाला, आज मौसम कुछ सुहावना था, बादलों से आसमान ढक गया था, मिट्टी की खुशबू के साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। खरगोन मध्य प्रदेश से जी, आपके मुंह में घी शक्कर। जल्द से जल्द बारिश आ जाए, इसी में हम सबकी सबके लिए अच्छा है ना। तो भाई बारिश तो आ नहीं रही है, सावन का महीना भी अभी तो नहीं है, लेकिन तब तक हम ये गाना जरूर एंजॉय कर सकते हैं। सावन नहीं है लेकिन मौसम ने आग लगा रखी है। आप तो पहुंच रहे हैं मीका सिंह, थोड़ी देर पहले आपको थिरकाया था दलेर मेहंदी ने और अब उनके छोटे भाई मीका सिंह की बारी। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आप तक पहुंच रहे हैं एक से बढ़कर एक जबरदस्त सॉन्ग्स ओनली इन द प्रोग्राम पॉप टाइम, जिसे लेकर आज आपके साथ है आपकी अपनी दोस्त ज्योति मिश्रा।

तो भाई सावन तो नहीं है, लेकिन हाँ आग जो मौसम ने लगा रखी, तो फिर से कहती हूँ लेट्स डू कलेक्टिव प्रेयर्स, एक साथ मिलकर प्रेयर करते हैं कि जल्दी से मौसम से थोड़ी सी राहत हमें मिल जाए। 9:52 हो चुके हैं, तेजी से वक्त गुजरा जा रहा है। विनीत कुमार जी ने लिखा है, रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर टैंक जी, शत-शत प्रणाम की कोई जरूरत नहीं, नमस्कार नमस्कार नमस्कार और गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो रही है। अरविंद कुमार दुबे जी का भी ईमेल है, इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और रेनबो पर गाने सुनना किसी देखने से कम नहीं। अच्छा, तू देखे या ना देखे तेरे देखने का गम नहीं, रेनबो पर गाने सुनना किसी देखने से कम नहीं। रही बात आज के टॉपिक की, तो बच्चे अगर लंबे समय तक स्कूल से दूर रहे तो बेसिक चीजें भी भूल जाते हैं, ये बात तो सही है। अरविंद दुबे, दीपा दुबे, गोविंद दुबे, प्रतिमा दुबे, प्रतिष्ठा दुबे, तन्वी, श्याम कुमारी, इन सब ने इनके साथ ईमेल किया है। तालिब अंसारी जी ने राजा कटरा बाराबंकी से ईमेल किया है, आज हम बिजी हैं तो सुन भी नहीं पा रहे हैं, बस जरा सा सुना क्योंकि बहुत मेहमान है घर पर, मुहर्रम का इंतजाम कर रहे हैं आज घर पर, बस सब मेहमानों को पकवान खिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो जी मेहमानों के साथ बिल्कुल एंजॉय करिए, मेहमान बहुत किस्मत वाले घरों में आते हैं। अशोक राज गुड इवनिंग बोल रहे हैं, रायपुर उदारा मितौली लखीमपुर खीरी से। अजय राज, प्रदीप राज, आशीष राज भी सुन रहे हैं एंड अनुज, इन्होंने लिखा बारिश कब होगी, जानकारी हो तो बताएं। भाई आपको पता चल जाए तो मुझे बताइए। बाकी ये कि डेली आप सुन सकते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ में, दानिश जी सीनियर साइंटिस्ट मौसम वैज्ञानिक हमें देते हैं जानकारी, उन्हें सुनकर के आपको शायद थोड़ा अंदाजा लगे। प्रोग्राम पसंद आ रहा है, अनुज कुमार श्रीनगर लखीमपुर खीरी से। एमके राज, मनीष कुमार राज भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से लिख रहे हैं कि प्रोग्राम एनर्जेटिक रहा, गाने दिल को छू गए, थैंक यू थैंक यू। इन्होंने लिखा है कि बड़ी बेटी की एक फोटो खिंचाई थी, तब वो छोटी थी, आज 14 साल की है, अब जब वो अपनी फोटो एल्बम में देखती है तो यकीन नहीं करती और हंसती है। ये बात तो बिल्कुल सही, जो पुराने एल्बम्स होते हैं ना, ये तो समझ लीजिए कि बिल्कुल मेमोरीज का पिटारा होते हैं। सौरभ उत्तर प्रदेश अमेठी से लिख रहे हैं कि फोटो क्लिक करने पर कहना है कि हमें याद आते हैं वो दिन जब चुपके से फोन स्कूल ले जाकर वहाँ क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ फोटो खींचा करते थे, लेकिन स्कूल में फोन ले जाना मना होता था, फिर भी हम चुपके से ले जाते थे, मतलब बाज नहीं आते थे, राइट। उन्होंने लिखा है कि उन फोटो को देख कर वो दिन याद आते हैं। जी ऐसे ही होता है, होता क्या है ना कि कभी कभी आप पुराने वाले एल्बम्स निकालिए, अगर आपके पेरेंट्स के एल्बम्स हो या आपके थोड़े से बड़े लोगों के एल्बम हो, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी मेमोरीज होती थी उनमें, और फिर उन एल्बम्स को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वक्त किसी और वक्त में ही आप चले गए हैं। लेकिन आज के टाइम पर आपके मोबाइल में हजारों तस्वीरें होती हैं, लेकिन सच बताइएगा कितनी बार आप स्क्रॉल करते हैं उन पिक्चर्स को, कितनी बार उन्हें आप सेव कर पाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका मोबाइल चेंज हुआ और उसके साथ वो फोटोज भी आप क्लाउड में सेव करना भूल जाते हैं, वो फोटोज भी कहीं और चली जाती है। कभी कभी ऐसा भी लगने लग गया है कि अब हम मेमोरीज नहीं बनाते, अब हम उन्हें रिकॉर्ड करने में बिजी हो गए। जहां कुछ भी अच्छा दिखा, एक प्यारा सा डॉग दिखा, खट से फोटो खींचने लगे बजाय उसको अटेंशन देने के। जहां हमने देखा सूरज ढल रहा है या सूरज उग रहा है, उसकी फोटो खींचने लग गए बिना ये सोचे हुए कि ये मोमेंट एंजॉय करने का होता है, बजाय मतलब हर चीज को आप रिकॉर्ड करें जरूरी नहीं होता। तो ऐसे में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई मोबाइल नीचे रख दीजिए, क्योंकि जिंदगी चल रही है, उसको एंजॉय करिए। कभी कभी कैमरे को भी आराम दीजिए और आंखों को भी कुछ यादें सेव करने दीजिए। मोबाइल की मेमोरी भर सकती है, लेकिन दिल की गैलरी में हमेशा जगह बनी रहती है। और हाँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप फोटो मत खींचिए, ऑफकोर्स खींचिए, ऑफकोर्स खींचिए, क्योंकि क्या पता आज की एक छोटी सी फोटो भविष्य में आपके लिए मुस्कुराने की बहुत बड़ी वजह बन जाए। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज लिमिट में ही

अच्छी लगती है। तो जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है, फोटो खींचने से भी कहीं ज्यादा। ऑन दिस नोट ज्योति कहती है आपसे टाटा बाय बाय फ्रॉम दिस प्रोग्राम। एक खूबसूरत सॉन्ग आप तक पहुंच रहा है, इसके बाद न्यूज ब्रेक और फिर हमारा सफर शुरू होगा रजनीगंधा का। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मुझे आपके साथ बने रहना है रात 12 बजे तक।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा बीच में रद्द कर राजधानी लौट आए। वो सीधे अलीगंज स्थित अग्निकांड स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अग्निकांड के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में जान गंवाने वाले बच्चों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी घोषित की। इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं से लखनऊ के मध्य रेल सेवा संचालन की स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये बदायूं जनपद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अथक प्रयासों, सतत अनुश्रवण एवं सकारात्मक पहल के परिणाम स्वरूप बदायूं की जनता को यह बहुप्रतीक्षित सौगात प्राप्त हुई है। इससे लोगों का समय बचेगा, यात्रा सुगम होगी तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। रायबरेली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सेवायोजन एवं रोजगार तथा कौशल विकास मिशन की

समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्लेसमेंट की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसके लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अयोध्या में आगामी कांवड़ यात्रा और श्रावण झूला मेला 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों और पुलिस अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास में प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में कांवड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

रात के 10:05 और ठीक 18 सेकेंड्स। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब शहर धीरे धीरे अपने भीतर लौट रहा है। कुछ खिड़कियों की रोशनी मंद होने लगी है, कुछ यादें अभी भी जाग रही हैं, और हवा में रजनीगंधा के फूलों की खुशबू की तरह सुकून घुलने लगा है। ऐसे में मैं आपकी दोस्त आरजे ज्योति रात के सुहाने पहर लेकर आई हूँ रजनीगंधा 100.7 FM रेनबो पर। तो आइए आज की इस महकती रात में कुछ सदाबहार धुनों, कुछ दिलकश किस्सों और कुछ अनमोल यादों के साथ शुरू करते हैं रजनीगंधा का ये सुरीला सफर। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी किसी का साथ होना ही काफी होता है। किसी के साथ बैठना ही आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप चांद से भी बेहतर किसी जगह पर हों।

0: कभी-कभी किसी का होना ही काफी होता है। कभी-कभी किसी के साथ होने से ऐसा लगता
1: और
0: है
1: मेरी तन्हाई
0: मानो हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की समस्या बस उसके होने से ही दूर हो जाएगी। कोई तन्हाई का एहसास नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, होगी तो बस उसके हमेशा साथ होने का एहसास।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जिनमें मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उन रास्तों की संगत होती है जो साथ चलते हुए तय किए गए हों। कभी कोई हम सफर पूरी उम्र साथ रहता है तो कभी बस कुछ दूर तक साथ चलकर जिंदगी भर की याद बन जाता है। वो कहा गया है ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और शायद इसी एहसास को गुलजार साहब ने बड़ी खूबसूरती से महसूस किया था कि जिंदगी के हर मोड़ पर एक नया रास्ता हमारा इंतजार कर रहा होता है। आइए सुनते हैं फिल्म आंधी का गीत, पंचमदा की धुन, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन पर फिल्म आया हुआ।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:30 और ठीक 20 सेकंड्स। अभी आपने सुना 1967 की फिल्म मिलन का ये खूबसूरत गीत। फिल्म के प्रोड्यूसर थे एलवी प्रसाद और ये मूवी थी रीमेक 1963 की तेलुगु फिल्म मुर्गा मनासुलू की। दोस्तों, एलवी प्रसाद एक ऐसा नाम जिनका योगदान हिंदी सिनेमा में कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज यानी 22 जून को भारतीय सिनेमा के इसी महान निर्माता निर्देशक की पुण्यतिथि है। उन्होंने न केवल फिल्में बनाई बल्कि भारतीय सिनेमा की मजबूत बुनियाद रखने वालों में भी उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आगे सुनाने जाने वाली हूँ एक और गाना उन्हीं की फिल्म खिलौना से। खिलौना भी थी रीमेक एक तेलुगु फिल्म की। तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। खिलौना 1970 में रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हुई। बाद में 1976 में इसके तमिल और मलयालम संस्करण भी बने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं तो अजीब लगता है। जिसे ना हुस्न से मतलब ना इश्क से सरोकार, जिसे ना हुस्न से मतलब ना इश्क से सरोकार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब सा लगता है।

सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। 10:46 और 58 सेकेंड्स आप सुन रहे हैं पुराने सदाबहार गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा, आज ज्योति के साथ। और अब ज्योति आपको सुनाने वाली है 1975 में

दोस्तों 1975 में आई धर्मात्मा सिर्फ एक सफल फिल्म ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अहम पड़ाव भी थी। फिरोज खान ने इस फिल्म में हीरो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तीनों रोल्स निभाए और अपने खास अंदाज में इसे यादगार बना दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मात्मा पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान की खूबसूरत वादियों में की गई थी। उस दौर में ये अपने आप में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम था। जिन्होंने ये फिल्म देखी है वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि इस फिल्म की कहानी पर हॉलीवुड की चर्चित फिल्म द गॉडफादर की छाया दिखाई देती है, लेकिन फिरोज खान ने इसे पूरी तरह भारतीय रंग और संवेदना में ढाल दिया। और हाँ, इसी फिल्म की वजह से डैनी डेंडुलकर शोले में गब्बर सिंह का किरदार नहीं निभा सके, जो बाद में अमजद खान के हिस्से आया। लेकिन इन तमाम दिलचस्प बातों के बीच धर्मात्मा की एक अलग पहचान भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इसके म्यूजिक की। कल्याण जी आनंद जी की धुनों ने फिल्म को ऐसी मिठास दी कि आज भी उसके गीत उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मोहब्बत से सुने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में इसी फिल्म का एक ऐसा सदाबहार नगमा जो मोहब्बत की सादगी और खूबसूरती का जश्न मनाता है।

चले। 10:56 हो गए हैं और ये वक्त है रजनीगंधा में एक छोटा सा न्यूज ब्रेक लेने का। इस गीत के बाद एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके बाद हम लौट कर आएंगे रजनीगंधा के मीठे मधमाते मधहोश करते संगीत के सफ